एफएमएंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 18 जुलाई 2026। प्रातः के 5:57 होने को हैं। मंगल ध्वनि के साथ ही हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र का प्रसारण, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से कल लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है।
2: अब जैसे जालंधर है, यहाँ की पहचान खेलकूद से है, तो जालंधर कैंट स्टेशन में पंजाब की खेल परंपरा और लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। आप आनंदपुर साहब स्टेशन जाएंगे तो वहाँ तख्त श्री केसगढ़ साहब की झलक दिखाई देती है। कालका स्टेशन पर श्री काली मंदिर के दर्शन होंगे। यानी हमारे स्टेशन अब हमारी संस्कृति सभ्यता के प्रतीक भी हो गए हैं।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अम्बाला रेल सेवा और अमृत शेरहटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की सेवा, उनके जीवन स्तर में सुधार और प्रगति के नए अवसर सृजित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिक देवभव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करते हुए पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का

0: संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि यह यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। खेलों में हॉकी इंडिया आज से देशभर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन यूफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद अंतिम चार में पहुंची। इसके परिणाम स्वरूप क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया, जिससे सिंधु को वॉकओवर मिल गया। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं आज का चिंतन। चिंतन का विषय है एकता।

0: एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है, ना वो टूटता है ना उसमें रहने वाला कभी दुखी होता है। इसीलिए एकता से मिलजुल कर रहें। मिलजुल कर रहने से कठिन काम संभव हो जाते हैं। महात्मा गांधी की कही गई इस बात में जीवन का अटल सत्य है। वास्तव में इस पूरी दुनिया में अशांति की एकमात्र वजह है असंतोष, और इसके पीछे जो कारण हम ढूंढते हैं तो पाते हैं कि शोषण और अन्याय से असंतोष पनपता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि पूरी दुनिया में रहने वाले लोग असंगठित हैं, उनमें एका नहीं है। समाज के स्तर पर और समुदाय स्तर पर भी उनमें भारी संघर्ष है, जबकि हकीकत ये है कि एकता के सूत्र में रहकर मनुष्य अपना और राष्ट्र का कायाकल्प कर सकता है। अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में अपना राज फैलाया तो उनके पीछे उनकी फूट डालो और राज करो की नीति थी। आज मनुष्य के तौर पर हम सब बिखरे हुए हैं। जब आपसी फूट हो, वैर भाव हो, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान मजदूर वर्ग को होता है। बड़े कारखाने और व्यापार करने वाले इन मजदूरों का शोषण करते हैं। उन्हें कम वेतन देकर उनसे अधिक श्रम करवाया जाता है। अर्थात जब समाज संगठित नहीं होगा तो समर्थ उस समाज का, संप्रदाय का, राष्ट्र का शोषण कैसे करेंगे? और इसका परिणाम ये होगा कि हमारे सामने शोषित समाज का एक विद्रूप चेहरा होगा। इससे हम अधिक विकास नहीं कर सकेंगे। असमानता और गरीबी के कारण हम स्वयं भी सुखी नहीं रहेंगे। इसीलिए विकास के रास्ते पर चलने के लिए हमें सबको साथ लेकर चलना होगा। संगठित रहकर राष्ट्र की उन्नति में सहायक बनना होगा। एकता के पथ पर चलकर ही हम एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण करने में कामयाब हो पाएंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं हमारे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

0: समूह स्वर में इस देशगान के साथ ही वंदना का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, साथ ही दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। आइए अब सुनते हैं मर्यादा
1: अभी आप आकाशवाणी के जयपुर केंद्र का प्रसारण सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

श्री रामचरितमानस के प्रत्येक सोपान का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास ने देववाणी संस्कृत में रचित मंगलाचरण से किया है। इन छंदों में शंकर तथा श्री राम सहित अन्य देवताओं की स्तुति की गई है। प्रथम सोपान बालकांड के आरंभ में सरस्वती, गणेश, पार्वती, शंकर, कवीश्वर वाल्मीकि तथा हनुमान की वंदना की गई है। द्वितीय सोपान अर्थात अयोध्या कांड गुरु रूप श्री शंकर तथा नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाले श्री राम की स्तुति से आरंभ होता है, जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती, मस्तक पर गंगा, ललाट पर द्वितीय का बालचंद्र, कंठ में हलाहल विष तथा वक्षस्थल पर सर्पराज शेष सुशोभित हैं। भस्म से विभूषित शरीर, देवताओं में श्रेष्ठ, संहारकर्ता तथा भक्तों के पापनाशक, सर्वव्यापी कल्याण रूप, चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण वाले ऐसे देवाधिदेव महादेव से गोस्वामी तुलसीदास अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। भक्त कवि की कामना है कि रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले श्री रामचंद्र, जिनका मुखमंडल ना तो राज्याभिषेक से प्रसन्न हुआ और ना ही जो वनवास के दुख से मलिन हुआ, सदा मंगलदायी हो। नीले कमल के समान श्याम वर्ण और कोमल अंग हैं जिनके, सीता जी जिनके वाम भाग में अवस्थित हैं, जिनके हाथों में अमोघ बाण और धनुष सुशोभित हैं, उन रघुवंशनाथ का तुलसीदास नमन करते हैं।

अभी आप रामचरितमानस कांड का आज का प्रसंग सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है, एफएमएंट 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में सुनिए आज के शेष रहे कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण और उनका प्रसारण समय।

हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा में अब से थोड़ी ही देर में ठीक 6:45 पर आप सुनेंगे खेती नहीं बात। प्रातः 6:50 पर आप सुनेंगे आदिवासी लोक संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे सुखराम और साथियों के गाए वागड़ी लोक भजन। प्रातः 7:20 पर आप सुनेंगे वातायन। वातायन के अंतर्गत आज आप सुनेंगे खनक उपाध्याय से कहानी, जिसका शीर्षक होगा वो चेहरा तो अपना था। प्रातः 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कुछ दिल से। राजस्थानी लोक संगीत का प्रसारण समय होगा 8:45।

प्रातः 9:10 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पॉडकास्ट श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। प्रातः 11:00 आप सुनेंगे सुगम संगीत। 11:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। प्रातः 7:30 प्रातः 9:40 और दोपहर 12:00 से आप सुनेंगे विविध भारती के

हमारी सायंकालीन प्रसारण सभा में शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। शाम 5:05 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत। शाम 7 बजे किसान श्रोताओं के लिए प्रसारित होगा उनका अपना कार्यक्रम किसान वाणी। शाम 7:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। रात्रि में 10 बजे आप आनंद ले पाएंगे फिल्म संगीत का। शाम 5:30 और रात्रि में 9 बजे आप आनंद ले पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रमों का, जिसका प्रसारण होगा विविध भारती के मुंबई केंद्र से। इसके अलावा समय समय पर आप सुनेंगे हिंदी और राजस्थानी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली और जयपुर केंद्र से।

0: अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है खेती नी बात।
1: सब भाइयों ने सोरा डियो बलजी भाई ने राम राम। हवार हवार नो समय है तो अपने सब भाई क्षेत्र में जईने काम करवा निकलिया हाँ। किसान भाइयों देखो खेती में तरह तरह ना किसान भाई जे जतन करे हैं एनानी मुख्य विश्वास ये है कि केवा भी प्रकार की मेहनत करी ने अपने जे पैदावार है इन्हें अपने हरते वधारण। किसान भाइयों देखो बुआई करी ने किसान भाई जे हैं ये हमेशा आशावादी रहे तो एना बल्ले किसान भाई ने एक विशेष करी ने बात याद रखनी पड़ेगा कि उत्पादकता वृद्धि ना मूल मंत्र हो हैं एना मूल मंत्र ऊपर काम करी ने किसान भाई ने अपनी बुआई करनी पड़े। दिम के हमेशा अपने किसान भाई ने कह कि समय ऊपर बुआई करनी है तो समय ऊपर बुआई करवा थे कि अधिकतम उत्पादन आपने लई शकां। इने अलावा किसान भाइयों प्रमाणित उन्नत बीजनो प्रयोग करवो है तो इने तकी फायदो ही थई शके कि 20-25% उपज आपने वधावी शकां। किसान भाइयों देखो इने हाथे हाथे बीजोपचार बीजनो टीकाकरण आ सब अवश्य करावु जुए एने थकी किसान भाई ने फायदो कि कम खर्च में फसल एक तो निरोगी रहेगा स्वस्थ रहेगा आ सब फायदा किसान भाई ने थई शके। किसान भाई देखो आने हाथे हाथे अवरेजे आ समय में अपने किसान भाई काम करी रहा कि मक्का नी फसल रे खड़ी फसल है एना में निराई गुड़ाई नो काम भी अवरे किसान भाई ने हमें आवी रो थकू है तो किसान भाईयो अपने आज सोरा ऊपर बात ही करी रहा कि मक्कानी फसल में निराई गुड़ाई नो मुख्य उद्देश्य खरपतवार ने करवो ने पौधों की जड़ों ने मजबूत करवो आ मुख्य कहवाय है। खरपतवार नियंत्रण में पैदावार में 30-60% तक नी वृद्धि भी थाय है आना खास पहलू ऊपर आवी ने किसान भाइयों निराई गुड़ाई ना सही समय ने सही तरीका नी बात अपने याद रखनी पड़ेगा। देखो प्रथम निराई नी अगर बात करा अपने बुआई थकी 15-20 दाड़ा बाद आना समय अवांछित खरपतवार नकार देवा जुए आ समय कहियो है 15-20 दाड़ा बाद अपने

0: प्रथम निराई करवी पड़ेगा। किसान भाइयों, बीजी जे निराई जिन्हें अपने मिट्टी सड़पानो काम है ये भी कही सक आना में किसान भाइयों बुआई थकी 40 थकी 45 दाड़ा आना समय में पौधों की जड़ों ऊपर मिट्टी सड़पू ताकि तेज हवा थकी पौधा ने नुकसान भी न थाए। ने इन हाथे हाथे किसान भाइयों मशीनों नो उपयोग करो तो लाइनों में बुआई करी थकी मक्का नी निराई हरू व्हील वाली मशीन नो उपयोग अपने करी सको। एक रासायनिक खरपतवार नियंत्रण भी किसान भाई करे हैं, यदि आवश्यक हो तो अपने करबू रुए बुआई ना तुरंत बाद खरपतवार रोकवा हरू बुआई ना 48 घंटा ना भीतर एट्राजिन नो छिड़काव किसान भाई ने करवो रुए। तो किसान भाइयों थोड़ा ऊपर आज अपने जो बात करिए मक्का नी फसल में निराई गुड़ाई ने खेती ना मूल मंत्र याद करवानी। किसान भाइयों देखो खेती की बात कार्यक्रम नो तो आ समय पूरो थी रो है, तो आज तो वालजी भाई ने आज्ञा लो कलर सोरा ऊपर फिर नवी जानकारी ने हाथे अपने मलंगा। ए आरजू राम राम राम राम।
1: अभी आप खेती में बात सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है, एफएमएंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:50 होने को है। आइए अब सुनते हैं आदिवासी लोक संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे सुखराम और साथियों के गाए वागड़ी लोक भजन।

अभियान आदिवासी लोक संगीत के अंतर्गत सुखराम और साथियों के गाए वागड़ी लोक भजन सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

हरि सुमरण सुद यूं करो। दो जो गागर पणियार और भर डोले सूरत में, अरे मुख से कछु।

अभियाम आदिवासी लोक संगीत के अंतर्गत सुखराम और साथियों के गाए वागड़ी लोक भजन सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: अभी आप आदिवासी लोक संगीत के अंतर्गत सुखराम और साथियों के गाए वागड़ी लोक भजन सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है FM 101.3 MHz पर। प्रातः के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है वातायन। वातायन में आज आप सुनेंगे कहानी। कहानी का शीर्षक है वो चेहरा तो अपना था। कहानीकार है खनक उपाध्याय।
1: हर किसी में कुछ न कुछ खास होता है, बस जरूरत है परखने की और समझने की। ये कविता वो चेहरा तो अपना था, या कह लो तो एक कहानी, जो पूरे आपको बयां करेगी जब एक छोटा बच्चा माँ की कोख में होता है और कैसे जब एक उम्र आ जाती है जहाँ पर उसका चेहरा झुर्रियों से ढक जाता है। अपने माता पिता को लोग अपनाते नहीं है, उनको वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। इस तरह अगर आप हर चीज से आप रिलेट कर सकते हैं इस बच्चे की कहानी को लेकर कि कैसे उन्हें लोग अपनाते नहीं और माँ, और लास्ट में पता पड़ता है हमें कि जब हम देखते हैं कि उनकी क्या हालत थी, उन्हें क्या हो गया, तो तब हमें पता पड़ता है उस इंसान की वैल्यू। हर किसी में कुछ न कुछ होता है, फ्लॉज तो सब में है, पर हमें बस जरूरत है उसको परखने की और समझने की। अब जैसे कि हम कुछ भी बोल दो या थोड़े से भी लोग हमें उस बात से आंकने लग जाते हैं कि हमें कितना टैलेंट है, हमें कितनी खूबी है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि स्टार्ट से जब बच्चा कोख में होता है उसकी जब निशान होते हैं तो वो बाहर जब आता है तब और धीरे धीरे बड़े होते होते उसके गहरे हो जाते हैं और लोग उसे उस तरह से समाज में उसकी भूमिका दे देते हैं कि वो अलग है, उसकी यहाँ पर कोई समाज में भूमिका नहीं है। अगर वो कुछ करता भी है तो उसकी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। तो अगर हम किसी भी इंडिविजुअल को अगर हम इम्पोर्टेंस दे और उन्हें इस तरह हम आके कि उनकी भी वैल्यू बढ़े और एक मोटिवेट करें, आप काफी कुछ इससे सीख सकते हैं। और ये मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू थे कि कैसे एक पिक्चर बना ली मैंने अपने दिमाग में और फिर उसको पूरा बांध दिया कि ऐसा भी होता है और कहीं ना कहीं ये बहुत रिलेटेबल है। तो आप अपने जीवन में इसको उतारें और यही कहना चाहूंगी कि आगे लोगों तक पहुंचाएं और खुद को रिलेट करके देखें। वो चेहरा तो अपना था, 9 माह बीते उस माँ के पेट में पल रहा था बच्चा, जो जन्म लेने से पूर्व एक अध्याय से उभर कर आ रहा था। उसकी आंखें सिर्फ सितारों को देख रही थी, एक आईना जो उसकी आंखों के सामने था और अतीत को याद कर उसे दहला रहा था। वक्त की गहरी निशानियों से बाहर आ वो तब देख पाया होगा माँ को, बड़े होते उसके शरीर पर चोट के निशान दिखने लगते, जब भी गीली मिट्टी और जमीन से सटी खाई नजर आती उसे याद आ जाता अपना चेहरा, टेढ़ा मेढ़ा उभरा हुआ जो किसी की आंखों में खलता था। अपने चेहरे की आकृति उसे उस खाई की तरह अंधकार में डूबती हुई लगती थी। उसके घर में पड़ी धूल को देख उसे झट से हटाया गया, कोई उड़ती तितली को देख उसके रंग को कहता, कोई उड़ती तितली को देख उसके रंग को कहता कि बेफिजूल ही इसे रंगों से ढका गया है, फिर भी इसका खुद में ही रहकर यूं जीना इसे खूबसूरत बना रहा है। जान है तेरे चेहरे में, जान ले तू खुद को पहचान ले। उसे अपना चेहरा नजर ही नहीं आ रहा था, उसके चेहरे में उसे दूसरों की अनुभूति दिख रही थी। खुद से बेहतर लोग दिखते हैं, खुद से बेहतर लोग दिखते हैं, वो इसी में खुद से हारता गया। दो आवाजें टकरा कर उसे शून्य कर रही थी।

0: समझा रही थी बस कि लौट आ सुन ले मगर ये तेरे चेहरे में ही है खूबसूरती, जीवनी को जीवित देखने का मुखौटा। ये चेहरा मन के अंधियारे में है रोशनी का एक हिस्सा, इसलिए जो करता है नफरत चेहरे से, इसलिए जो करता है नफरत चेहरे से वो अपने होने को नकारता है। अगर तुम्हें कोई ऐसा टूटा नजर आ रहा है, तुम्हें भी कोई ऐसा टूटा नजर आ रहा है, आईने को फेंक कर दीवार पर छेद कर रहा है, उसे समझाओ, उसे समझाओ, कहो देख ये चेहरा बादलों सा मुलायम है बना, चेहरा कोई कैसा भी हो जब दूसरा मुस्कुराता है तब सिर्फ देखता है उसके चेहरे को, जो आंखें देखती है दुनिया सारी वो भला खुद को देख निराश कैसे हो सकता है, जो आंखें देखती है दुनिया सारी वो भला खुद को देख निराश कैसे हो सकता है। उसे कहो कि ये चेहरा है हर नायाब जैसा तुम्हारा तोहफा, ये चेहरा है हर नायाब जैसा तुम्हारा तोहफा, जिससे भरी है जीने की ये इच्छा, जो दुनिया के रिवाज समझकर, जो दुनिया के रिवाज समझकर खूबसूरती चेहरे की क्या है, खूबसूरती चेहरे की क्या है, वो ये सुन गया है दुनिया से, आज कह दो उसे, आज कह दो उसे कि झुर्रियों से ही एक दिन ये चेहरा, झुर्रियों से ही एक दिन ये चेहरा चादर सा ढकने वाला है, ये तमाम सारे एक जमी का टुकड़ा प्रतीत होने वाले हैं, इसलिए जब तक कह पाओ ये चेहरा मेरे उठने बैठने की है रौनक, कह दो वरना एक दिन ये चेहरे के साथ ही, एक दिन ये चेहरे के साथ ही मिट जाएंगी निशानियां, जो कहती तुम कौन थे आज कहना लाजमी लगा ये किसी को सुनकर कि उसकी आंखों से इशारों में वो सब बता देता था, बातों ही बातों में बच्चावन बचपन याद दिलाता था, जब कोई नहीं देखता उसे तो वो रो देता था, उससे मिलते ही उसकी मुस्कान सब सही कर देती थी, उससे मिलते ही उसकी मुस्कान सब सही कर देती थी, काश आज भी उससे पहले की तरह मिलना होता, अगर उसने अपने हंसते हुए चेहरे को आजाद घूमने और हर बार आईने में देखने से खुद को मिलाया होता, और घर की दीवार में छेद न कर अपनी तस्वीर लगाई होती, तो आज ये कहना न पड़ता, उस जलती लाश को देख कि वो चेहरा तो अपना था।
1: अभी आप वातायन के अंतर्गत खनक उपाध्याय से कहानी सुन रहे थे। कहानी का शीर्षक था वो चेहरा तो अपना था। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है FM बैंड 101.3 MHz पर। प्रातः के 7:28 हुए हैं। कुछ ही देर में ठीक 7:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

0: साहिर लुधियानवी का लिखा ये गाना था, खयाम का संगीत था, फिल्म थी शगुन और आवाजें थी तलत महमूद, मुबारक बेगम की। दोस्तों आज जानी मानी गायिका मुबारक बेगम की याद का दिन है। हमें रही प्यार के इस कार्यक्रम के बाकी कुछ गाने हम आपको सुनवा रहे हैं मुबारक बेगम की आवाज में।
1: मुझको अपने

बाल कवि वैरागी का लिखा ये गाना आप सुन रहे थे तलत महमूद और मुबारक बेगम की आवाजों में। फिल्म थी गोगोला। गंगा फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं महेंद्र कपूर और मुबारक बेगम की आवाजों में।

बालकवि बैरागी का लिखा गाना आप सुन रहे थे मुबारक बेगम और तलत महमूद की आवाजों में। फिल्म थी गोगोला। हमें रही प्यार के इस कार्यक्रम के बाकी गाने आपको सुनवाएंगे छोटे से अंतराल के बाद।

उस्तादे उस्ताद से इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और भूपेंद्र सिंह की आवाजों में। संगीतकार थे राम लक्ष्मण। दोस्तों आज भूपेंद्र सिंह का जन्मदिन है, ये गाना उन्हीं के नाम था। और आज जाने माने अभिनेता राजेश खन्ना की याद का दिन है, सुनिए ये गीत उनकी याद को समर्पित फिल्म दो रास्ते। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, आनंद बख्शी की बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

या ना मुझे न बुलाना के मारे गताना जमाना, कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारे गताना जमाना।

0: आराधना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। शब्दकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार सचिन देव बर्मन। इसी के साथ आज का हमेरा ही प्यार के कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में
1: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 8 बजने को है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, दो नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।
1: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अम्बाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
1: हम नागरिक देवो भवः इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस से बेस सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है।

ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह

0: का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तीन दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में तीन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन तीन परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का पहला चरण है। इसके अलावा हटपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है।
2: मैं यह कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से ये कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है, ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है।
3: Working to strengthen each other's
4: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय

0: संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
1: इन अ वैरायटी ऑफ एरियाज विद ऑल ऑफ यूरोप।
2: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचावास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
3: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है, और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था, बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया था। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब मैं लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पे बैठने की व्यवस्था करते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाया।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम 4 में पहुंची हैं। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
5: हॉकी इंडिया आज से देशभर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 12:30 पर शुरू होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
2: मौसम विभाग ने उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
6: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, न धुआं न प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, हाइड्रोजन की ताकत, स्वदेशी तकनीक, पटरी पर दौड़ी देश की ऐसी पहली ट्रेन। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर नागरिकता का प्रश्न उठाते हुए लिखा है, समस्या यह है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। हिन्दुस्तान एसआईआर से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, एसआईआर में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं, लिखता है दैनिक भास्कर। पॉलीमर शीट कंपनियों से निविदाएं मंगाई, 18 अगस्त को टेंडर। जनसत्ता ने आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान दिया है, कमजोर मानसून आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देशभर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की शुरूआत भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

FMND 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रातः के 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ दिल से।

कुछ दिल से कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को ख्याति गांधी का नमस्कार। श्रोताओं, हमारे आज के कुछ दिल से कार्यक्रम का विषय है आत्मा। विषय जितना गहरा है उतना ही सहज भी। भारतीय दर्शन, संतों की वाणी और हमारे धर्म ग्रंथों में आत्मा को जीवन का मूल तत्व माना गया है। हमारा शरीर दिखाई देता है, मन की भावनाएं भी महसूस होती हैं, लेकिन आत्मा वह चेतना है जो इन सब के पीछे कार्य करती है। आत्मा ही हमें सही और गलत का बोध कराती है, वही हमारे कर्मों की साक्षी बनती है और वही हमारे अस्तित्व का आधार मानी गई है। जीवन में हम अक्सर बाहरी उपलब्धियों, सुख सुविधाओं और संबंधों को अधिक महत्व देते हैं, लेकिन अगर भीतर की शांति और संतोष ना हो तो सब कुछ अधूरा लगता है। यही कारण है कि आत्मा का चिंतन सिर्फ आध्यात्मिक विषय नहीं बल्कि हमारे जीवन को सही दृष्टि से समझने का माध्यम भी है। आज के इस कार्यक्रम में हम आत्मा के स्वरूप, उसके महत्व और हमारे जीवन से उसके गहरे संबंध को समझने का प्रयास करते हैं।

दोस्तों, आत्मा को हमारे जीवन का सबसे मूल और सबसे सच्चा हिस्सा माना गया है। यह शरीर की तरह दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे हर अनुभव और हर कर्म की साक्षी बनती है। शरीर समय के साथ बदलता है, उम्र बढ़ती है, सोच बदलती है, परिस्थितियां बदलती है, लेकिन आत्मा को कभी ना बदलने वाला बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का ना जन्म होता है और ना ही मृत्यु। उसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। जैन दर्शन भी यही मानता है कि हर जीव में आत्मा होती है और उसका स्वभाव ज्ञान, शांति और आनंद है। शायद यही वजह है कि हमारे यहां हर जीव के प्रति दया, अहिंसा और सम्मान की बात कही गई है। जब यह समझ आने लगता है कि सामने वाले में भी वही चेतना है जो हमारे भीतर है, तब हमारे सोचने का तरीका बदलने लगता है। आत्मा को समझना सिर्फ धर्म की बात नहीं है, बल्कि जीवन को बेहतर ढंग से समझने और सही दिशा में आगे बढ़ाने का एक सुंदर माध्यम है।

दोस्तों, आत्मा और मन दोनों को अक्सर एक ही समझ लिया जाता है, जबकि दोनों में बड़ा अंतर है। मन हर समय बदलता रहता है, कभी खुश हो जाता है, कभी उदास, कभी किसी बात पर गुस्सा करता है तो कभी किसी छोटी सी बात पे भी मन हिल जाता है। हमारी इच्छाएं, भावनाएं और विचार मन से जुड़े होते हैं, लेकिन आत्मा इन सबके बीच भी शांत रहती है। वह सिर्फ साक्षी बनती है। जैसे आसमान में बादल आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आसमान वैसा ही रहता है, ठीक वैसे ही मन में भी हर दिन कई तरह के विचार आते जाते रहते हैं, पर आत्मा पर उनका कोई असर नहीं होता। कई बार जब हम कोई गलत फैसला लेने वाले होते हैं तो भीतर से एक आवाज हमें रोकती है, वही हमारी अंतरात्मा की आवाज होती है। अगर हम उस आवाज को सुनना सीख लें तो जीवन की बहुत से उलझनों से बच सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम सिर्फ मन की हर इच्छा के पीछे ना भागे, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज को भी महत्व दें, क्योंकि मन हमें सुविधा का रास्ता दिखाता है, लेकिन आत्मा हमेशा सही रास्ते की ओर ले जाने का प्रयास करती है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, आत्मा का विषय जितना गहरा है उतना ही सरल भी है। इसे समझने के लिए किसी विशेष स्थान या समय की आवश्यकता नहीं है, बस कुछ पल स्वयं के साथ ईमानदारी से बिताने की जरूरत है। जब हमारे विचार साफ होते हैं, व्यवहार में विनम्रता होती है और कर्मों में सच्चाई होती है, तब आत्मा भी हल्की और शांत महसूस होती है। जीवन की वास्तविक सफलता सिर्फ आगे बढ़ने में नहीं, बल्कि ऐसा इंसान बनने में है जिसके जाने के बाद लोग उसके शब्दों से ज्यादा उसके व्यवहार को याद रखें। शरीर एक दिन साथ छोड़ देता है, लेकिन हमारे कर्म और उनसे जुड़ी पहचान लंबे समय तक जीवित रहती है। इसलिए जीवन को सिर्फ जीना ही नहीं, बल्कि सही ढंग से जीना भी इतना ही आवश्यक है। मन को जीतना कठिन हो सकता है, लेकिन आत्मा की आवाज सुनना असंभव नहीं। जो स्वयं से जुड़ जाता है, उसे जीवन का हर रास्ता थोड़ा आसान लगने लगता है। इसी के साथ इजाजत दीजिए ख्याति गांधी को कार्यक्रम कुछ दिल से यहीं समाप्त करने की। आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप कुछ दिल से कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है, एफएमएंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 8:45 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे सीमा मिश्रा और साथियों के गाए राजस्थानी गीत।

अभी आप राजस्थानी लोक संगीत के अंतर्गत सीमा मिश्रा और साथियों के गाए राजस्थानी गीत सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: जयपुर केंद्र का प्रसारण, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश के पहले निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान विक्रम 1 का पहला कक्षीय प्रक्षेपण आज होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, किसान की समृद्धि और आत्मनिर्भरता से ही देश और प्रदेश का समग्र विकास संभव है। केंद्र ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत राजस्थान को मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 537 करोड़ 70 लाख रुपए की सहायता स्वीकृत की और प्रदेश का पहला संवेदनशील गवाह केंद्र पाली जिला न्यायालय परिसर में शुरू किया गया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। स्काई रूट एरोस्पेस आज भारत के पहले निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान विक्रम 1 का पहला कक्षीय प्रक्षेपण करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया ऐतिहासिक अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि 4 चरणों वाले इस रॉकेट को त्वरित और मांग के अनुसार प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और उद्यमशीलता की भावना को दर्शाता है। साथ ही ये भी दिखाता है कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में किए गए सुधार नवाचार और उद्यम के लिए नए अवसर खोल रहे हैं। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने युवाओं से इस ऐतिहासिक मिशन पर नजर रखने और #IndiaWithVikram1 का उपयोग करके स्काई रूट टीम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि किसान की समृद्धि और आत्मनिर्भरता से ही देश और प्रदेश का समग्र विकास संभव है। नागौर जिले के डेगाना के तिलानोश गांव में आयोजित ग्राम विकास चौपाल में उन्होंने किसानों, पशुपालकों और युवाओं से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को आधुनिक तकनीक, सिंचाई, वित्तीय सहायता और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के साथ ही राज्य सरकार अतिरिक्त 3,000 रुपए की सहायता दे रही है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
2: और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हमारा किसान आगे बढ़े, हमारा किसान आत्मनिर्भर बने, हमारा किसान के जीवन में बदलाव हो, हमारा किसान सशक्त बने, उनको भविष्य की भी चिंता है कि आने वाली पीढ़ियां भी हमारी सुरक्षित रहें। और आपने देखा है कि जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र में सरकार आई थी तो उन्होंने किसान को भरोसा दिलाया था और उन्होंने यह कहा था कि आप चिंता मत करिए, हम किसान की आय भी बढ़ाएंगे, किसान को सशक्त भी कराएंगे।
1: इससे पहले मुख्यमंत्री ने गांवों में ही राजीविका से जुड़ी महिलाओं से भी संवाद किया। संसद के सोमवार से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे सघन मातृ स्वास्थ्य सेवा अभियान के दौरान चिन्हित हर हाई रिस्क गर्भवती महिला का नियमित फॉलोअप किया जा रहा है। जन स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने कल जयपुर में राज्य स्तरीय अभियान को लेकर बैठक की। बैठक में गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की पहचान, ट्रैकिंग, उपचार, रेफरल और संस्थागत प्रसव कराए जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने अधिकारियों से सभी गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीकरण, आवश्यक जांच, टीकाकरण तथा आयरन और कैल्शियम की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। विभाग ने गर्भवती महिलाओं से अपील की है कि वे नजदीकी

अभी आप राजस्थानी लोक संगीत के अंतर्गत सीमा मिश्रा और साथियों के गाए राजस्थानी गीत सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 9 बजने को है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के

सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में नियमित प्रसव पूर्व जांच कराएं और चिकित्सकों की सलाह के अनुसार आवश्यक जांच और उपचार कराएं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक

0: विशाल ने बताया कि ये राशि ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा किए गए खर्च की भरपाई के रूप में मिलेगी। इससे ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी और हर घर जल अभियान को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 2212 से अधिक गांवों को हर घर जल प्रमाणित किया जा चुका है। साथ ही 93% योजनाओं के लिए सुजलम भारत आईडी तैयार हो चुकी है। सहकारिता विभाग में डिजिटाइजेशन से सूचनाओं का संकलन आसान हो गया है। साथ ही सहकारी योजनाओं की प्रभावी निगरानी की जा रही है। विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने कल जयपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में राज्य सहकार पोर्टल, एमएसपी खरीद और ऑनलाइन इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने राज्य सहकार पोर्टल के बाकी मॉड्यूल निर्धारित समय सीमा में पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सहकार पोर्टल का मोबाइल ऐप भी जल्द ही प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगा। इसके माध्यम से अधिकारियों को कार्य निष्पादन में और अधिक सुविधा मिलेगी तथा आमजन को सहकारी सेवाएं ज्यादा सुगमता से उपलब्ध हो सकेंगी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि पंच गौरव कार्यक्रम हर जिले की विशिष्ट पहचान को विकास का आधार बनाने की राज्य सरकार की पहल है। विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने जिला कलेक्टरों और स्थानीय उत्पादों, कृषि, पर्यटन, खेल और वन संपदा के संरक्षण, संवर्धन और ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए समयबद्ध लक्ष्य तय किए जाएं तथा जनभागीदारी, विभागों के आपसी तालमेल और विभिन्न योजनाओं के प्रभावी उपयोग से इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सभी जिला कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। प्रदेश का पहला संवेदनशील गवाह केंद्र पाली जिला न्यायालय परिसर में शुरू किया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये केंद्र अदालती मामलों में संवेदनशील गवाहों को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराएगा। साथ ही पूरे प्रदेश के लिए एक मॉडल होगा और भविष्य में राजस्थान के अन्य जिलों में भी ऐसे केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अति संवेदनशील गवाह बयान केंद्र, जिसे वनरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर भी कहा जाता है, न्यायिक प्रक्रिया को अधिक संवेदनशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस केंद्र में पॉक्सो सहित अन्य संवेदनशील मामलों के पीड़ितों और गवाहों के बयान सुरक्षित, सम्मानजनक और भयमुक्त वातावरण में दर्ज किए जाते हैं। इसका उद्देश्य गवाहों और पीड़ितों पर मानसिक दबाव कम करना तथा उन्हें बिना किसी भय या प्रभाव के अपना पक्ष रखने की सुविधा उपलब्ध कराना है। समाचार कक्ष से जयकिशन शर्मा।
0: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने उदयपुर में अपना पहला निवासी केंद्रित आधार सेवा केंद्र शुरू किया है। सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये केंद्र डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने में सहायक होगा। उदयपुर में केंद्र शुरू होने के साथ ही राजस्थान में आधार सेवा केंद्रों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। UIDAI के अनुसार सितम्बर तक राज्य में 19 और केंद्र शुरू किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के पहले निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान विक्रम 1 का पहला कक्षीय प्रक्षेपण आज होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, किसान की समृद्धि और आत्मनिर्भरता से ही देश और प्रदेश का समग्र विकास संभव है। केंद्र ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत राजस्थान को मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 537 करोड़ 70 लाख रुपए की सहायता स्वीकृत की और प्रदेश का संवेदनशील गवाह केंद्र पाली जिला न्यायालय परिसर में शुरू किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 9:10 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र का प्रसारण, जहां से आप सुनेंगे पॉडकास्ट श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
3: गेस्ट है, इन्हें पॉन्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने तालाब के संरक्षण के लिए, उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए काफी अच्छा काम किया है और यहाँ तक कि इनका जिक्र मन की बात प्रोग्राम में हमारे

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है। तो आइए स्वागत करते हैं रामवीर तंवर जी का। बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: रामवीर जी। आपको पॉन्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, लेकिन कब इसकी आपने शुरुआत की? क्या आपने सोचा कि अब तालाबों का संरक्षण करना है, इन्हें पुनर्जीवित करना है?
1: देखिए, ये अचानक से ऐसी कोई घटना नहीं है जिसकी वजह से मैंने काम किया हो। इस तरह की घटनाएं किताबों में अच्छी लगती है, लेकिन ये मेरा मानना है कि वो धीरे धीरे धीरे धीरे ना कोई भी इनिशिएटिव आपको अपनी ओर खींच लाता है, और उसके लिए जिम्मेदार होती हैं कई बार आपकी चाइल्डहुड यादें, बचपन में आपने जो देखा है और जवानी में आप जो नहीं देख पा रहे। मैं 10th क्लास तक अपने गांव में भैंसों को चराने जाता था जंगल में, और मैंने अपना पूरा होमवर्क किसी तालाब के या नहर के किनारे किया। मुझे याद है मेरे गांव से और जंगल जाते समय पे एक नहर पड़ती है बहुत छोटी सी, और हमें वो नहर क्रॉस करनी होती थी, अदरवाइज तो 2-3 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था। जब हम जाते थे, मैं 3री-4थी क्लास में जब था तो तैरना नहीं आता था, बहुत छोटा बच्चा था, तो हम भैंस की पूंछ पकड़ के क्रॉस करता था मैं, और कई बार भैंस जो है वो बीच नहर में जाके लेट जाती थी, तो हमें भी लेटना पड़ता था उसके साथ, तो उस वजह से तैरना सीखा। लेकिन आई एम सो सैड टू टेल यू कि वो नहर अब एक नाला है, और वो ऑफिशियली नाला है। वहां पे सिर्फ अभी पूरे शहर का इंडस्ट्रियल वेस्ट और म्यूनिसिपल वेस्ट वहां से बह के जाता है। आप वहां किनारे 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते, जबकि उस नहर का पानी कई बार हमारे मुंह में चला जाता था, पेट में चला जाता था, मुझे कभी याद नहीं है कि हम बीमार हुए हों। वही नहर है, मैं कई बार जब वहां से गुजरता हूँ तो आज अपने रुमाल को नाक पे रख के गुजरता हूँ, दुख होता है। जब मैं 11वीं क्लास में गांव से बाहर 20 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाता था बस में, डेली मुझे 25-30 किलोमीटर जाना था, 25-30 किलोमीटर आना था, तो वहां जब मैं रास्ते में ये देखता था कि जो भी रोड के किनारे के तालाब है वो धीरे धीरे धीरे धीरे लैंडफिल साइट बनते जा रहे हैं, क्योंकि आदत होती है कि जब भी हम जाते हैं हाथ में जो भी कचरा होता है वो सबसे पहला निशाना हमारी बनती है कोई नाली, नाली नहीं मिली तो नाला, नाला ना मिले तो नहर, नहर नहीं मिली तो तालाब। तो आज भी आप गांव में देखिए तालाब सबसे इजी टारगेट है कचरा फेंकने के लिए। तो जब मैं बाहर निकला गांव से और मैंने देखा कि ये मेरे गांव की समस्या नहीं है, ये तो सब जगह सेम इशू होता जा रहा है। जब मैं अपना ग्रेजुएशन में था, कॉलेज डेज में था, तो पॉकेट मनी के लिए मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। मेरे पास 2 स्टूडेंट थे और दोनों भाई थे, उसके पिताजी ने कहा पूरे दिन इधर उधर कंचा खेलते हैं, सारे दिन उधर जाते हैं, तो तुम अगर इनको पास करवा दो 33% से तो मैं तुम्हें जो है इनाम दूंगा। मैंने उनको पढ़ाया और उनके 70% आ गए, तो उन्होंने इतना प्रचार किया कि मेरे पास 40-50 बच्चे आ गए। वो ऐसे प्रचार करते थे किसी का बच्चा पास नहीं हो रहा हो तो रामवीर के पास भेजता पास हो जाता क्योंकि मुझे मैथ फिजिक्स से बहुत प्यार था। अच्छा। तो मेरे पास इतने सारे बच्चे हुए, वीकेंड पे हमने एक्टिविटी करना शुरू किया। अच्छा। एक्टिविटी क्या थी कि गांव में नए नए समर सर्विल लगे थे पंप, सबके घर में समर सर्विल पंप है, 1 गिलास पानी की जरूरत है तो 1000 लीटर पानी निकालेंगे, छोटे बच्चे को नहाना है तो उसको बाल्टी नहीं लाएंगे, उसके लिए बस समर सर्विल का स्विच ऑन कर देंगे, जाओ बेटा नहा लो। अब 10000 लीटर पानी में बच्चा नहा रहा है, सोचिए जो 5 लीटर बच्चा नहा सकता था वो 10000 लीटर में नहा रहा है, और वो ड्रिंकिंग वाटर उसकी कॉस्ट जोड़ेंगे 20 रुपए के हिसाब से तो लाखों रुपए में बैठ रही है वो। पूरे परिवार की इनकम 10000 रुपए महीना है और पानी बहा रहे हैं 5 लाख रुपए का। तो हमने डिसाइड किया खेल खेल में कि जो भी हमारे गांव में सबसे ज्यादा पानी बर्बाद करता है उसके घर के सामने हम जल ही जीवन लिख के आएंगे चुपचाप। वो हमारी एक्टिविटी थी और वो हम वीकेंड में करने वाले थे। जब वो 1 महीना किया, 2 महीना किया, बहुत सारी गालियां भी खाई, कई पेरेंट्स ने अपने बच्चे हटा लिए, हमने सोचा था अच्छा पढ़ाते हो तुम तो इनको ऐब करना सिखा रहे हो लड़ाई करना सिखा रहे हो लोगों के साथ, तो कुछ बच्चे हट गए कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ ने बहुत अप्रिशिएट भी किया। नेक्स्ट फेज में हमने क्या किया कि एक जगह हम बैठ के मीटिंग करने लगे, गांव की जो चौपाल बनी हुई है चौपाल पे किया, हमने उसका नाम रखा जल चौपाल, और हमने उस ग्रुप का नाम दिया था जागरूक युवा समूह। जब हमने मीटिंग किया और सब कुछ हुआ तो कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, कुछ लोग आए। एक बार क्या हुआ, किसी ने फोटो क्लिक करके डीएम में लगाया, अखबार में आया, अखबार से डीएम साहब के पास गया, डीएम साहब ने कॉल किया उन भैयाओं के पास कि उन बच्चों को बुला के लाओ, हमको बुलाया, उन्होंने अप्रिशिएट किया और कहा कि अगली बार मैं आऊंगा।
0: अच्छा।
1: वो अगली बार आए तो हम तो 20 लोग थे, वो आए तो 500 लोग इकट्ठा हो गए। देन आई रियलाइज कि ये जो हम कर रहे थे ये कोई छोटी चीज नहीं है, जिस काम के लिए खुद डीएम साहब कलेक्टर साहब आपके गांव में आ सकते हैं, जिन्होंने अभी तक गांव देखा ही नहीं हमारा, और उनको पता चला। देन आई रियलाइज कि वी आर डूइंग समथिंग बिग। और वहां से ये फिर मैंने कॉलेज किया, 2 साल जॉब के साथ भी मैंने यही किया, अवेयरनेस कैंपेन चलाया, लेकिन अवेयरनेस कैंपेन थोड़ा बड़ा हो गया टाइम के साथ, और फिर मैंने सोचा कि जॉब छोड़ के फुल टाइम अभी मैं ये करूं। वहां से निकल के धीरे धीरे यहाँ तक पौंड मैन की जर्नी शुरू हुई।
0: तो पौंड मैन की जर्नी इतनी आसान तो नहीं रही होगी, कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे, तो किस तरह की मुश्किलें सामने आई?
1: शुरुआती दौर में क्या था, आपके पास पैसा नहीं था, रिसोर्सेस नहीं थे, आपके पास टीम नहीं थी, आपके पास नॉलेज नहीं थी, आपके पास रिसोर्सेस नहीं थे, आपके पास कोई रेफरेंस नहीं था जिसको आप ये बोल सके कि मैंने

0: काम किया है जी, आपको लोग क्यों ट्रस्ट करेंगे। इंडिया में क्या है, वाटर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। कोई भी वाटर बॉडी है, तालाब है, पोखर है, कुआं है, कुछ प्राइवेट हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। आप उसको बिना परमिशन के गंदा तो कर सकते हैं, लेकिन बिना परमिशन के साफ नहीं कर सकते। साफ करना है तो आपको एनओसी लानी पड़ेगी। तो एनओसी के लिए हम चक्कर काटते थे। हमसे यार पूछता था एनओसी तब देंगे, पहले बताओ एक्सपीरियंस क्या है तुम्हारा। अब एक्सपीरियंस हो तो बताए, हमने तो जीरो एक्सपीरियंस, हमने कभी तालाब ही साफ नहीं किया। गांव वालों से बात करें वो कहते थे कि यार तुमने कभी किया ही नहीं कुछ, तो ये कैसे करोगे। तो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट नहीं था जिसको हम उदाहरण के तौर पर बता सके कि हमने वहां पे किया, उसको देखिए। दूसरा, आप तालाब साफ करेंगे, आप मैनुअली कितना कर लेंगे, 5 किलो कचरा हटा लेंगे, 100 किलो हटा लेंगे। लेकिन बड़ा अगर आपको इम्पैक्ट करना है तो मशीन चाहिए, आपको डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, मैन पावर चाहिए, टूल्स चाहिए। उसके लिए हमारे पास फंड नहीं था। हमने क्या किया कि जितना हमारे बस की है उससे करते हैं। तो जो भी सोशल मीडिया से, कॉलेज से जितने लोग जुड़े थे अपने साथ, उन सबको हमने साथ जोड़ा और क्लीन अप ड्राइव शुरू किया। मुझे याद है जब हम पहले दिन क्लीन अप ड्राइव किया था तो हमें लगा था बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन मैं और मेरा दोस्त दो ही रह गए कोई नहीं आया। हम दो ही लोग हो गए क्योंकि बारिश हो रही थी उस दिन, है ना। हम दोनों को तो जुनून था, सबको थोड़ी ना। हम गए वहां पे, हमने फावड़ा शुरू किया। अब बहुत सारे लोगों के साथ तो आपके अंदर हिम्मत होती, लेकिन हम तो दो ही लोग थे। और जब वहां पे हम तालाब साफ कर रहे थे, कोई भी हमसे निकल रहा था क्यों कर रहे हो, कहां से हो, तो हमारे पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि हम जवाब दे सके कि हम ये कुछ करना चाहते हैं। कोई भी आता था, हाँ भाई कौन हो, क्यों साफ कर रहे हो, तो हम ये कहते थे जी नगर पालिका से है। अच्छा अच्छा, वो उधर भी करके जाना। मैंने कहा हाँ जी बाबू जी करके जाएंगे।
1: अच्छा, तो रामवीर जी मैं ये पूछना चाहूंगी कि बात तो सही है कि आपको सफाई का किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि जो कचरा होता है वो किसी भी तरह का कचरा हो सकता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ वो कपड़ा और पॉलिथिन बैग्स हो, उसमें मेडिकल वेस्ट भी हो सकता है, तरह तरह के केमिकल्स हो सकते हैं, कांच हो सकता है। तो किस तरह के प्रिकॉशंस आप लेते हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको सामने आई?
0: देखिए, हम शुरुआत में कोई एक्सपर्ट तो थे नहीं कि हम बता सके मेडिकल वेस्ट है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये प्लास्टिक वेस्ट है। तो हमारे लिए तो सब एक प्लास्टिक में बंद कचरा है, हम तो सबको ऐसे ही उठा के फेंक देते। तालाब क्या है, वो सिंक होल है। आपके घर में कुछ भी निकलेगा ना, आप रजाई, गद्दे, जूते, चप्पल, कांच, जो भी है बस उसमें डाल दो जाके। चाहे वो नाला मिल जाए उसमें डाल दो, तालाब मिल जाए उसमें डाल दो। जब हम तालाब को रिस्टोर करते हैं, और कई बार हम जब डीवॉटरिंग करके उसको खाली करते हैं पूरे तालाब को, ताकि नीचे से खुदाई कर सके वापस से, आप यकीन मानिए कई बार 1 से 1.5 मीटर की एक लेयर मिलती है, पूरी कचरे की लेयर मिलती है। मान लो यही बोतल है, आप इसको फेंकिए तालाब में, अब दो चांस हो सकते हैं, या तो ये इसमें ढक्कन लगा हुआ है और हवा भरी हुई है तो ऊपर तैरेगा, या इसका ढक्कन खुला हुआ है तो पानी भरेगा जाके नीचे बैठ जाएगा। तो जब हमने तालाब को खाली किया तो 1 से 1.5 मीटर की हमें लेयर मिली, और उस लेयर में सिर्फ बोतल नहीं है, उसमें सब कुछ है। उसमें जूते हैं, उसमें चप्पल है, उसमें कांच है, घर का बचा हुआ सामान है, बहुत सारी मूर्तियां हैं, तमाम सारी चीजें हैं जो सालों से वहीं पे पड़ी पड़ी सड़ रही हैं। और कई सारे तालाबों में तो ऐसा भी हमने देखा, क्योंकि जैसे जलकुंभी और सिल्ट और गाद और सिलज हो जाती है तो जानवर भी फंस के मर जाते जाते पानी पीने के चक्कर में, लेकिन उसमें गाद इतनी सारी हो जाती है, उस कचरा डलते वहीं फंस जाता है। तो कई तालाबों में सहता हुआ हमने पानी निकाला तो नीचे ऐसे कंकाल के कंकाल खड़े हुए मिले, जो नीचे फंस गए थे, पानी में डूब गए थे वापस, ऐसे पड़े हुए मिले। बहुत दुख लगा उनको देख के हमें, क्योंकि गांव वाले को लगता था भैंस चोरी हो गई है। भैंस चोरी नहीं हुई थी, भैंस डूब के मर गई थी तालाब में।
1: जब आप कचरा उठाते हैं, आपकी टीम जाती है किसी लोकेशन पर, तो किस तरह से वो कलेक्शन करते हैं कि उन्हें हार्मफुल इफेक्ट से?
0: देखिए, उसके लिए जो सेफ्टी टूल्स होते हैं, एक स्पेशली ग्लव्स आते हैं जो इस तरह के वेस्ट को एक तरह से उठाने के लिए काम आते हैं, वहाँ पे प्रॉपर मास्क, और हमारे पास ना एक ड्रेस होती है प्रॉपर जो पूरा पहन लेते हैं तो यहाँ तक आती है। वो बहुत मोटी होती है, प्लस उसमें पानी भी नहीं घुसता है, सेफ्टी किट होती है, तो उसी को पहन के वो तालाब में घुसते हैं। एक तो आपके कपड़े भी गंदे नहीं होते, प्लस आपको नहीं पता कि पानी में क्या केमिकल घुला हुआ है, तो वो भी आपके टच में नहीं आता है, और वो उसी तरह से फिर वो उठाते हैं। अब तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, नगर पालिका गाड़ियों में भी अलग अलग बॉक्स बने हुए होते हैं, क्योंकि हम कचरे को निकाल तो सकते हैं लेकिन उसको अपनी मर्जी से डिस्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं क्या करूंगा, एक्स जगह से उठा के वाई जगह पे डाल दूंगा, तो एक ही हुई। तो इसलिए हम जब भी कोई तालाब करते हैं तो वो एक उसमें मल्टीपल पार्टी होती है, एक ट्राई पार्ट एग्रीमेंट होता है। एक होता है कॉर्पोरेट या स्पॉन्सर, एक होता है हम एग्जीक्यूटिंग पार्टनर, एक होता है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है जहाँ पे भी उनका निस्तारण एक प्लांट है वहाँ
1: सही
0: तक
1: लेके पहुंचाए।
0: जी जी, लेकिन अभी क्या है, टाइम के साथ हमें भी नॉलेज हुई है तो उसको अच्छे से सेग्रीगेट करते हैं, और जिस तरह से उसका एक आधुनिक तरीका होना चाहिए उसको सेग्रीगेट करने का, निस्तारित करने का, उसी को उसी से निस्तारित किया जाता है। क्योंकि तालाबों में सिर्फ दो तीन तरह का ही वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, इनऑर्गेनिक वेस्ट है। ऑर्गेनिक वेस्ट तो तालाब के

0: अंदर चला जाता है, स्लज ले लेता है। इनऑर्गेनिक वेस्ट, जूते, चप्पल, प्लास्टिक, ये सारे हमने क्या है, कुछ स्टार्टअप्स के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है। वो प्लास्टिक उनको देते हैं, उस प्लास्टिक से हमें वो बेंच, ट्री गार्ड, मेज, उसको मोल्ड करके वापस से पिंगला के वो हमें देते हैं, और उसी बेंच को हम तालाब किनारे रख देते हैं वापस। अच्छा। ताकि उसी बेंच पे बैठ के लोग शाम को फिर तालाब को निहारे।
1: तो पूरा आपने एक ये सिस्टम क्रिएट कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली वो अच्छे तरह से वो जो कचरा है वो जा रहा है और स्टार्टअप उसे किसी अच्छे फॉर्म में लेकर वापस कर रहे हैं। तो जब आप तालाबों को पुनर्जीवन देने की कोशिश करते हैं, उनकी सफाई करते हैं, तो लोकल्स का किस तरह से सपोर्ट मिलता है या विरोध करते हैं, क्या रिएक्शन?
0: देखो, लोकल दोनों तरह के ही है। जिन लोगों ने तालाब के किनारे घर बनाया हुआ है, उनका हमेशा सपना रहता है कि अगले साल 100 गज और कब जाएंगे, उससे अगले साल 100 गज और एंक्रोचमेंट करेंगे। उनका जिनके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है ना तालाब को बचाने की, वो सबसे ज्यादा तालाब को कब्जाने की फिराक में रहते हैं। और ये 90% सक्सेस रेट है मेरी इस बात का। आप कहीं भी जाके देखिए, तालाबों को उन लोगों ने कब्जाया हुआ है जो तालाब के किनारे पे रहते हैं, क्योंकि वो उस जगह को अपनी मानने लगते हैं। उनका डायरेक्टली कोई फायदा नहीं हो रहा है तालाब से, इनडायरेक्टली तो बहुत सारे हैं। भैया, पर्यावरण बच रहा है, आसपास का माहौल ठंडा होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट मिलती है। डायरेक्टली नहीं मिल रहा है। डायरेक्टली तब मिलता था जब पानी पीते थे उस तालाब से, जब उसमें नहाते थे, जब उसमें से मटका भर के लाते थे। तो इसलिए अब उसको लैंडफिल की तरह यूज करते हैं। ऐसे लोग तो हमेशा विरोध करते हैं जो उसको कब्जाना चाहते हैं, कुछ भी करके आपका काम रुकवाना चाहते हैं। दूसरे टाइप के लोग हैं जो थोड़े अवेयर हैं, वो सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा है कि सपोर्ट करने वाले लोग अभी भी भारत में विरोध करने वालों से ज्यादा है, इसलिए शायद हमारा काम चल भी रहा है। दूसरा, जो अलग अलग टाइप के लोग मिलते, कुछ लोग हैं जैसे आज हमने तालाब पे काम शुरू किया, शाम तक आ जाएंगे, पहले ये बताइए पैसा कहाँ से मिला, क्यों कर रहे हो, वो सारे लोग हैं। कुछ होते हैं जो अच्छी सलाह भी देते हैं कि भाई यहाँ पे ये पेड़ लगाइएगा, क्योंकि मुझे लगता है हम लोगों को इसलिए उसमें पार्टिसिपेट कराते हैं, इसलिए हम जन भागीदारी करते हैं उसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि तालाब एक दिन में तो मरा नहीं होगा। तालाब को मरने में 30-40-50 साल लगे हैं, और तालाब को मरते हुए उन्हीं लोगों ने देखा है जो उस गांव में रहते हैं, इसलिए उस तालाब के बारे में सबसे ज्यादा, चाहे उसकी हिस्ट्री हो चाहे मरने की कहानी हो, उन्हीं लोगों को पता है जो वहां पे रह रहे हैं, इसलिए हम उसको पार्ट बनाते और हम बताते हैं कि आपको ही रेस्टोर करना है, हम तो सिर्फ आपको सपोर्ट करने आए हैं। तो दोनों तरह के लोग मिलते हैं, बहुत सपोर्ट भी करते हैं, बहुत विरोध भी करते हैं।
1: तो जैसे आपने एक बार किसी तालाब की सफाई कर दी, उसको पुनर्जीवन मिल गया, तो बाद में उसकी कौन देखभाल करता है?
0: अब मान लो अगर हम घर बना रहे हैं, या मेरा खुद का खेत है, या मेरा खुद का प्लॉट है, हमेशा वही देखभाल करेगा जिससे उसकी इनकम जुड़ी हुई है, या जो ओनर है उस जगह का। तालाबों के साथ इश्यू क्या है, तालाबों का कोई ओनर नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब तालाबों को रेस्टोर करते हैं, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि तालाबों को सेल्फ सस्टेनेबल बनाएं। सेल्फ सस्टेनेबल बनाए मतलब तालाब अपने मेंटेनेंस का खर्चा खुद निकाले, तालाब अपने लिए इनकम करे। सिंगाड़ा कहाँ से आता है? तालाबों से। लोटस कहाँ से आता है? तालाबों से। मछली कहाँ से आती है? तालाबों से। और आजकल ये बिहार में तो मखाना देखिए, तालाबों से। बहुत सारी चीजें हैं जो तालाबों से आती है। और अब दिल्ली में, गुड़गांव में तो तालाब इको टूरिज्म के लिए, आप तालाब के किनारे रेस्टोरेंट खोलिए और एक दूसरी जगह खोलिए, तालाब किनारे वाला के इनकम ज्यादा होगी। तो तालाब अपने लिए इनकम करना सीख, तो तालाबों की इज्जत भी बढ़ेगी। और इज्जत बढ़ेगी मतलब तालाब के किनारे वाले जो रेस्टोरेंट है या कोई भी चीज है, वो आपको मेंटेन करेंगे। तो इसलिए हम तालाबों को इस तरह से एक्वा कल्चर, इको टूरिज्म या किसी न किसी एक्टिविटी से जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि उसका अगर कोई 5 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं, तो वो 50,000 रुपए तालाब के मेंटेनेंस पे खर्च करें। अदरवाइज तो फिर हम अपने ऊपर ले लीजिए, भाई अगर हम ये उम्मीद करके चलें कि मैंने तालाब को रिस्टोर कर दिया और अब जनता इसको खुद ही मेंटेन कर लेगी, तो हम भी जनता है। हम महीने में कितनी बार जाते हैं आसपास के तालाबों को मेंटेन करने के लिए? मैं कितनी बार जाता हूँ, आप कितनी बार जाते हैं, आप और जो इस तरह की बातें करते हैं वो कितनी बार जाते हैं? तो तालाबों को हमेशा वही मेंटेन करते हैं जिनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे कुछ फायदा।
1: तो जैसे आपने किसी तालाब को रिवाइव किया और कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद आप पलट कर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर पक्षी आने लगे, जीव जंतु आने लगे, एक जनजीवन वहां पे पनप रहा है, तो देखकर कैसा फील होता है, क्या इमोशंस होते हैं?
0: बहुत अच्छा लगता है।
1: कोई एक्सपीरियंस भी हो तो बताइए।
0: हम क्या है, हमारे एक USP है तालाब रेस्टोर करने का। हम जब भी कोई तालाब बनाते हैं तो उसके बीच में नेस्टिंग आईलैंड बनाते हैं।
1: अच्छा।
0: बीच में छोटे छोटे टापू बनाते हैं, उस टापू पे वहीं की लोकल नेटिव घास भी लगाते हैं। उसका हमारा जो पर्पज है नेस्टिंग आईलैंड बनाने का, हमेशा, वो ये है क्योंकि हमें लगता है कि देखो पिछले 50-100 साल में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आई है। आजकल तो जो घरों में फिल्टर है वो भी AI वाले आ रहे हैं, लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजी आई किसके लिए है? इंसान ने बनाई है, इंसान के लिए आई है। आज से 100 साल पहले एक तालाब जिसमें इंसान

0: ही डिपेंड था उस तालाब पे और एक पक्षी भी उतना ही डिपेंड था। इंसान के पास तो पानी आ गया, पाइपलाइन से आ गया, आरओ से आ गया, रिमोट से आ गया, लेकिन उसके लिए तो आज भी उतना ही रिलेवेंट है वो तालाब। तो जैसे ही मेरी पूर्ति हुई, जैसे ही मेरी जरूरत खत्म हुई, अब मैं तालाब को पाट दे रहा हूँ, अब मैं तालाब को मार दे रहा हूँ, अब मैं तालाब को कूड़ा घर बना दे रहा हूँ। नहीं भाई, आपके लिए ही तो टेक्नोलॉजी आई है, उनके लिए थोड़ी ना आई है। वो तो आज भी तालाबों पर उतने डिपेंड है। दूसरा, अभी पॉपुलेशन उतनी है, ट्रैफिक साउंड उतना है, तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि अब डेवलपमेंट क्या है, बिल्कुल या तो तालाब जो है वो शहर के बीच में आ गए या रोड किनारे आ गया, पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उसपे बैठने की व्यवस्था करते हैं
1: पक्षियों के।
0: बिल्कुल, आप और मैंने अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाया। आप इस साल बनाइए आईलैंड और अगली साल देखिए, कम से कम आपको 100 बर्ड्स मिलेंगे, एक्वेटिक बर्ड्स मिलेंगे, बहुत सुंदर सुंदर बत्तखें मिलेंगी, क्योंकि बीच में फिर आप वो ना घोंसला रख सकती है, बीच में वो अपना नेस्ट बना सकती है, बीच में अपने बच्चों को पाल सकते, अपने बच्चों को ट्रेन कर सकती है। मैं अभी एक महीने पहले गया था एक तालाब पर, ग्रेटर नोएडा में हमने वो डेवलप किया था दुजाना गांव में। मैंने बीच में देखा तो मिट्टी के ना बहुत सारे छोटे छोटे होल थे नेस्टिंग आइलैंड के ऊपर, वहां बत्तखों ने अपने बच्चे छिपाए हुए थे और पूरा तालाब एकदम बत्तखों से भरा हुआ है। अब सोचिए, अगर वो बीच में नहीं होता, किनारे पे तो कोई नहीं रखेगा, रखेंगे भी तो कुत्ते बिल्ली खा जाएंगे, कोई बच्चा उठा लेगा। तो जब भी मैं एक ऐसे तालाब पे जाता हूँ जो मैंने 2 साल पहले रेस्टोर किया था और आज पूरा पक्षियों से भरा हुआ है, बत्तखों से भरा हुआ है, जलीय जीवों से भरा हुआ है, उसको देख के जो तसल्ली मिलती है दिल को, बुरा नहीं लगता कि मैंने जॉब छोड़ दी।
1: अब मैं इसी पे आ रही थी कि इतना मुश्किल रहा होगा कि जॉब छोड़ के आप फुल टाइम इस काम में लग रहे थे, अपने डिसीजन से ज्यादा मुश्किल रहा होगा घर वालों को कन्विंस करना, उन्हें समझाना, क्योंकि आप अच्छी पढ़ाई लिखाई कर चुके थे, तो उसके बाद कैसे कन्विंस किया अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को?
0: क्या है, 5 भाई बहन है, अभी मैं सबसे छोटा हूँ, और मेरी मम्मी बताती है कि हम 5 नहीं, हम 10 भाई बहन थे, 10 में से 5 नहीं रहे, 5 बचे, और 5 जो भी नहीं रहे वो गरीबी के कारण नहीं रहे। 5ों में से भी मैं ऐसा हूँ जिसने 11th क्लास में पढ़ाई की, पहली बार घर का सबसे छोटा, क्योंकि मेरे बाद तो नेक्स्ट जनरेशन शुरू होने वाली थी, हमारे बच्चे आने वाले थे, तो आई वॉज द पर्सन जिसने 11वीं क्लास में एडमिशन लिया, और मैं कॉलेज गया पहली बार, और जिसने पहली बार एमएनसी में जॉब भी की। तो मेरे घर वालों के लिए तो कितना बड़ा अचीवमेंट था कि कोई कॉलेज गया है। जब मैं कॉलेज गया था तो मैं कॉलेज में घुसने के अगले दिन ही मेरे इतने सारे रिश्ते आने वाले थे, क्योंकि रिश्तेदारियों में कोई था नहीं जो कॉलेज
1: पढ़ा लिखा और एमएनसी में,
0: जबकि जो मेरे साथ के थे वो बता रहे हैं कि मेरे दादाजी वहाँ के ग्रेजुएट थे, मेरे परदादाजी वहाँ दरोगा थे, और मैं वहाँ पहली बार कॉलेज में जा रहा हूँ। वहाँ फिर मुझे शर्म लग रही थी कि हम कितने पीछे हैं, लेकिन मेरे घर वालों को लग रहा था कि हम कहाँ पहुँच गए चांद पे। प्राउड फील कर रहे थे, घर वालों को उम्मीद थी। और जब जॉब लगती है किसी की, पहली बार कोई जॉब करता है तो अलग बात होती है। तो जब मैं जॉब छोड़ रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि जॉब छोड़ना मेरे लिए अब कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब आपके पास खोने को कुछ है ही नहीं तो आपको डर किस बात का, जॉब ही तो अगले साल फिर लग जाएगी, यहाँ छोड़ के कहीं और लग जाएगी। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जस्टिफाई कैसे करूँ। तो उन दिनों में क्या था, ये 2016 से 18 जॉब किया था, तो 18 में जब मैंने जॉब छोड़ी तो नक्सली वाला कुछ चल रहा था इधर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की तरफ, झारखंड की तरफ। मैं जॉब छोड़ चुका था, और मैं जॉब छोड़ने के एक महीने तक मैं घर से उसी समय निकलता था जिस समय जॉब के लिए निकलता था,
1: अच्छा,
0: और उसी समय घर पे आता था जिस समय जॉब से आता था,
1: तो क्या बताया,
0: ताकि घर वालों को रियलाइज ना हो।
1: अच्छा।
0: और मैं करता क्या था उस बीच कि कहीं पे कोई पर्यावरण का सेमिनार हो रहा है, एक दो भैया थे जो काम कर रहे थे उनके ऑफिस पे जाके बैठता था, कहीं ऐसा प्रोग्राम चल रहा है उसको जाके सुनना है, और कई बार उधर से मेट्रो में बैठ के आता था, यहाँ एक सीपी में बीच में गोल चक्कर है बहुत बड़ा सा, उस पे जाके बैठ जाता था। तो वो मेरा काम था। तो मैंने फिर एक दिन ऐसे ही कहा अपनी मम्मी से कि वहाँ जो है मेरा ट्रांसफर उधर हो रहा है छत्तीसगढ़। तो मम्मी ने पूछा छत्तीसगढ़ कहाँ पड़ता है, क्योंकि मम्मी तो हमारी कभी स्कूल देखी नहीं कैसा होता है स्कूल, उन्होंने छत्तीसगढ़ क्या, उन्होंने अपने नोएडा के बाहर कभी जाके नहीं देखा। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा छत्तीसगढ़ वही जगह है जहाँ पे आजकल नक्सली और बहुत हमले हो रहे हैं जो टीवी में देखा था। तो उसने कहा, नहीं नहीं बेटा वहाँ नहीं जाना, तुम जॉब छोड़ दो कहीं और ढूंढ लो।
1: अच्छा।
0: तो मैंने कहा ठीक है कल छोड़ दो।
1: पूरा वो भूमिका तैयार की उसके बाद,
0: क्योंकि जस्टिफाई करने में मुझे समय लगा उसको कि उनको बताऊं कैसे, है ना, मैं बोलूंगा क्या, हाल तो मेरी जॉब मेरा डिसीजन वो वाला नहीं है, बट हम गांव के लोग हैं, हमें पेरेंट्स को भी साथ लेके चलना है, को भी बुरा नहीं फील कराना है, उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई है हमसे हमारे। लेकिन पिताजी इस काम से बिल्कुल ना खुश थे, वो मुझसे नहीं कहते थे लेकिन मेरी मम्मी को बहुत डांटते थे, तुम्हारी वजह से ये कर रहा है, तुम बोलती नहीं हो कुछ, ही है घर का नाश हो जाएगा, ये है वो है।
1: तो ऑब्वियसली लगता है कि बेटा बेटा जो है
0: हाँ छोड़ के गलत डायरेक्शन में जा रहा है ना, उनके लिए गलत डायरेक्शन थे, और कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि बच्चा इनसिक्योर फील्ड की तरफ। तो कई

0: बार ऐसा होता था कि न्यूज पेपर में मेरा आता था, आज इंटरव्यू देखा है तो कल आएगा ही आएगा, तो मैं गली के बाहर खड़ा हो जाता था, न्यूज पेपर वाले को रोकता था, तो पेज फाड़ लेता था और बोलता था हाँ तुम ले जाओ इसको, तो पिताजी तक नहीं पहुंचता था। लेकिन भाई गांव में आया तो गांव वाले खुद ही आ जाते थे, आज तो तुम्हारे लड़के का।
1: तो वो बताइए मुझे घटना कि जब मन की बात में पीएम मोदी ने आपका जिक्र किया तो फिर क्या माहौल था, आपने सुना था वो?
0: नहीं, मैं तो सुन नहीं पाया था। उस दिन मैं अपने घर पे ही था और लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। मेरा भतीजा आया था, मैं ऊपर था फर्स्ट फ्लोर पे, वो ग्राउंड फ्लोर पे था, तो वो भगा भगा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है। तो मैंने तुरंत लैपटॉप साइड में रखा और मैं भगा भगा नीचे गया, और जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया। तो मैंने उसको बोला कि तुम मजाक क्यों करते हो? अरे नहीं अंकल, अभी देखा था, सच में देखा था मैंने। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था।
1: अच्छा।
0: और बार बार बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे, कॉल थे, मेरे जितने भी लोग मुझे जानते थे आसपास के तो सब लोग कॉल करके बधाई देना चाहते थे। तो जब मैंने एक दो मैसेज पढ़ा तो फिर मुझे अपने भतीजे की बात पे यकीन आया कि हाँ वो सही कह रहा था। उसके बाद से जो लोग कुछ मजाक उड़ाते थे क्या ये ऐसा काम करते हो,
1: वही लोग,
0: तो मेरे पास एक जस्टिफिकेशन और आ गया।
1: हाँ।
0: कि जब प्रधानमंत्री जी तारीफ कर सकते हैं तो आप कौन हो मजाक उड़ाने वाले।
1: और आपके पिताजी का क्या रिएक्शन था?
0: देखो गांव में ना हमारे एक बेटा और पिताजी के बीच में इस तरह के कन्वर्सेशन होते नहीं है। उनको मनी मन खुशी हुई होगी लेकिन उन्होंने कभी कहा नहीं कि बेटा आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ऐसा सिर्फ हम टीवी में देखते हैं कि पिताजी कहते हैं।
1: तो जब इतने बड़े लेवल पे आपकी तारीफ आ गई और सब कुछ अच्छा चलने लगा तो आपने अपने पिताजी को फिर कैसे कन्विंस किया?
0: मैं तो क्या करता था कि जैसे शुरू में जब तालाबों की बात आती थी तो हमारे पिताजी चाहते थे कि तुम कुछ भी करो लेकिन ऐसा काम करो जिससे पैसा आए, तुम्हें इसलिए पढ़ाया ताकि तुम पैसे कमा सको। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैं जब भी तालाबों के बारे में पूछते थे तो मैं कहता था मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मछली पालन में बहुत पैसा आए।
1: अच्छा,
0: इससे मछली पालन करेंगे और करोड़ों रूपए कमाऊंगा। तो वो उस बात से खुश हो जाते थे, अच्छा मछली पालन का काम करना है। मैंने कहा हाँ जी, मैंने सुना उसमें बहुत पैसा है, एक साल ट्राई कर लेता हूँ, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मेरे पिताजी को किसी भी काम से कोई दिक्कत नहीं है जिससे पैसा आए, तो इसलिए मैंने तालाबों के काम को मछली पालन से जोड़ के मैंने उनको जब बताया तो इस साइड की ठीक है भाई, मछली पालन में मैंने भी सुना है बहुत पैसा है।
1: तो कभी फिर ट्राई किया आपने सच में मछली पालन?
0: नहीं, मेरे साथ के करते हैं ना। मैंने मछली पालन कराया, अगर तालाबों को सस्टेन कराना था तो किसी न किसी तरह से एक्वा कल्चर से जोड़ना है, अदरवाइज तो आज आप तालाब साफ करेंगे अगले साल फिर उतना ही भर जाएगा। आप एक साल में तालाब ही तो रेस्टोर कर सकते हैं, लोगों का माइंडसेट थोड़ी ना रेस्टोर कर सकते हैं। जो लोग कचरा फेंक रहे हैं उनको दिमाग को थोड़ा ना अंडू कर सकते हैं कि आज से कचरा फेंकना बंद, क्योंकि आदत खराब होती है धीरे धीरे, धीरे खराब होती है तो धीरे धीरे सही भी होती है। अब हमारा हाथ चलता ही नहीं है डस्टबिन की तरफ, अब तो माननीय प्रधानमंत्री ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है और ये स्वच्छ भारत मिशन चलाया तो थोड़ा थोड़ा आदत में आ रहा है डस्टबिन की तरफ, अदरवाइज तो फेंकने की तरफ ही चलता है। मैं तो जब कॉलेज में जाता हूँ, स्कूल में जाता हूँ, बच्चों को उदाहरण देता हूँ कि भाई अगर मैं आपको आज होमवर्क देके आऊँ, होमवर्क देके जा रहा हूँ कि आपको नेचुरल सीनरी ड्रॉ करके लानी है कल, तो मुझे पता है 90% बच्चे क्या ड्रॉ करके लाएंगे, दो पहाड़ पीछे से उड़ता हुआ, एक पक्षी, आगे झोपड़ी, एक छोटा सा पॉन्ड, सूरज निकल रहा है, कहाँ से आया ये, है ना, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही बनाते आ रहे हैं। लेकिन अब वो सब झूठ है, अब ऐसे तालाब नहीं बचे हैं, अब तालाबों की असली पिक्चर बनाइए ना कि तालाब कैसे कचरे से भरे हुए हैं।
1: तो अब तक आपने कितने तालाब साफ किए हैं और उन्हें पुनर्जीवन दिया है?
0: अभी तक तो हम 100 से ज्यादा तालाब कर चुके हैं।
1: अच्छा।
0: और ये 100 तालाब कोई बड़ा है कोई छोटा है ना, कोई 50-50 एकड़ के भी जिसमें एक में से भी 50 तालाब निकल सकते हैं छोटे छोटे है क्या। जैसे उत्तर भारत में आप रहेंगे तो यहाँ पे अगर 500 एकड़ की भी कोई वाटर बॉडी है ना, ह्यूज वाटर बॉडी, उसको भी तालाब ही बोलेंगे। वैसे आमतौर पर तालाब एक छोटी वाटर बॉडी है और झील बड़ी वाटर बॉडी है, लेकिन यहाँ पे उत्तर भारत में आप चाहे कितनी भी बड़ी वाटर बॉडी ले लीजिए उसको तालाब ही बोलेंगे। उदाहरण के लिए कहता हूँ भोपाल का बड़ा तालाब, आप उसको इस किनारे खड़ा होकर देखिए आपको दूसरा किनारा ही नजर नहीं आता और वो समुन्दर लगता है आपको, लेकिन नाम क्या है, बड़ा तालाब, उससे थोड़ा छोटा होता था छोटा तालाब। तो इसलिए यहाँ आपने झील भी रिवाइव करी तो वो भी तालाब ही है। तो ऐसे कर करके हमने 100 से ज्यादा तालाब अभी तक रिवाइव किए और अभी हम 11 स्टेट्स में काम कर रहे हैं एक साथ। हमने गांव से शुरू किया था लेकिन अभी हम उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, पांडिचेरी, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, एवरीवेयर वी आर वर्किंग।
1: आने वाले समय में किस किस जगह को, कौन से तालाब आपने टारगेट किए कि अब यहाँ पर काम करें?
0: नहीं, टारगेट हम नहीं करते हैं, हम क्या है अगली साल के लिए हमेशा एक नई लिस्ट बनाते हैं।
1: अच्छा।
0: और वो लिस्ट बनती है

0: लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग। भाई मान लो आप स्पॉन्सर है, आप किसी गांव से निकले हैं और आप यूएस में रहते हैं और आपके पास अभी पैसे की कोई कमी नहीं है और आप बोलते हैं मुझे अपने गांव के तालाब की बहुत याद आती है, मैं जिस तालाब में नहाया हूं अभी वो एकदम कचरा घर बन चुका है, मैं इसको रिवाइव कराना चाहता हूं। अच्छा। तो हमारी टीम जाती है उसको रिवाइव करती है, जो खर्चा होता है वो देते हैं।
1: अच्छा, तो इस तरह से फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है,
0: फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है। दूसरा है कुछ कॉर्पोरेट है, मान लो मैं एक कंपनी हूं और मैंने इस जिले में एक अपनी कंपनी लगाई हुई है और मैं पूरा मेरा प्रोडक्शन ग्राउंड वाटर से है, मान लो मैं कोल्ड ड्रिंक ही बना रहा हूँ, मैं पैक्ड वाटर बना रहा हूँ, तो मैंने ऊपर वाला प्लॉट खरीदा है उस जिले का या उस गांव का, मैंने नीचे का पानी नहीं खरीदा है, क्योंकि जब मैं वाटर एक्सट्रैक्ट करता हूँ स्पेशली ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो वो उसी प्लॉट का पानी नहीं निकल के आता है, वो वहां से एक किलोमीटर के दूर का भी पानी आता है, वो 500 मीटर दूर का भी, लेकिन वो तो आपने खरीदा नहीं है, आपने तो सिर्फ प्लॉट खरीदा है। तो फिर आपकी एक कॉर्पोरेट जिम्मेदारी बनती है कि जिस क्षेत्र का आप रिसोर्सिस यूज कर रहे हो, जिस पर पब्लिक का हक था, यहाँ की हवा पर पब्लिक का हक है, जितना एक कंपनी के मालिक का हक है उतना ही गांव के एक आदमी का हक है, तो आप कम्युनिटी रिसोर्सिस को यूज कर रहे हो फ्री में, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस सोसाइटी के लिए उस क्षेत्र के लिए आप कुछ करें। इसीलिए CSR लाया गया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो बड़े कॉर्पोरेट है वो अपने प्रॉफिट का 2% निकाल के अलग रखते हैं और उस क्षेत्र के लिए खर्च करते हैं जहां पे उनका प्लांट काम कर रहा है, और ये मैंडेटरी है, ये हर कॉर्पोरेट को करना ही करना है। हम क्या करते हैं, उन कॉर्पोरेट को बोलते हैं कि भाई आपकी फैक्ट्री यहां पे है, आपसे 20 किलोमीटर दूर एक तालाब है जो गांव वाले रिवाइव कराना चाहते हैं और हम उसको रिवाइव करने के लिए रेडी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है हमें सपोर्ट करने की। तो वो CSR के अंतर्गत जरूरी है, सब मदद करते हैं, कुछ कॉर्पोरेट हमारी मदद करते हैं और ऐसे करते करते अभी तक हमारा 60 से ज्यादा कॉर्पोरेट पार्टनर्स हमारे बन चुके हैं अलग अलग क्षेत्र।
1: जैसे मेरे जैसे कोई आम जन के लोग अगर जुड़ना चाहें सफाई के या रिवाइव करने के लिए तो वो क्या कर सकते हैं?
0: देखो शुरुआत तो घर से होती है, अगर तालाब में जो कचरा है वो भी हर इंडिविजुअल का ही कचरा है ना, किसी ने जाके एक ट्रक कचरा तो डाला नहीं है एक साथ, तो हमारा हर घर से एक एक बोतल निकलती है जब वहाँ पे एक ट्रक कचरा होता है। तो जब मैं स्कूलों में जाता हूँ मैं बच्चों को बोलता हूँ अगर आपने 5 किलो प्लास्टिक स्कूल में इकट्ठा कर लिया तो मतलब आपने 1 स्क्वायर मीटर पॉन्ड आपने साफ
1: कर लिया, बेहतर है कि उसे गंदा ही ना किया जाए।
0: हाँ, तो तालाब को रिवाइव करने के 2 तरीके हैं, एक आप जाके तालाब से कचरा निकाले, एक आप तालाब में कचरा जाने ही ना दे। तो जब आप जाने नहीं देते तो वो ज्यादा एफिशिएंट होता है और ज्यादा काम का होता है, इसलिए हम स्कूल के बच्चों को जोड़ते हैं क्योंकि हमें लगता है कि बच्चे ही बदलाव ला पाएंगे, इसके अलावा और कोई, क्योंकि जब आप बड़े पेड़ को उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं और एक छोटे पेड़ को उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं, मतलब अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो बड़े पेड़ का सक्सेस रेट बहुत 5-10% होता है, बड़े पेड़ नहीं बच पाते, छोटे पेड़ तो आप लगाते ही रहते हैं, जंगल लगाइए, तो वो एडॉप्ट कर लेते हैं नई जगह को, उनको अंदर सीखने की क्षमता होती है। तो इसलिए हम बच्चों को जाके बहुत सारी वर्कशॉप करते हैं, हम बच्चों के साथ जाके बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो तालाबों को गंदा ना हो।
1: मतलब हर बड़े काम की शुरुआत जो है वो छोटे छोटे चेंजेस, छोटे छोटे बदलाव से की जा सकती है। रामवीर जी आप यहाँ पर आए और हमारे पॉडकास्ट में इतने सहज तरीके से आपने इतनी अच्छी बातें बताई जल संरक्षण के बारे में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप भी ये छोटे छोटे बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं, कचरा कम फैलाएं ताकि जो हमारी वाटर बॉडीज है वो गंदी ना हो। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए नीति को, नमस्कार।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे तालाबों के संरक्षण और विकास के लिए प्रयासरत पॉन्डमैन के नाम से प्रसिद्ध रामवीर तंवर के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी नीति शुक्ला। आप इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

0: बातें हो रही हैं उन गानों की जिनमें संगीतकार आरडी बर्मन के निर्देशन में भूपिंदर सिंह ने बजाया गिटार। फिल्म का नाम जवानी दीवानी।
1: ए, आओ ना, दिल है बेकरार।
2: नाना, नाना।

आरडी बर्मन ने बतौर गिटारिस्ट ही भूपिंदर सिंह का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपनी कई फिल्मों में पंचम से गाने भी गवाए। सन 1972 फिल्म परिचय।

ऐसा नहीं है कि भूपिंदर सिंह ने सिर्फ आरडी बर्मन के लिए ही अपने गिटार के तार छेड़े। भूपिंदर सिंह ने मदन मोहन के लिए कुछ फिल्मों में गिटार बजाया, जैसे फिल्म हस्त

फिल्म कादंबरी के इस गाने में भूपिंदर सिंह ने गिटार बजाया, संगीत वलायत खान साहब का था, आशा भोसले का ये गाना, कविता अमृता प्रीति।

सुनील कौशिक ने इलेक्ट्रिक गिटार, फ्रेंको वाज ने ड्रम्स बजाए और आज के जमाने के जाने माने संगीतकार ए आर रहमान तब इलैया राजा के साथ कीबोर्ड बजाते थे।

0: गले लगा ले।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने खास तौर पर भूपिंदर सिंह को याद किया और फोकस किया उन गानों पर जिनमें है भूपिंदर सिंह का बजाया गिटार, पर उनकी आवाज के बिना इस कार्यक्रम को कैसे खत्म किया जा सकता है। तो एक झलक उनके कुछ मशहूर गानों की।

0: भूपिंदर सिंह तो चले गए, लेकिन रह गए वो गाने जिनमें उनका गिटार है, रह गई उनकी गजलें और रह गए उनके फिल्मी गाने। भूपिंदर सिंह हमें हमेशा शिद्दत से याद आएंगे। विनम्र नमन। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने गायक और गिटारिस्ट भूपिंदर सिंह पर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान का था। प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।
1: आज के फनकार।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, कार्यक्रम गीतों भरी कहानी, बस थोड़ी ही देर के बाद।
3: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्याम महेश्वरी की कहानी भाई हो तो ऐसा। वाचन स्वर श्याम महेश्वरी का।
4: अज्जू विज्जू की जोड़ी हमेशा चर्चा में रहती। परिवार में कहीं भी कुछ भी काम हो, जन्म मरण, शादी ब्याह, दोनों भाई लगकर काम करते। अज्जू माने अजय, बड़ा भाई,

0: और विज्जू माने विजय, छोटा भाई। 8 साल का अंतर था दोनों में, लेकिन दोनों की पटती बहुत। पटने का कारण था बड़े भैया अजय। विज्जू का बड़ा ध्यान रखते और विज्जू बड़े भैया को भगवान मानता। माने भी क्यों ना, पिक्चर जाना हो, वो भगत जी की रबड़ी जलेबी खाना हो या कुछ और, बड़े भैया अज्जू ही बंदोबस्त लगाते। विज्जू को पिताजी से बड़ा डर लगता, लेकिन अज्जू भैया में कुछ बात थी, पिताजी उनकी बात मान ही जाते। दोनों के बीच में दो बहनें, वो बड़ी वाली बड़े भैया की चमची और छोटी वाली विज्जू की सहेली। पूरा कुनबा बाहर से चाक चौबंद दिखता और अंदर से उससे भी ज्यादा मजबूत।
1: एक दूर

उस दिन विज्जू ने बड़ा खेल कर दिया। स्कूल से एक पत्र मिला था चेतावनी वाला, यदि विजय 6 मासी परीक्षा के किसी भी विषय में फेल हुआ तो फाइनल एग्जाम्स में बैठने नहीं दिया जाएगा। विजय बाबू ने चतुराई से उस चेतावनी पत्र पर पिताजी के हस्ताक्षर खुद कर दिए। 6 मासी परीक्षा हुई और विजय बाबू फेल हो गए। पत्र के आधार पर पिताजी को तलब किया गया। अब पिताजी को कहां से और कैसे ले आए विजय? परीक्षा वरीक्षा तो बात की बात थी, पिताजी तो इस कृत्य पे विजय की पहले ही जान ले लेते। ये बात बड़े भैया अज्जू को बताई गई और वो

ये बात बड़े भैया अज्जू को बताई गई और वो पहुंचे स्कूल विज्जू के अभिभावक बन के। बड़े भैया के इशारे पर विज्जू प्रिंसिपल मैडम के पैर में लौट गया, लेकिन प्रिंसिपल मैडम टस से मस ना हो। फिर अचानक पता नहीं क्या सूझी भैया को, बड़े ड्रामाटिक अंदाज में खुद पैरों पर गिर पड़े प्रिंसिपल मैडम के और माफी मांगने लगे। प्रिंसिपल मैडम की तो हंसी छूट गई, वो फिर हिदायतें देकर माफ भी कर दिया विज्जू को। विज्जू परीक्षा में फिर पास भी हो गया, लेकिन उस वाकये को याद करके आज भी आंखें गीली हो जाती है अपने भैया की उदारता।

विजय कुछ 18-19 साल का रहा होगा। बड़े भैया अब दुनिया की आपाधापी में उलझ गए थे। चार पांच तरीके के धंधों में हाथ आजमाया, लेकिन कहीं कुछ बात बनी नहीं। उम्र हो गई थी सो उनकी शादी की बात चल निकली थी, और ऐसे में काम का ना होना और बड़ी दिक्कत दे रहा था। भैया के किए सारे एहसानों का विज्जू को स्मरण हो आया। यही वजह रही होगी शायद, भैया जो बोलते विज्जू कर डालता। मतलब वो दादाजी के खेत संभालने की जिम्मेदारी आई विज्जू पे, तो भैया के कहने पर वो भी कर दिया। वो जो नहीं बोलते विज्जू वो भी कर देता। वो कचरे से बिजली बनाने का काम किया भैया ने, तो विज्जू फैक्ट्रियों में घूम घूम के कचरा भी लाद लाद के इकट्ठा करता रहा। बड़ी बहन हालांकि बड़े भैया से छोटी थी, लेकिन उनकी शादी बड़े भैया की शादी से पहले हो गई। विज्जू शादी में इतना काम कर चुका था कि बहन की विदाई का समय आते आते वो कहीं पसर के सो गया। बड़े भैया ने ही आकर जगाया, बोले, दीदी विदा हो रही है, आ जा।

उनको बाय बोलकर सो जाना। मम्मी और बड़े भैया खूब रोए दीदी के विदाई पे। विज्जू को दीदी के जाने का रोना तो नहीं आया, लेकिन भैया को इतना रोते देख वो भी रो दिया। बैंड वाले ने वो विदाई वाला गाना बजा के माहौल और भी गमगीन कर दिया था।

बड़ी बहन की शादी के बाद दादाजी चल बसे। अज्जू भैया का वो बिजली उत्पादन कारखाना भी बंद हो गया, मतलब वो चालू था लेकिन भैया वहां जाते नहीं थे। पता नहीं पार्टनर्स लोगों से कुछ झगड़ा हुआ था शायद, पता नहीं। बिज्जू कभी भैया से सवाल नहीं करता था, उसे लगता था भैया जो कर रहे हैं वो सही ही है। दादाजी के जाने के बाद पिताजी और बड़े भैया एक दिन बिज्जू के पास आए कुछ प्रॉपर्टी के कागजातों के साथ। उन्होंने बिज्जू से उन कागजातों पर 8-10 जगह साइन करवाए। बिज्जू को याद आया उसे नदी में तैरना सिखाया बड़े भैया ने। वो पानी में थोड़ा दूर जाकर खड़े हो जाते और बिज्जू से कहते, कूद जा मैं खड़ा हूं तुझे संभाल लूंगा, और बिज्जू कूद जाता। बिज्जू हाथ पैर मार के उन तक पहुंचता तो वो और पीछे चले जाते, और बस यही खेल कर करके तैरना सिखा दिया भैया।

ने उसे, अब तो भैया कहें इस कुएं में कूद जा तो वो कूद जाए। इन कागजातों पर हस्ताक्षर कौन सी बड़ी बात थी? भैया के भावों से विज्जू को हमेशा यही लगता जैसे कह रहे हो तो चिंता मत कर, मैं हूं ना।

बड़े भैया की शादी की बात चल निकली, उनके लिए लड़की ऐसे ढूंढी जा रही थी कि बस राजकुमारी मिल जाए। भैया ठहरे भी गोरे चिट्टे स्मार्ट, दुल्हन अच्छी मिली, मतलब भैया जितनी गोरी तो नहीं लेकिन शांत स्वभाव की दिखी। हंसने में थोड़ी कंजूस मालूम पड़ती थी लेकिन विजय अपनी हंसी में उनको शामिल कर ही लेगा। इतना जोर जोर से हंसता है, कहां तक बचेगी भाभी प्यारी। सबसे ज्यादा उछलना विजू को आया भाभी के आने का। अलग अलग पकवान तरकारी खिलाएगी, गप्पे लड़ाएगी, ताश खेलेंगे घंटों बैठकर, और वो नदी किनारे पानीपुरी खाने जाएंगे और पता नहीं क्या क्या नाश नाच के काम किया विज्जू ने शादी में। विज्जू से बड़ी बहन की शादी, मतलब वो जो तीसरे नंबर की बहन, उसकी शादी भी साथ ही में हो गई। सहेली जैसी बहन गई तो सहेली जैसी भाभी आ गई। विज्जू अलग अलग तरीकों से बार बार बोलता, मेरी भाभी। ये बोलने में उसे बड़ा मजा आता। कारण तो नहीं पता लेकिन बेवजह ही इस उद्बोधन को हर बात में ले आता। मेरी भाभी ये, मेरी भाभी वो, मेरी भाभी मेरी भाभी।

विभिन्न पत्रिकाओं में अलग अलग तरह की व्यंजन विधियां आती और विज्जू लाल आकर भाभी को देता। कभी मकई की टिक्की, कभी मखाने की खीर, कभी मेथी मटर के कोफ्ते मलाई वाली सब्जी। लेकिन एक के बाद एक भाभी ने कुछ नहीं बनाया। शादी के बाद विज्जू उनके चेहरे पर हंसी तो नहीं ला पाया, उल्टा जो एक हल्की सी वो मोनालिसा मुस्कान दिखती थी कभी, वो भी गायब हो गई। उम्र कम थी विज्जू की, लेकिन समझ में आ रहा था कि उसकी मां और भाभी की पट्टी नहीं थी, वही वो सास बहू वाला एंगल कह सकते हैं। विज्जू का दिल टूट गया। सुख बुघाट ये भी थी कि भैया का कुछ काम जम नहीं रहा था। अब वो तेल का धंधा कर रहे थे कुछ, आसपास वाले बताते हैं कि शायद तेल का सट्टा कर रहे थे। विज्जू के लिए ये सब कुछ समझ से परे था। आदतन कोई सवाल तो विज्जू करता नहीं था भैया से, लेकिन कुछ शंकाएं जरूर आई उसके मन में। अब घर में चुप्पी सी रहने लगी थी, अशांति वाली चुप्पी। विज्जू हंसमुख मिजाज का सरल लड़का रहा, ये सब कैसे भाता उसे। घर में टूटे तार बिखरे पसरे दिखने लगे, टिमटिमाती चमक लिए विज्जू की आंखों में अब सूनापन दिखने लगा।

0: गीतों भरी कहानी में आज आप सुन रहे हैं श्याम माहेश्वरी की लिखी कहानी भाई हो तो ऐसा।
1: विज्जू बड़ा हो गया था, फिल्म लाइन में आने का मौका मिला तो बंबई आ गया। आज का मुंबई कल बंबई ही था। अच्छा काम जमा लिया उसने। कालचक्र का पहिया भी अजीब है। बात कुछ ऐसी बैठी कि बड़े भैया का भी वहां काम जोरदार चल निकला, और उससे भी बड़ी बात उन्हें हर सप्ताह मुंबई आना पड़ता अपने काम के सिलसिले में। मुंबई में आकर विज्जू के घर ही रहते हर हफ्ते 4-5 दिन। विज्जू को लगा तो यही था कि अपने गांव से दूर इस पराये शहर में भी भैया के आ जाने की वजह से वही अपनापन फिर लौट आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। भैया तनाव में ही दिखते हमेशा। पैसा आता है तो बरकत आ जाती है, लेकिन भैया के साथ उलट हुआ। भाभी का शांत स्वभाव सुना है अब ज्वालामुखी हो गया है।

दोनों दीदियां बताती हैं अब वहां भाभी का ही राज चलता है। मम्मी पलंग पर आ लगी है और पिताजी को भगवान के सामने बैठने पर मजबूर कर दिया है।

सालों साल निकल गए इस आपाधापी में। ये शहर अब बंबई से मुंबई हो गया। कोरोना काल में स्वास्थ्य की दृष्टि से तो विजय सही सलामत रहा, लेकिन कोई पिक्चर बनाई उसने जिसमें कमर टूट गई उसकी। नौबत यहां तक आ गई कि विज्जू का घर बिक गया। और उधर गांव में सुना बड़े भैया ने बहुत पैसा जमा कर लिया था। मुंबई आने की अब जरूरत भी खत्म हो गई थी, इसलिए वे नहीं के बराबर ही आते, और आते भी तो विज्जू के घर नहीं रुकते, वो कहीं किसी होटल में रुकते थे। आजकल विज्जू को उनके हाव भाव व्यवहार से समझ आ रहा था कि उन्होंने इसलिए मुंबई आना बंद नहीं किया था कि उनकी जरूरतें पूरी हो गई थी, बल्कि इसलिए बंद किया था कि भैया अब विज्जू से मिलने से कतरा रहे थे। उन्हें शायद ये डर सता रहा हो कि विज्जू इतने सालों मुंबई में रखने की कीमत न मांग बैठे। कठिन समय में अपने ही याद आते हैं, और वो अजय भैया जैसे अपने हो तो ज्यादा याद आते हैं।

विजय अभी भी अपने तो अपने होते हैं कि भावों से निकल नहीं पाया था पूरी तरह, लेकिन भैया ने तयशुदा पूरी तरह भुला दिया था बिज्जू को। चलो उसे भुला देते तो भी ठीक था, लेकिन इस वक्त जरूरत में था वो। यही सोचकर मेहरबानी समझ ही मदद का हाथ बढ़ा देते उसकी तरफ, पर ऐसा हुआ नहीं। तब विजय को याद आई अपने दादाजी की जमीन, वही जो दादाजी ने अजय और विजय के नाम कर दी थी, और जिन कागजातों पर तब हस्ताक्षर करवाए थे विजय से, वो इसी जमीन को बेचने के कागजात थे। और उसी जमीन को बेच के भैया ने कपड़े की दुकान ली थी अपनी, जिसने आज यहां तक पहुंचा दिया उन्हें। सुना है कुछ लाखों में बेची वो जमीन आज करोड़ों की हो गई है। नंगे के नवग्रह बलवान, विजय ने सोचा और तय किया कि उस जमीन का अपना हिस्सा भैया से अब मांग लेगा। उनके पास बहुत है ही और इसके पास सब खत्म हो गया है, तो ये सही समय है अपनी हक की गुहार लगाने का।

भैया से बात की बिज्जू ने तो वे साफ मुकर गए। तर किए कि उस जमीन को बेचना तो छोटी सी बात थी, मेन बात तो यह थी कि उनकी मेहनत थी जिसकी वजह से आज ये मिल्कियत खड़ी हो पाई। तर्क नहीं कुतर्क था ये, विजय की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इतने सालों उन पैसों को भोगने के बाद वो अपने ही हो जाते हैं। बड़ा कठिन हो जाता है उन पैसों पर से अपना मोह जाने देना। पैसों का चरित्र कुछ ऐसा ही है, नकारात्मकता बहुत जल्दी आ जाती है। रुआब और रुतबा तो बढ़ता है लेकिन घमंड और लालच भी बढ़ जाता है। पैसों के शुद्धिकरण के लिए बड़ा दान धर्म करना पड़ता है, तब पछता है पैसा। भैया छोटे भाई को उसके हक का छोड़ो उसकी जरूरत का नहीं दे पा रहे थे तो दान धर्म कहां से करते? कहां से चले थे अज्जू भैया, कहां पहुंच गए? और कहां से चला था रिश्ता, कहां पहुंच गए?

विजय ने खूब गुहार लगाई अपने नाते रिश्तेदारों के पास जाकर। अपने हक का गान बखान किया, लेकिन भैया के खिलाफ कौन खड़ा होता। समरथ को नहीं दोष गोसाई, पैसे वालों की कहां कभी कोई गलती होती है। विजय को अपना हक नहीं मिलना उतना नहीं चुभ रहा था जितना उस भरोसे का टूटना जो उसने भैया पे दिखाया था। जान लुटाता था वो बड़े भैया पे। कोई अभी भी कह दे कि ये सब झूठ है, अभी भी बड़े भैया आएंगे सांता बन के उसको सरप्राइज गिफ्ट देने, पर वो नहीं आए। विजय के इतने साल जीवन का अहम हिस्सा झूठा साबित हो गया। अब वो किसी पे भी भरोसा कैसे करेगा, और दूसरों पर तो जाने दीजिए, खुद पर भी भरोसा कैसे करेगा।

आज विजय बेघर है, दिन भर बैठा रोता रहता है, रातों को सो नहीं पाता। इधर गरीबी की मार और उधर विश्वास का खंजर, शूल सी चुभन हिस्सा बन गई है जीवन का। कलयुग की ये घटना कितनों के ही साथ हुई है। संवेदनशील विजय कई तरीकों से अपने आप को संभालने का प्रयास करता रहा। प्रयास करते रहने की एक विशेषता है, मुश्किलों से जूझने के लिए हिम्मत मिलती रहती है। प्रयासों की खुराक सुबह दोपहर शाम लेना शुरू कर दिया उसने दवाई की तरह, कहीं ज्ञान की बात सुनता तो कहीं ध्यान की कोई क्रिया करता। ऐसे ही एक ज्ञान में ये समझ आया कि पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब बचा रहा होगा बड़े भैया से, जो इस जन्म में पूरा हो रहा है। इस ज्ञान ने उसे हौसला दिया और नतीजा भी तुरंत निकला। विजय का बेटा अंधेरे में रोशनी की किरण लेकर आया, अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पा गया और सबसे महत्वपूर्ण, विजय के प्रति पूरा समर्पित। कलयुगी भाई गया तो सतयुगी बेटा आ गया। कुछ जाता है तो कुछ आता भी है, अभी रात है तो कल सवेरा होगा ही। जीवन के इस हिसाब किताब को समझने के बाद आज विजय शांत है। एक रिश्ते के सामने जीवन का ज्ञान पा जाना उसे भगवान का दिया उत्तम न्याय लगा। आज विजय भैया के लिए नरम हो चुका है। कल तक ये सोचने वाला विजय कि भाई हो तो ऐसा ना हो कि जगह सोच रहा है, भाई हो तो ऐसा जीवन

भाई हो तो ऐसा ये की तो भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखक थे श्याम महेश्वरी, संपादक स्नेहल भिसे, वाचन स्वर श्याम महेश्वरी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 11 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आपको सुनवा रहे हैं चंदन दास की गाई गजलें।

अभी आप सुगम संगीत के अंतर्गत चंदन दास की गायी गजलें सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 11:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं कुछ न कहो फिल्म का गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की। गीत के बोल हैं जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

कुछ ना कहो फिल्म के इस गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला गीत फिल्म वेकअप सीट से। आवाजें हैं कविता सेठ और अमिताभ भट्टाचार्य की। शब्द रचना है जावेद अख्तर की और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

कविता सेठ और अमिताभ भट्टाचार्य का गाया गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म वेकअप सेठ से। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म क्यों हो गया ना से। अनु मलिक की बनाई धुन पर गीत को आवाज दी है साधना सरगम और उदित नारायण ने। गीत के बोल हैं समीर के।

पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का अगला गीत, फिल्म प्यार तो होना ही था से। आवाजें हैं आशा भोसले और उदित नारायण की, गीत के बोल समीर के और संगीत जतिन ललित का।

तेरे नाम फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। गीत के बोल थे समीर के और संगीत हिमेश रेशमिया का। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है FM 101.3 MHz पर। दोपहर के 12 बजने को है। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

जब किसी भारतीय निजी कंपनी ने देश में डिजाइन और तैयार किया गया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम एक मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ये चार चरणों वाला रॉकेट तेज और जरूरत के अनुसार उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा

कितना प्यारा गाना है और कितना सही एक श्रोता ने लिखा है कि किशोरदा का ये गाना जितनी बार सुनो वही किशोरदा के साथ सुधा मल्होत्रा का नाम भी लिखना चाहिए। किशोरदा और सुधा मल्होत्रा का ये गाना जितनी बार सुनो दिल नहीं भरता है। और एक श्रोता ये लिखते हैं कि मुझे कुछ कहना था पर सोचते सोचते कई बरस लग गए और वो किसी और की हो गई। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने कहा है कि इस गाने के संगीतकार हेमंत कुमार हैं। और एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि क्या ये फिल्म कहीं देखने मिल सकती है, अब ये तो खोज कर बताना पड़ेगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पढ़ाई के दौरान जब अपने किसी खास दोस्त से कुछ बात कहने का दिल में उमड़ घुमड़ होता था, भाई इन्हीं के शब्द हैं कि आज दिल की बात जरूर कहेंगे लेकिन एन वक्त पर मन कहता चलो कभी दूसरी बार, मेरे साथ ऐसा ही होता रहा है। ये एक श्रोता की बात। और उसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स धड़ाधड़, ये जो मोबाइल की कंप्यूटर की स्क्रीन है ये स्क्रॉल होती चली जा रही है। श्रोता लिख रहे हैं कि हमने कई लोगों के खत भी पढ़कर सुनाए और कुछ लोगों को खत भी लिखे और उन्हें समझाया भी और बातें सुनकर रोए भी वगैरह वगैरह। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मैं बचपन से विविध भारती सुनती हूं, मेरी मां और मेरी दोनों बहनें विविध भारती की फैन हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि आपने पूछ ही लिया है तो आज बता देते हैं, 40 साल पहले की बात है, मेरी दुकान पोस्ट ऑफिस के सामने थी, आज भी है, ससुराल से श्रीमती जी का पत्र आता था, पोस्टमैन मुझे इशारा कर बुलाकर दे देते थे क्योंकि पिताजी जब सामने बैठे होते थे तो शर्माती थी। ठीक है भाई, ये एक बात का खुलासा हुआ। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जिनकी बात, एक श्रोता ये लिखते हैं कि विविध भारती ने अब ये मौका दिया है कि हम चिट्ठियों के जरिए अपनी फरमाइशें भेजें,

हम भेज रहे हैं। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि इमोजी के जरिए हम तो अपनी फीलिंग नहीं बता पाते, पर हाँ बच्चे जरूर जानते हैं कौन सी इमोजी किस तरह की है और बताते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई इमोजी भेजनी और कोई गड़बड़ इमोजी आपने भेज दी हो क्योंकि आपको उसका मतलब ही नहीं पता?

0: सोचो ना यार क्या हुआ।
1: जमाने को दिखाना है फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना और बहुत सारे श्रोताओं के इतने सारे कमेंट्स आए हैं। एक श्रोता ये लिखते हैं कि एक बार चश्मा लगाया नहीं था तो पता नहीं चला, कुछ का कुछ इमोजी बीच गया, बाद में समझ में आया। भाई ये चश्मा लगाना कितना जरूरी है ये इस कमेंट के जरिए पता चल गया। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि कभी कुछ का कुछ बिक जाता है तो गिल्टी फील होता है। और इसके अलावा एक और श्रोता है, उन्होंने भी बिल्कुल यही बात लिखी है। और तो बहुत सारे श्रोताओं ने ये कहा है कि भाई आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ और बहुत सारी बातें कहने का मौका आप सभी ने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। फिर मिलेंगे, सुनते रहिए विविध भारती, क्योंकि विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। और दिन की इस भागदौड़ में आपको जहां कहीं भी रहना है विविध भारती के संग रहना है।

सिलसिला ये केवल एक शब्द नहीं बल्कि जीवन की निरंतरता का प्रतीक है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो किसी न किसी सिलसिले का हिस्सा होता है। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के अंतिम पहर तक हर पल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। रिश्तों का सिलसिला, सपनों का सिलसिला, संघर्षों का सिलसिला और सफलताओं का सिलसिला यही जीवन को अर्थ प्रदान करते हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि प्रकृति भी एक अनवरत सिलसिले पर ही आधारित है। ऋतुओं का बदलना, नदियों का बहना, समय का आगे बढ़ना हमें यही सिखाता है कि रुकना जीवन का स्वभाव नहीं है। जीवन तब तक सुंदर है जब तक उसके भीतर आगे बढ़ने का सिलसिला बना रहता है।

जीवन के इस सफर में कई बार कुछ सिलसिले अचानक टूटते हुए प्रतीत होते हैं। कोई अपना दूर चला जाता है, कोई सपना अधूरा रह जाता है, या परिस्थितियां हमारी उम्मीदों के विपरीत हो जाती हैं। ऐसे क्षणों में लगता है कि

सब कुछ थम गया है, लेकिन वास्तव में जीवन कभी रुकता नहीं। एक अध्याय समाप्त होता है तो दूसरा प्रारंभ हो जाता है। यही समय का नियम है और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई भी। टूटे हुए सिलसिलों की राख से ही नए अवसर जन्म लेते हैं। इसलिए कठिन परिस्थितियां हमें निराश करने के लिए नहीं, बल्कि एक नए सिलसिले की शुरुआत करने के लिए आती हैं। जो लोग इस सत्य को समझ लेते हैं, वे हर अंत में एक नई शुरुआत खोज लेते हैं।

दायक सिलसिले की कहानी है। पीढ़ियां बदलती रहीं, लेकिन ज्ञान, संस्कार, संस्कृति और अनुभवों का प्रवाह लगातार आगे बढ़ता रहा। आज हम जो कुछ हैं, वो उन अनगिनत लोगों के प्रयासों का परिणाम है जिन्होंने अपने समय में कुछ अच्छा करने का सिलसिला जारी रखा। यही कारण है कि हमें भी अपने कर्मों, अपने मूल्यों और अपने सकारात्मक विचारों का सिलसिला बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हमारे छोटे छोटे प्रयास भविष्य की किसी बड़ी कहानी का आधार बन सकते हैं। अंततः जीवन का सार यही है कि हम उम्मीद, प्रेम और मानवता का सिलसिला कभी टूटने न दें। जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, तब तक जीवन में अर्थ, ऊर्जा और आनंद बना रहेगा।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समय सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम। गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
3: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
4: होठों पे सच्चाई रहती है।
0: तो सुनना न भूलिए 21 और 22 जुलाई को शाम 4 बजे। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सुनिए समाचार दिल्ली से।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटर रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इसे हैदराबाद की एक निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने बनाया है। एक रिपोर्ट।
6: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
5: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि

0: देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
1: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम वन की टीम को उनसे मिलने का निमंत्रण भी दिया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
2: Congratulations in space for facilitating in space और इसरो को इस शानदार सार्वजनिक निजी भागीदारी और सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई। इस सहयोग को अनुकूलित करने के लिए इसरो को बधाई। आज के सफल प्रक्षेपण ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।
3: इन द हाईली कॉम्पिटिटिव एरिना ऑफ स्पेस इकोनॉमी
0: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों, स्वदेशी नवाचार और उद्यमशीलता की भावना की मजबूती को दर्शाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क को और मजबूती मिलेगी। ये रेलगाड़ी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के साथ साथ रामनगर के निकट स्थित मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी लाभदायक होगी। रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में दो दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी।
4: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है। और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में दो दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है, कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
0: ये समाचार हमारे newsonair ऐप और हमारे वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
5: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा।

0: थानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
1: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
1: ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का एक शानदार नमूना था। इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अनेक लेटेस्ट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया गया। इसने साबित किया है कि हमारी सेनाएं बदलाव को समझ भी रही हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग भी कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत के उद्योगों पर विश्वास का प्रमाण है।
0: श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने का भी संकल्प लिया है।
1: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री वैष्णव देश के प्रमुख बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से युवा शोधार्थियों के लिए एक देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। ये पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर छात्रों को मौलिक शोध के लिए प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक वित्त, सुशासन, वित्तीय संघवाद, सामाजिक क्षेत्र के व्यय और सतत विकास जैसे विषयों पर शोध एवं सार्थक विमर्श को बढ़ावा देना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर

0: डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतिभागियों को माईगव पोर्टल के माध्यम से एक मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ है अक्षित वैद्यान।
1: पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई है। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। हालांकि किलियन एम्बाप्पे ने 8 गोल और 3 असिस्ट के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आज कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है।

0: न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आज कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, ओडिशा तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कल तक अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ईरान ने आज कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। हमलों के बाद कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी। ईरान से दागी गई मिसाइलों के कुवैती हवाई क्षेत्र में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: पर आप विवेक हैं सदाबहार नगमे
3: मुझको

हम रही फिल्म का ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। आज है जानी मानी गायिका मुबारक बेगम की याद का दिन।

मुबारक बेगम कृष्णा बोस सुवन कल्याणपुर की आवाजों में जुआरी फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी की बोल थी, संगीत कल्याण जी आनंद जी का था।

0: 25 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम। गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
3: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: बहती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
3: अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
1: देवदास फिल्म का गीत मुबारक बेगम की आवाज, गीत साहिर लुधियानवी का, संगीत सचिन देव बर्मन का।

0: मन चाहे गीत,
1: मन चाहे गीत,
0: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?

0: कार्यक्रम मन चाहे गीत
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750 मुंबई 400091।
3: मन चाहे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज जो पहला गाना है वो आप सभी की फरमाइश पर वरुण जौलका से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे, छबड़ा जिला 12 राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो, राजस्थान जोधपुर से अशोक प्रेमलता और सुमित बाणिया, और ये चिट्ठी है पंचगवहाण उबारखेड़ से साहिबराव वेड़कर, अमोल मिस्त्री और आनंद निहा। इसके अलावा उल्लासनगर से पुरुषोत्तम और ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर, और पतरोड़ा गंगानगर राजस्थान से मंगल जनागल राही, रोशनी जनागल, अंकुर और डॉक्टर सुनील जनागल। आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम की पहली पेशकश है मुकेश की आवाज में पूर्णिमा फिल्म का गाना गुलजार के बोल कल्याण जी आनंद जी की तर्ज।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म ज्वेल थीफ से है, लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र के बोल हैं, सचिन देव बर्मन का संगीत, और आप सभी की फरमाइश है। श्री गंगानगर से निकी राम बांसीवाल, जॉनी बांसीवाल और धनराज बांसीवाल, हावड़ा नाजिरगंज नेपाली पारा से हमारे कुछ श्रोता हैं, दीपक, स्वीटी, उषा, ज्योति, किरण, दिर्शा और रितेश लिंबू और

उनका पूरा परिवार ये हावड़ा से। इसके अलावा घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, वंदना नगर इंदौर से ललिता नारायण खर्चे, संजना परी खर्चे, गणेश खर्चे, दीपिका, स्वाति और प्रयाग चौधरी, और ये फरमाइश है रेखा, पूजा, नंदिनी, बबीता, शोभा रघुवंशी, स्वाति, इन सब की इंदौर से, राजस्थान जोधपुर से इन श्रोताओं का नाम पहले हो चुका है। तो सुनिए ज्वेल की फिल्म का ही गाना।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं मनचाही गीत कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में श्रोता हमें लिखते हैं तमाम देशभर से चिट्ठियां, और इन चिट्ठियों के जरिए हम ये जान पाते हैं कि कहां कहां श्रोता हमें सुन रहे हैं और कौन कौन से गानों की फरमाइश करना चाहते हैं। ये पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता और रिमझिम गुप्ता की चिट्ठी, राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती जासमीन और प्रयागराज, पाहरा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंदोर, चंद्रकांत, प्रीति और छाया, छत्तीसगढ़ बेमित्रा से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, रुद्र कुमार सारथी, वीरेंद्र कांत सारथी और ब्रजकांत सारथी। और इसके अलावा ये फरमाइश जालना से डॉक्टर नामदेव भूतेकर, अशोक भूतेकर, गणेश और कार्तिक भूतेकर। बहुत ही सुंदर लेखनी में श्रोताओं की ये चिट्ठियां। आप सभी की फरमाइश पर ये गाना, शर्मीली फिल्म का गीत नीरज की बोल।

मंचा गीत कार्यक्रम की अगली पेशकश जो है उसकी फरमाइश आप सभी ने भेजी है। बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, राजाराम नगर देवास से राजेश अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन, सलोजी महाजन और चीकू, ये चिट्ठी आई है खोखरिया बनाड रोड सूर्य नगरी जोधपुर से जबर सिंह फूल वाले रुद्राक्ष मानू दिनेश सोढ़ा देवेंद्र सिंह की और राजेश जैन, अरुणा जैन, दीपक जैन, गौतम, बिट्टू, मट्टू, सारिका, बनीता, मनोज जैन और समता जैन ने हमें लुधियाना के मोहल्लापुर दम्बा मंडी से चिट्ठी लिखी है। वारंगा फाटा से वैष्णवी मोरे, अश्विन मोरे, कुंडलीक और पांडुरंग मोरे की चिट्ठी है और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा की चिट्ठी। सितमगढ़ फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी और कीजिएगा सितमगढ़ फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल आरडी बर्मन की तर्ज।

और अब कार्यक्रम का अगला गाना जो धरती फिल्म से है। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं सुकोटा रोडा कोला से गजानन कुंभार, पद्मावती, विशाल, ज्योति और इनका पूरा परिवार। इसके अलावा बड़वाहा से अयांश रावल, पुष्पेंद्र और इंदिरा रावल, चांदुर बिस्वा से राम भाऊ, लक्ष्मण भाऊ, भारत, शत्रुघ्न नारायण, पंच गवहार तेलहारा से साहेब राव, अमोल खालिक और इनके साथी, शेगांव से मोहम्मद अनीस मुहाल, मोहम्मद दानिश और मोहम्मद रिजवान। आप सभी की फरमाइश पर ये गाना। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें। हसर जयपुरी की बोल, शंकर जयकिशन की।

इसी के साथ अब आज का मनचाही गीत कार्यक्रम खत्म होता है। मनचाही

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

0: हेलो हेलो नानी।
1: हाँ गुड़िया।
0: अरे हाँ हाँ, मैं गुड़िया ही बोल रही हूँ। मुझे पता था आपका फोन आएगा।
1: हाँ अच्छा अच्छा, जल्दी बता वो आया कि नहीं।
0: अरे रुकिए, मैं खिड़की के पास ही जा रही हूँ, खिड़की तो खोलने दीजिए। हाँ बोलिए नानी, आपकी टाइम की सेंस बड़ी परफेक्ट है।
1: नानी किसकी हूँ,
0: आपका फोन आया, मैंने खिड़की खोली और मैं नीचे देख रही हूँ कि भूरे भी अपने ठिकाने पहुँच गया है।
1: अरे गुड़िया, तो खिड़की पर आ भी गई फिर भी सामने वाले फ्लाईओवर का शोर नहीं सुनाई दे रहा।
0: ओ फोन नानी, आप भूल गई लगता है, लॉकडाउन चल रहा है भाई, पूरा सन्नाटा पसरा है, शोर कैसे आएगा।
1: अरे बेटा, मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि भूरे का डिनर हुआ कि नहीं।
0: आप भी ना नानी, डिनर तो हम करेंगे थोड़ी देर में। उफ, ये मैं क्या बोले जा रही हूँ, वैसे आप ठीक ही कह रही हैं, भूरे भी तो डिनर ही करेगा ना रात में, अब भले दूध भात खाए या रोटी।
1: आज क्या मिल रहा है उसे, क्या लाया बेरा, दूध भात की ब्रेड।
0: आप उसे बेरा क्यों कह रही हैं? अरे वो तो उजला फरिश्ता है, रोज शाम अपने साथ भूरे के लिए पानी और खाना लाता है।
1: देखो गुड़िया, खाना जो बनाए वो खानसामा और जो खाना परोसे वो बेरा ही हुआ ना। अच्छा ये बता, तो उसे उजला फरिश्ता क्यों कह रही है।
0: अरे नानी, वो इसलिए कि या तो वो व्हाइट टी शर्ट पहन के आता है या उसकी टी शर्ट में थोड़ा बहुत व्हाइट कलर होता जरूर है, और काम काम तो वो एंजल जैसा ही करता है, तो हुआ ना उजला फरिश्ता।
1: बड़ी खोज खबर रखती है रे तू उसकी है।
0: हाँ और पता है दादी क्या कहती है, वो कपड़े उजले पहनता है, उसका मन भी उजला है, तभी तो हर रोज भूरे के लिए खाना लेकर आता है। पता है नानी, बारिश हो तो भी आता है, और दादी ने ही उसे ये नाम दिया है उजला फरिश्ता, इनोसेंट एनिमल्स की हेल्प करने वाला एक एंजल।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी बातों की दादी, अब ये बता आया कि नहीं तेरा उजला फरिश्ता।
0: अभी तक तो नहीं आया नानी, पता है नीचे भूरे भी इंतजार में बैठा है।
2: अरे गुड़िया बेटा, गुड़िया आ जाओ बेटा, तुम लोग सब लोग खाना खाने के लिए तैयार हो गया, खाना टाइम हो गया।
0: ओके ओके मम्मा। अच्छा नानी, नीचे भूरा खाने की वेट कर रहा है और यहाँ हमारे डिनर की भी कॉल आ गई, तो आपको बाकी रिपोर्टिंग में खाना खाने के बाद दूंगी। ओके बाय।
1: बाय बेटा,
2: आ जाओ सब लोग, आगे सब लोग।
0: वाओ रायता, माय फेवरेट। मम्मी और ये इतने बड़े डोंगे में आपने क्या ढक के रखा है, मैं देख लूं खोल के।
2: हाँ हाँ देखो देखो।
0: उफ, ये क्या, ये तो चावल दिख रहे हैं
2: जी,
0: और कैरेट, कैप्सिकम भी।

0: नहीं तो क्या? भूरी की स्टोरी है ही इतनी वंडरफुल।
1: अच्छा कैसे लिखे? आपको पता तो है सारी कहानी नानी।
2: अरे पर मैं भूल जाती हूँ ना रे, तू अपने नानी को जैसे प्यार से सुनाती है ना, वैसे ही जरा प्यार से मुझे भी सुनाना, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है रे।
0: अच्छा तो सुनिए, वो हमारी लाइफ में मेरे कमरे की खिड़की से आया।
2: खिड़की से आया? कमरे की खिड़की से? अरे हम 12वीं मंजिल पर रहते हैं, खिड़की से कैसे भला आया?
0: ओहो दादी आपको कहानी सुननी है ना?
2: हाँ हाँ सुना सुना सुना।
0: हाँ तो खिड़की के नीचे, ठीक नीचे वो जो फ्लाईओवर है ना,
2: हाँ
0: वहाँ वो रोज शाम को आता है। दिन भर पता नहीं कहाँ रहता है, रात को कहाँ सोता है ये भी नहीं पता।
2: अरे तो तुमने पता लगाने की कोशिश नहीं की?
0: ओहो दादी लॉकडाउन में नीचे उतरना अलाउड नहीं है, तो फाइंड आउट कैसे करूँगी? हम तो बस खिड़की से ही देखकर खुश हो लेते हैं।
2: अरे इसमें खुश होने की क्या बात है?
3: अम्मा अम्मा आपको कहानी सुनना है ना, तो बस सुनिए जो कह रही है गुड़िया।
2: हाँ हम तो सुन ही रहे हैं बहू, सुन रहे हैं।
0: हाँ तो शाम को जब डॉगी फ्लाई ओवर पर पहुँच जाता है ना, तो थोड़ी देर में एक पर्सन आता है, वही आपका उजला फरिश्ता।
2: हाँ
0: और भूरे को कुछ खाने को देता है
1: रोज,
0: और नहीं तो क्या।
1: अच्छा
0: हम तो डेली देखते हैं और इसी की रिपोर्टिंग तो नानी को करते हैं।
4: अम्मा इस कुत्ते को पहली दफा गुड़िया और इसकी माँ नहीं देखा था, अब देखा क्या था, मदद की शुरुआत भी इसी ने की थी अम्मा।
0: हाँ रहता हमसे दूर है लेकिन है तो हमारे फैमिली मेंबर जैसा ही।
2: हाँ हाँ कुछ तो बताया था तुम लोगों ने, अब याद नहीं।
4: गुड़िया याद करो यार, वो रात कैसी थी है?
3: हाँ।
4: हम घंटों खिड़की से देखते रहे, लैंप पोस्ट के आसपास वो कभी इधर उधर चलता, कभी बैठ जाता, कभी खड़ा हो जाता, खड़ा रहता तो न जाने कितनी देर तक एक ही जगह पर खड़ा रहता। लॉकडाउन शुरू हुए अभी, क्यों अभी 3-4 दिन हुए थे।
3: हाँ, हाँ, बस इसी समय की तो बात है।
4: दहशत फैली हुई थी, ट्रैफिक बहुत कम था, फिर भी कोई स्कूटर वाला निकलता तो कुत्ता उसकी ओर लपकने लगता। अरे साफ लग रहा था कि वो किसी का सहारा ढूंढ रहा है।
3: हाँ ये बात तो है, लेकिन कितने डरावने दिन थे, दुकान बंद, दफ्तर बंद, लोगों का आना जाना बंद, और मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा था कि भाई मेरा किचन कैसे चलेगा। और हाँ देखिए आप भी तो जानते ही हैं, हम लोग कभी राशन तो जमा करके हमने रखा ही नहीं था, तो चिंता लगी।
0: ओ मम्मा भूरे की बात बताइए ना।
3: हाँ हाँ हाँ हाँ अब खिड़की से देखते देखते अम्मा कई घंटे बीत गए। एक तो ऐसी ये सुनसान जगह, पैदल कोई आता जाता नहीं, और दोनों तरफ इतने बड़े दानवादार टावर, और बीच में इतना चौड़ा 4 लेन वाला फ्लाईओवर, इतने बड़े महानगर के इस फ्लाईओवर के दोनों तरफ के टावरों में अम्मा 1000-2000 फ्लैट तो होंगे, पर इनके ठीक नाक के नीचे सूखी नदी जैसा फ्लाईओवर, जहां न आदम न आदम चाहत। और पहले तो दिन भर बरसाती नदी की तरह ट्रैफिक से भरा रहता था, पर लॉकडाउन में तो जैसे भूतों का डेरा बन गया है। हमें तो लग रहा था कि ये बेचारा पिद्दू सा तो है, इतनी अकेली जगह पे भटक कर पहुंच गया है, और अब उसे यही नहीं पता चल रहा था क्यों जी कि कहाँ जाए, कैसे करे और कैसे बस्ती में पहुंचे।
2: ए बहू तू भी क्या क्या बोले जा रही है।
3: हाँ अम्मा बिल्कुल सही कह रही है, आप जरा सोचिए सोचिए जरा सा, ये 30-30 मंजिला पर्वत खड़े हैं धरती की छाती पर इनके अंदर की दुनिया कोई और ही है, इन्हें जमीन नहीं दिखाई देती, बस काम से काम रखते हैं इसमें रहने वाले। अम्मा
2: बहू हम भी तो ऐसे ही टावर में रहते हैं ना।
3: हाँ तो अम्मा हम भी तो उनके ही जैसे हैं ना, हम भी तो में सिमटे रहते हैं।
2: हाँ
3: पर उस दिन, हाँ अम्मा उस दिन न जाने कैसे हमारी भी नजर नीचे झुक गई, वरना दोनों तरफ के टावर में लोग ही लोग हैं, लेकिन उन्हें नहीं दिखाई पड़ा, बस हमें दिख गया ये बेचारा।
4: अरे हो सकता है और भी लोगों ने देखा हो, पर हिम्मत ना पड़ी हो कुछ करने की। अब तुम्हें याद है ना, हम भी तो घंटों देखते रह गए थे।
3: हाँ वो तो है, लेकिन हमें भी तो नहीं समझ में आ रहा था ना कि क्या करें, कैसे करें, कैसे इस पिल्ले को पुचकारे, बचाए और कैसे लेके आए। याद है ना यहाँ से कैसे हमने ब्रेड का टुकड़ा फेंका था।
4: हाँ।
3: लेकिन वहाँ कैसे पहुँचता है, इतनी दूर था।
4: तब अम्मा हमारी इस गुड़िया ने ही आइडिया दिया।
2: क्या घर लाने का?
4: अरे नहीं अम्मा, घर लाए होते तो मालूम नहीं चलता क्या। अरे जाकर उसे कुछ देने का, और इसने मुझे अकेले जाने भी नहीं दिया, क्यों याद है ना तुम्हें।
3: हाँ,
4: गुड़िया उस रात क्या हुआ था।

0: やで。
1: パパ、パパ、パパ。
0: अरे क्या है बेटा, क्या हो गया?
1: पापा जल्दी इधर आइए, जल्दी आइए तो।
0: अरे क्या है बताओ
1: तो। पापा देखिए ना, वो नीचे बेचारा कितना टायर्ड और हंगरी लग रहा है। आई थिंक ही इज लॉस्ट।
0: हाँ, भूखा और परेशान है, लगता कहीं तो भटक के आ गया।
1: यहाँ से देखते रहने से कुछ नहीं होगा, वी मस्ट डू समथिंग।
0: अरे हम क्या कर सकते हैं भाई?
1: पापा क्या हम उस बेचारे पपी को कुछ खाने को दे आए? प्लीज पापा,
0: इस समय लॉकडाउन में।
1: प्लीज पापा।
0: बेटा कर्फ्यू लगा हुआ है, रात का टाइम है, नहीं जा नहीं सकते।
1: अरे पापा ठीक कह रहे हैं, कुछ नहीं होगा मामा, कुछ नहीं होगा। अब देखिए तो, पता नहीं कितने दिन से भूखा है, बेचारा मर जाएगा।
0: देखते हैं, भूखा तो है, सोचने दो। अच्छा एक काम करते हैं, अब मैं चला जाता हूँ, कुछ दे आऊंगा, ठीक है? तुम एक काम करो, कुछ ब्रेड व्रेड पड़े हो तो दे दो कुछ।
2: हाँ बिल्कुल देती हूँ मैं। ऐसा करते हैं कि पानी भी दे ले जाइए और ये बिस्किट भी ले जाइए, है ना?
0: हाँ।
2: और लेकिन रुके, ऐसा करती हूँ मैं रोटी बना के लाती हूँ फटाफट। है लीजिए ये सामान, हमने सब थैले में रख दिया, ठीक है? ये देखिए पानी है ना, और रोटी, दोनों चीजें हैं, और ये सामान रख दिया, उसको पानी वानी पिला दीजिएगा, और मास्क कहाँ है आपका?
0: अरे हाँ लगा लिया है।
2: सैनिटाइजर रखिए भाई।
0: अरे रखा है भाई।
1: अरे रुकिए, अरे मुझे भी तो जाना है, मुझे उसे पास से लेना है।
2: भाई तुम वहाँ क्या करोगे?
0: अरे कह रही है तो जाने दो ना यार,
2: कमाल है आप तो।
0: तुम डरोगी तो नहीं ना?
1: नहीं पापा बिल्कुल नहीं।
0: हाँ चल चल चल,
2: तुम डरोगी नहीं, ये क्या है
1: मामा? प्लीज
0: चलो लिफ्ट बुलाओ, और तुम दरवाजा बंद कर लेना अंदर।
1: हाँ पापा आइए।
3: कृपया दरवाजा बंद।
0: अच्छा ठीक है, दरवाजा ठीक से बंद करना।
2: ठीक है, ध्यान रखना अपना।
3: तो बोल, कृपया दरवाजा बंद कीजिए।
2: अम्मा ये लीजिए, आप ऐसा करिए दवा ले लीजिए सोने के पहले वाली, और ये हल्दी वाला दूध भी पी लीजिए।
1: बहू क्या बात है, बड़ी हड़बड़ी में दिख रही है, बाहर ये आवाजें कैसी आ रही थी बहू?
2: अरे वो बाप बेटी नीचे गए ना अम्मा। अरे अम्मा आप दूध पी के सो जाइए
1: इतनी रात को, लेकिन क्या हुआ, सब ठीक तो है ना बहू?
2: अरे अम्मा आप फिक्र मत कीजिए, दूध पीजिए और सो जाइए, वो लोग आ जाएंगे।
1: पता नहीं यहाँ क्या क्या चलता रहता है।
2: मैं सोचती हूँ खिड़की के पास जाकर देखती हूँ, पता नहीं पहुंचे कि नहीं वो लोग। तो पेड़ बीच में आ रहे, लगता है अभी पहुंचे नहीं। क्या करूं, बड़ी चिंता। मैं सोच फोन कर लेती हूँ। हेलो, तो फोन ही नहीं उठा। हेलो गुड़िया।
1: हाँ मम्मा,
2: तुम लोग अभी तक पहुंचे ही नहीं।
1: अरे मम्मा उड़कर थोड़ी ना पहुंच जाएंगे, पैदल चल रहे हैं भाई। चा? और पता है मेन गेट पर सिक्योरिटी वाले बाहर ही नहीं जाने दे रहे थे।
2: क्यों बोला?
1: कितना समझाना पड़ा उन्हें, और आज बाहर हवा भी चल रही है।
2: हवा?
1: और सड़क पर बहुत सारे डॉग्स हैं मम्मी, सब इधर से उधर दौड़ रहे हैं। अच्छा आप फोन रखिए, आप खिड़की पर ही है ना?
2: हाँ हाँ मैं यही हूँ।
1: हाँ तो हम पहुंचेंगे तो आपको दिखी जाएंगे, आप बस वेट करिए।
2: अच्छा
4: बहू आ गए वो लोग क्या?
2: अरे अम्मा आप यहाँ आ गई, अम्मा आप फिक्र क्यों कर रही हैं, वो लोग आ जाएंगे, आप आराम कीजिए।
4: अरे आराम कहाँ से होगा बहू, इस कोरोना का ऐसा डर बैठ गया है कि सपने भी बुरे बुरे आते हैं। इतना डर तो आजादी मिलने के दिनों में भी नहीं लगा था।
2: आजादी? अम्मा आजादी मिलने में डर क्यों भला लगा, और मतलब आप तो उधर से आई भी नहीं थी। फिर
4: आजादी मिलने का नहीं, जो मारकाट मची थी उस वक्त उसका डर। हम कहीं से उजड़ कर नहीं आए थे, पर आतंक ऐसा था कि अब हम क्या कहें।
2: अम्मा आपकी उम्र क्या थी उस समय?
4: अरे वही 5-6 साल की रही होंगी। हम बच्चों को घर में बंद कर दिया गया था, सबको डर था कि लड़कियों को उठा ले जाते हैं, पर आज का वक्त ये तो बहुत ही डरावना है। किसी को हम छू नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते, सैर करने तक हम नहीं जा सकते।
5: अरे अम्मा वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको क्या, आप तो पहले भी कहीं सैर वैर करने नहीं जाती थी भाई।
4: पर डर का साया तो 2400 घंटे है ना, और ऊपर से ये

0: मुआ टीवी मरीजों की गिनती, मरने वालों की गिनती ऐसे बताता रहता है जैसे मौत का खेल चल रहा हो। इतने बीमार पड़ गए, इतने मारे गए।
1: अरे अम्मा अम्मा अम्मा अम्मा, आप घबराइए मत, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा शांत रहिए।
0: हाँ।
1: मैं खिड़की से देखती हूँ कि वो लोग पहुँचे कि नहीं पहुँचे, है ना?
0: हाँ हाँ, देख देख,
1: ठीक है,
0: आ जाए तो जरा मुझे बता देना।
1: गुड़िया गुड़िया, पहुंच गए तुम लोग? हाँ हाँ, मैं खिड़की की तरफ ही आ रही हूँ। हाँ लो, मैं आगे खिड़की पर। अब रुको, हेलो, अरे फोन मत बंद करना। हाँ हाँ हाँ, मैं देख रही हूँ। अरे पर आवाज तो बेटा फोन पे ही सुनाई देगी ना। अरे अम्मा आप, हाँ लो दादी भी तेरी यहीं आ गई। अम्मा देख रही हैं, ये लोग नीचे ही खड़े हैं, पहुंच गए उस बेजुबान प्राणी के पास।
0: हाँ बहू, एक मिनट, मुझे भी तो आगे आने देना, खिड़की के पास आने दे जरा।
1: हाँ अम्मा, ये हम कुर्सी यहाँ रख देते हैं, आप यहीं बैठिए, आइए आइए बैठिए। हाँ मैं फोन को भी स्पीकर पर ऑन कर देती हूँ ताकि अम्मा आप लोग को भी ना इन लोगों की आवाज सुनाई दे, सब बातें पता चल जाए। गुड़िया गुड़िया सुन, पहले उसे पानी पिलाओ।
2: हाँ मम्मा। मम्मा आप देख रहे हो?
1: हाँ?
2: जो कटोरा लाए थे ना, मैंने उसमें पानी डाल दिया। मम्मी देखो ना कैसे पूंछ हिला रहा है, डर भी रहा है। आ गया आ गया, पानी के कटोरे के पास आ गया।
0: अरे लग रहा है रोटी भी खिला रहे हैं।
1: अब पर अम्मा रोटी सूंघ के तो पीछे हट गया।
0: अरे डर रहा होगा ना शायद।
2: मम्मा इसे ना बहुत प्यास लगी है, आप देख रहे हो इतने तेज तेज पानी पी रही है।
1: पता नहीं कब से प्यासा था, और भैया मेरा तो मन कर रहा है कि उसे पुचकारूं, प्यार करूं, छोना सा तो है।
3: पुचकारने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है मैडम, तुम लोग आसमान में टंगे हो।
2: आसमान नहीं, स्वर्ग में बैठे।
0: हाँ बड़ा स्वर्ग, स्वर्ग में बैठे हैं। अरे कैदी हैं कैदी, माचिस की डिबिया में। हाँ।
3: खुद को खुशकिस्मत समझो अम्मा, लाखों करोड़ों में मिलती है ये माचिस की डिबिया।
1: भाई कमाल है, इतनी दूर खड़े हैं फिर भी चैन नहीं है, बस बहस करा लो इनसे जब चाहो तब।
3: बहस नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बयान कर रहा हूँ।
1: अच्छा पहले आप उस जो बेजुबान प्राणी के लिए गए ना उसकी सेवा करिए, और जरा फिर ये बताइए इतनी देर कहाँ भटक रहे थे आप दोनों? 15 मिनट का रास्ता, पूरे 2 घंटे लगाए आप लोगों ने।
3: जमीन आसमान का फर्क यही होता है मैडम, समझिए आप, मतलब हम समझा दें आपको जमीन आसमान का मतलब, यहां जहां हम खड़े हैं वहां पहुंचने के 2 बड़े मोड़ हैं। जब हम चलने लगे तो पहले सुनसान रास्ता आया, डरावना, अंधेरा, तेज हवा चल रही थी, कागजों प्लास्टिक और तमाम चीजों का कचरा उड़ने लगा, गलियों से कुत्ते निकलकर भौंकने लगे, छीना झपटी करने लगे, अजीब सा अंधड़ चलने लगा, कूड़े कचरे की बारिश होने लगी, रास्ता था कि खत्म ही नहीं हो रहा था।
1: क्या कह रहे हैं आप, हमें तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ, न हवा न बारिश।
3: कह तो रहा हूं जमीन पर हालात कुछ और ही होते हैं।
1: अरे क्या ऐसा है बोले जा रहे हैं, आप गुड़िया को फोन दीजिए।
0: अरे बहू क्यों गुस्सा कर रही हो?
1: अरे अम्मा आप रुकिए, गुड़िया गुड़िया ये पापा तुम्हारे क्या कहे जा रहे हैं?
2: हाँ मम्मा सच में बहुत डरावना एक्सपीरियंस था। हाँ? सुनिए तो, फिर पहला मोड़ आया तो वहाँ बहुत लोग थे। लोग क्या थे, प्रोसेशन जैसा ही था, एक जुलूस, लोग बच्चे बूढ़े मर्द औरतें सिर पर गठरियां उठाकर चले जा रहे थे, पैदल साइकिलों पे साइकिल रिक्शा पे किसी भी तरह बस चले जा रहे थे। रदर दे वर रनिंग, यू नो रनिंग अवे फ्रॉम सिटीज ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट मामा टू देयर नेटिव प्लेसेस मामा, दे वर एस्केपिंग माइग्रेटिंग।
1: अरे ये सब तो टीवी पर आता है, प्रवासी मजदूर अपने घर को लौट रहे हैं और क्या।
2: हाँ टीवी जैसा ही पर एकदम रियल लाइव जिंदा, एक बच्चा सिर पर बैग उठाकर चला जा रहा था।
1: अच्छा
2: मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, उसने रिप्लाई ही नहीं दिया, भाग गया। पता है मम्मी, एक अंकल थे बूढ़े से नंगे पैर मम्मा।
1: अच्छा
2: और उनके पैरों में चोट लगी थी। पता है मम्मा कितना ब्लड आ रहा था, और पापा को इतना वरिड मैंने कभी नहीं देखा मम्मी।
1: अच्छा
2: जितने वो उस सीन को देखकर हुए। एंड यू नो
1: क्या,
2: यू नो पापा ने क्या किया?
1: क्या
2: पापा ने अपने स्लीपर्स उन अंकल को दे दिए मम्मा।
1: अच्छा
2: अब देख सकते हो पापा उसके बाद

0: नंगे पैर चल रहे हैं?
1: हैं?
0: हाँ हाँ हैरान, सच में नंगे पैर ही हैं। अरे अम्मा अम्मा देखिए तो जरा सा, इन्होंने तो
2: हुआ?
0: अरे अम्मा ये देखिए तो, इन्होंने स्लीपर अपनी दे दी किसी को।
2: अरे
0: हाँ इनके पैर दुख रहे होंगे गुड़िया।
2: कोई बात नहीं कोई बात।
0: अरे गुड़िया गुड़िया पापा को फोन दो। हेलो हेलो।
3: हाँ हाँ बोलो क्या हुआ?
0: अरे आप नंगे पैर हैं, सड़क चुभ रही होगी आपको।
3: नहीं नहीं आज तो जमीन को फील कर पा रहा हूँ। जानती हो जिंदगी को इस तरह कभी नहीं देखा। जिंदा बचा रहने की इच्छा का परम रूप चरम रूप जिजीविषा शायद इसी को कहते होंगे। ये लोग इस अंधेरे वक्त में दिखे, इन्हें एहसास हो गया कि इन्हें कोई नहीं बचाएगा, न साहूकार न सेठ न सरकार न अमीर न गरीब, खुद ही खुद को बचाना होगा, अपने ही पैरों पर भरोसा करना होगा। ये लोग न जाने कब से चल रहे हैं और इन लोगों को न जाने कब तक चलते रहना है।
1: ये कौन लोग हैं?
3: यही तो विडंबना है, ये लोग हमारे ही शहरों में थे, हमारे शहर इनके ही बनाए हुए थे, ये शहर इनके चलाए ही चल रहे थे, पर ये आज तक कहीं दिखाई नहीं दिए। हमारे लिए इनका अस्तित्व ही नहीं था। ये हमारी ही तरह हाड़ मांस के जिंदा इंसान है।
0: आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो लगता है आपने कोई सपना देख लिया है और वो भी जागते हुए।
3: ये हमारे जैसे लोगों के लिए सपना ही है, कल्पना से भी परे, पर हकीकत जमीन पर उतर कर ही इसे जाना जा सकता है। अरे जानती हो हमारा डर तो दाल रोटी के साथ सब्जी न मिलने का डर है।
0: हाँ।
3: काम वाली नहीं आएगी तो उसके बगैर काम कैसे चलेगा, इसका डर है। पर पता है
0: क्या?
3: इनका डर भूखों मर जाने का डर है। इन्हें यही डर है कि जिंदा बचेंगे कि नहीं। इन लोगों ने इसे भोगा है, मैंने नहीं भोगा, सिर्फ करीब से देखा है और तहल गया हूं, अंदर तक तहल गया हूं।
4: सच पापा बड़ी वियर रात थी वो। ओ माय गॉड आज भी याद करके गूज़बम्स हो जाते हैं।
2: क्या गूज हो जाते हैं? क्या बक रही है?
3: अरे अम्मा रोंगटे खड़े होने को अंग्रेजी में गूज बम्प कहते हैं। अरे अम्मा तुम इसे कभी कभी अपनी भाषा भी समझाया करो यार।
2: हाँ हाँ
4: पापा, लेकिन उस रात पप्पी को जो पानी पिलाने का एक्सपीरियंस था ना, वो मेरी लाइफ का दी बेस्ट एक्सपीरियंस था।
2: हाँ तभी तो तुमने ढिंढोरा पीट दिया, हाय हाय अनाथ कुत्ता है मर जाएगा।
4: अरे नहीं दादी, मैंने तो बस सोशल मीडिया पर शेयर किया था, मुझे डर लग रहा था कि हम इतनी दूर रोज रोज थोड़ी ना जाएंगे उसे खाना खिलाने।
2: हाँ तो इसीलिए तो आ गया ना तुम्हारी मदद करने के लिए वो उजला फरिश्ता।
4: सच्ची? और तब से देखो वो पपी, अरे जिसे आप भूरे कहती हैं,
2: हाँ
4: दिन भर पता नहीं कहाँ रहता है, लेकिन रोज शाम को फ्लाईओवर पर आ जाता है ठीक हमारी खिड़की के नीचे।
2: हाँ।
4: और आपको पता है एक लेन जो खाली रहती है ना वहीं पर, और वो पर्सन वहीं आकर जॉगिंग करता है, पहले भूरे को खाना खिलाता है, फिर अपना मोबाइल चेक करता है, फिर 10 चक्कर यहाँ से वहाँ लगाता है, और पता है ये भूरे लाल उसके आगे पीछे नाचते कूदते रहते हैं। पता है दादी बारिश हो जाए ना तो भी इन दोनों की रूटीन नहीं टूटती।
0: अरे अम्मा जब से ये भूरे को इन्होंने क्या देख लिया, उसकी सेवा क्या करने लगी, बस सोते जागते बस भूरे की कहानी भूरे की कहानी, दादी को सुनाएंगी फिर नानी को सुनाएंगी। भाई
3: अरे तुमको याद नहीं उस दिन पेरेंट्स मीटिंग के बाद जब तुम वापस आई तो तुम्हारे साथ सहेलियां भी आई थी तुम्हारी?
0: बिल्कुल।
3: उनको उनको दिखाने बैठ गई, उनको बताने लगी, उनको ले गई अपने साथ कि चलो हाँ। हमारे साथ हमारे भूरे को देखो,
0: और वो तो उसके संग संग उजले फरिश्ते को भी देखो। ठीक है बेजुबान प्राणी की सेवा तो हम सबको करनी ही चाहिए।
3: हाँ बिल्कुल सही बात है, प्राणी की सेवा करना परम धर्म है, और ये जो इस समय कोरोना का समय हाँ। चल रहा है इसमें ये सारी चीजें अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये बेजुबान जानवर आखिर हमारे ही तो भरोसे हैं, तो ये करना बहुत जरूरी
0: है। बस बस बस शुरू हो गया, ये इनको मौका मिला गुड़िया और तुमने मौका दिया और पापा शुरू हो गए। अच्छा सब लोग बस करो और गुड़िया चलो आओ, सब पराठे खा लो, आ जाओ आ जाओ।
4: क्या मम्मी पापा आप भी ना, अरे भूरे तो हमारा ही

0: आप लोग भी ना। ओह नो, देखो ना बातों में तो मैं भूल ही गई, आज भी आ गया होगा अब तक, और नानी भी मेरा वेट कर रही होंगी। अरे मुझे उन्हें रिपोर्ट देनी है ना भाई, मैं तो जा रही हूँ खिड़की पर। हेलो हेलो नानी।
1: गुड़िया,
0: अरे आप जाग रही हैं?
1: हाँ बेटा, तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ।
0: इज इट? क्या बात है,
1: जल्दी जल्दी बता, क्या वो आया? क्या
0: क्या कर रहा? हाँ हाँ नानी, अब सुनिए तो इत्मीनान से, मैं आपको पूरी रिपोर्टिंग दूंगी, पूरी गुड़िया रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम खिड़की, आप बस सुनते जाइए। हाँ तो नानी, मैं देख रही हूँ कि उजला फरिश्ता आ चुका है, उसने अपने बैग से कुछ निकाला, अब वो रोटी है या ब्रेड ये तो पता नहीं चल रहा है यहाँ से, लेकिन भूरे लाल भी जल्दी जल्दी खा रहे हैं इतना दिख रहा है। अब खाना खत्म भूरे लाल का और भूरे की मस्ती शुरू। उजला फरिश्ता अब तेजी से सैर कर रहा है, कभी इधर कभी उधर, और ये भूरे लाल कभी उसके आगे कभी उसके पीछे उछल कूद कर रहे हैं। नानी आप बस सुनती चलिए। और ये मैं क्या देख रही हूँ? ओहो, भूरे ने उछल कर फरिश्ते की पैंट पकड़ ली और पैंट छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए उजला फरिश्ता। ओह मैं कह सकती हूँ नानी कि भूरे बड़ा खुश है, और नानी भूरा खुश है तो मैं खुश हूँ, और मैं खुश हूँ तो नानी आप खुश हैं, है कि नहीं?
1: बिल्कुल खुश।
0: तो नानी आज की रिपोर्टिंग के बाद अब तो आपको नींद आएगी ना?
1: हाँ बेटा जरूर आएगी।
0: तो ठीक है, आज आप सो जाइए आराम से इत्मीनान से, मैं कल शाम को आपको फिर कॉल करके रिपोर्ट करूंगी। ओके गुड नाइट नानी, बाय बाय।
2: गुड नाइट गुड़िया, बंद करो बेटा फोन अपना, इधर आओ, देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं। तुम्हें खिचड़ी टाइप बिरयानी अच्छी नहीं लगी थी ना?
0: हाँ।
2: तो जानती हो मैंने क्या किया?
0: क्या बताया पापा?
2: दूध लाया।
0: हाँ?
2: दूध तो मिल रहा है लॉकडाउन में,
3: लेकिन मुझे दूध अच्छा नहीं लगता।
2: मालूम है मुझे, इसीलिए मैंने उसका छेना बनाया।
0: क्या बात है!
2: और छेने के बाद उसके संदेश बनाए।
0: इज इट
2: बंगाली संदेश?
0: ओ वाह पापा, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ग्रेट।
2: तो मीठे मीठे संदेश खाओ, और हाँ अपनी मम्मी को भी खिला देना, हमेशा कहती ना कि यही खाते रहते हैं हमेशा।
0: वाह यू आर ऑसम, यू आर ग्रेट।

अभी आप सुन रहे और थे अनूप सेठी का लिखा नाटक जमीन आसमान। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का पात्र सहित परिचय इस प्रकार था। माँ रेणु चतुर्वेदी, गुड़िया आकांक्षा सिंह, दादी ममता सिंह, नानी अनुश्री पाठक और पापा अमरकांत दुबे। संगीत संयोजन और तकनीकी सहयोग दिलीप कुलकर्णी।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा, फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा, पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके? पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह? तो मैंने कहा, ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ।

0: कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: बॉम्बे टॉकीज में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सीमा जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विविध भारती पे एक बार फिर से मैं आई हूं और आप लोगों से रूबरू हूं।
1: जी, आपने थिएटर किया, दूरदर्शन के दुनिया भर के सीरियल्स बनाए, डॉक्यूमेंट्रीज फिल्में बनाई, आपने फिल्में भी बनाई। फिल्में बनाने का विचार कैसे आया?
2: देखिए, क्या है, कला एक नदी है
1: जी,
2: तो नदी जब अपने स्रोत से शुरू होती है तो बहुत छोटी होती है, फिर आते आते धीरे धीरे धीरे, और उसका जो गंतव्य है, डेस्टिनेशन है, वो समुद्र होता है। तो फिल्म जो है ना, समुद्र है
1: जी,
2: तो वहां आना ही था। मुश्किल होता है क्योंकि फिल्म में बहुत पैसे की जरूरत होती है, फिल्म का जो कैनवास है हर तरह से बड़ा होता है, लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे चांस मिल गया फिल्म बनाने का। और उससे ज्यादा सौभाग्यशाली ये रही कि मेरी तरह का सिनेमा जो ऑफ बीट है, एक नई तरह का, जैसे मैंने आपको बताया हार्ट मेरी पहली फिल्म थी, उसमें मैंने शारदा वाला कैरेक्टर तो लिया ही है, जो वो एक गांव की लड़की है जो बिक रही है, और उसके साथ मैंने एक कैरेक्टर लिया है जो पास्ट की लड़की है, बुद्ध पीरियड की लड़की है, उससे पहले की लड़की है, जो तब की है जब भी बिकती थी महिलाएं, स्त्री, तो वो उसकी आत्मा इससे मिलती है। पास्ट और प्रेजेंट को मैंने दोनों
1: को मिलाया है
2: और वो कहती है मैं तब तक मुक्त नहीं होंगी जब तक तू मुक्त नहीं होगी, तू अपनी मुक्ति देख, तो वो उसको वो प्रेरणा देती रहती है। तो इस तरह का सिनेमा बनाने का सौभाग्य मिला मुझे और काफी इंटरनेशनल इसको अप्रिसिएशन भी मिला फिल्म को,
1: काफी चर्चा हुई इन फिल्मों की। और इसलिए मैं आपसे ये भी जानना चाहती थी कि मिस्टर कबाड़ी और द वीकली बाजार जैसी ऑफ बीट फिल्मों का आपने निर्देशन किया, तो क्या अनुभव रही है फिल्में बनाने के?
2: हार्ट द वीकली बाजार का तो अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि सारे कलाकार बहुत मन से काम कर रहे थे। दिव्या दत्ता थी, अर्चना पूरन सिंह थी, यशपाल शर्मा, मुकेश तिवारी, ये सब लोग थे, और म्यूजिक भी बहुत अच्छा था, अशोक चक्रधर ने गीत लिखे थे, अली गनी जो है पद्मश्री है अभी, उन्होंने संगीत दिया था, तो वो तो बहुत ही अच्छा रहा। मिस्टर कबाड़ी जो थी वो कॉमेडी फिल्म थी
1: जी।
2: लेकिन एक गरीब आदमी जब अमीर हो जाता है तो उसकी क्या त्रासदी होती है। गरीब जब तक रहता है तो कोई दुख नहीं है, अमीर होते ही सारे दुख शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को उन अमीरों में शामिल देखना चाहता है। जो अमीर है वो अपनी क्लास कॉन्शियस है, इलीट क्लास वालों में रहना चाहता है, वो क्लब में जाना चाहता है, और वो लोग उसको मुंह नहीं लगाते, पैसा है। लेकिन उसमें भी ये कहने की कोशिश की है कि मतलब आप जिस क्लास से हैं, पैसा आ जाए तो उसको सुविधा के लिए होता है पैसा, और उससे कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत नहीं, आप जहां हैं वहां बहुत खुश हैं।
1: सबसे बड़ा संदेश,
2: सबसे बड़ा जी।
1: तो ये बड़ा अच्छा आपने कंट्रास्ट इस तरह का उस फिल्म में लिया था। तो मुख्यधारा की मसाला फिल्मों से अलग ही फिल्में थी, दशकों तक कहां तक पहुंची होंगी ये फिल्में, आप क्या सोचती एक निर्देशक होने के नाते?
2: अब तो ओटीटी आ गया है और ओटीटी पे है तो काफी लोगों ने देखा उसको, लेकिन चूंकि हमारे पास बहुत बड़े वाले स्टार नहीं थे, इसलिए जब सिनेमा में आई तो उतना नहीं हो पाया, छोटे बजट की फिल्म थी। आजकल क्या है कि आपको फिल्म के प्रमोशन के लिए 10-15 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है छोटी से छोटी फिल्म का, तब लोगों तक पहुंचता है। हमारे पास तो उतना था नहीं, प्रोड्यूसर के पास उतना नहीं था। पहली फिल्म NFDC की थी, उनके पास भी उतना तो प्रमोशन के लिए नहीं था। लेकिन अब जब OTT पे आई है तो अब वो बहुत लाखों लोगों ने देखी है,
1: जन जन तक पहुंची है
2: OTT की मेहरबानी से।
1: लेकिन इसमें कलाकार तो बहुत अच्छे थे, और
2: नहीं, कलाकार अच्छे हो, फिल्म भी अच्छी हो, लेकिन लोगों को पता कैसे चले कि एक अच्छी फिल्म आ रही है, उसके लिए आपको प्रमोशन की जरूरत होती है। प्रमोशन के लिए पैसा लगता है, करोड़ों करोड़ों रुपए लगते हैं,
1: एक मार्केटिंग बहुत
2: मार्केटिंग के लिए जी जी।
1: तो अगर मैं ये जानना चाहूं कि सीमा जी को किस तरह का सिनेमा पसंद है तो क्या कहेंगे आप? आपको व्यक्तिगत तौर पर किस तरह का सिनेमा पसंद है?
2: मुझे अलग अलग तरह का, मूड के हिसाब से। मैं वेस्टर्न सिनेमा देखती हूँ।

0: हूँ बहुत, और मुझे कभी रोमांटिक फिल्में पसंद आती हैं, कभी मुझे बहुत गंभीर फिल्में देखने का दिल होता है। ऑल टाइम हिट जो फिल्में हैं जैसे डॉक्टर जिवागो, और बहुत सारी ऐसी फिल्में, थ्रिलर हैं, हर तरह का सिनेमा मैं देखती हूँ, लेकिन शर्त है कि वो क्लासिक और अच्छा होना चाहिए। और फिर आपके मूड पे भी है, कभी कभी बचपन याद करने के लिए राजेश खन्ना जी का फिल्म देखने का मन करता है कि वो फिल्में, वो याद, वो दौर, है ना।
1: जी
0: बाकी मुझे सत्यजीत रे का सिनेमा, ऋतिक घटक का सिनेमा, इंडियन में अपना ऋषिकेश मुखर्जी, ये इन लोगों का देख के आपको मन को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, और बहुत सहज इनका फिल्म मेकिंग रही है, बहुत सहज रहा है। कोई बहुत ऐसा नहीं है कि ऐसे शॉट ले रहे हैं, वैसे शॉट ले रहे हैं,
1: और कोई
0: लेकिन
1: लाउड सिनेमा नहीं रहा
0: बिल्कुल
1: है
0: नहीं।
1: उनका, नहीं
0: और
1: है
0: आप और हमारे इर्द गिर्द
1: कहानियां
0: की
1: सारे
0: कहानी, हमारे आसपास ही किरदार, आपको लगता है कि हाँ ये वो है, वो है, हमारे
1: कहानियां।
0: अपने, ऐसा सिनेमा जिसे आज रियलिस्टिक सिनेमा बोलते हैं, वो मुझे पसंद है।
1: चलिए तो आपकी पसंद का गीत सुनते हैं, फिर बात
0: जरूर,
1: को आगे बढ़ाते हैं।
0: कल्याण जी आनंद जी का फिल्म मेरे हमसफर का, किसी राह पे किसी मोड़ पे
1: आइए सुनते हैं, बहुत ही
0: जी।
1: सुंदर।

0: सीमा जी, बात चल रही है आज आपके लेखन पर, आपके निर्देशन पर, आपकी पसंद की फिल्मों पर। एक स्त्री होने के नाते आपने कहा कि बहुत संघर्ष किया आपने, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट कभी मन में आया, इस तरह का लेखन, इस तरह की कहानी?
1: ज्यादातर तो मैंने स्त्री प्रधान ही फिल्म या सीरियल्स जो भी हैं बनाई हैं। जैसे अभी हार्ट तो वो ही थी, और अभी जो मैं बना रही हूँ पतंग मसाला, वो भी एक लड़की की कहानी है, वो भी स्त्री प्रधान ही है। और सीरियल्स जो बनाए हैं वो भी स्त्री के इर्द गिर्द ही ज्यादातर घूमते थे। अभी जो अवंतिका जो सीरियल बनाई है वो चूंकि इतिहास है, तो आप उज्जैन का इतिहास लिया है मैंने, जब कृष्ण आए उज्जैन सांदीपनी आश्रम में पढ़ने, तब से लेके विक्रमादित्य तक, तो उसमें स्त्री कैरेक्टर बहुत सारे। एक मैं अभी एक प्रोजेक्ट लिख रही हूँ, वो है वामा नाम रखा है उसका, स्त्री को कहते हैं वामा जी। तो मैंने वैदिक काल की जितनी विदुषी महिलाएं थी उन पे बना रही हूँ मैं, अपाला और ना भारती और मंडन मिश्र की जो पत्नी थी, तो उस तरह की जो कि वैदिक पीरियड में हमारी स्त्रियों कितनी ज्ञानी, लोपा मुद्रा और ये सब, तो उन पे बनाने का सोच रही हूँ मैं
0: जी। तो कहाँ तक पहुँचा आपका ये प्रोजेक्ट जिस पर आप बनाने की सोच रही हैं? और
1: लेखन तक है अभी, और होपफुली इस फिल्म के बाद जो मैं अक्टूबर में शूट कर रही हूँ पतंग मसाला, उसके बाद वो शुरू कर देंगे।
0: क्या लगता है आपको इस तरह का जब आप लेखन करती हैं तो आपको एक आत्मसम्मान, एक आत्मसुख, मतलब एक सुकून मिलता है?
1: देखिए, स्त्री होने के नाते, मतलब स्त्री की संवेदना जो है उसको केरने में मुझे लगता है कि मैं काफी करीब हो जाती हूँ स्त्री के, तो मुझे फिर उसको पढ़ना और गढ़ना उस कैरेक्टर को आसान हो जाता है, क्योंकि मैं भी एक स्त्री हूँ और स्त्री के सारे संघर्ष मैंने देखे हैं। मेरी माताजी, मेरी मौसी, मेरे जो महिला दोस्त हैं उनकी जीवन को मैंने देखा है, तो उसे उतारने में बहुत आसान लगता है मुझे उसकी संवेदनाएं। और कई पुरुषों लेखकों ने, जैसे प्रेमचंद हैं, वो पुरुष होके भी उन्होंने स्त्री का इतना सुंदर, रेणु, टॉल्स्टॉय ना, दोस्तोवस्की, गोरकी, इन्होंने बहुत खूबसूरती से स्त्री का, सबसे ज्यादा आपके शरदचंद, उन्होंने तो स्त्री का ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई स्त्री बैठ के लिख रही है।
0: जिस तरह से उन्होंने लिखा, लगता ही नहीं है कहीं कि एक पुरुष ये बात लिख रहा है। स्त्री की पीड़ा, स्त्री के संघर्ष को, स्त्री के जज्बातों को, स्त्री की फीलिंग्स को जिस गहराई में जाकर इन लेखकों ने लिखा, तो आप एक स्त्री होकर जब वो लिख रही है तो जाहिर है कि आप उस गहराई तक पहुंच पाती हैं जहां स्त्री को पहुंचना चाहिए।
1: जी, कोशिश करती हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकती कि उस गहराई में मैं पहुंच गई है मेरी लेखनी, लेकिन कोशिश करती हूँ, क्योंकि जितने संसार में स्त्रियां हैं सबकी अपनी अपनी कहानी है, सबकी अपनी अपनी संवेदनाएं हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, अलग अलग समस्याएं, ढेर सारी समस्याएं, तो उनको कहने में मैं इतनी तो कॉशियस रहती हूँ, सचेत रहती हूँ कि उसकी गरिमा को रखते हुए, स्त्री की गरिमा को रखते हुए। मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगी कि स्त्री के पक्ष में हूं मैं, लेकिन मैं पुरुष के विपक्ष में नहीं हूं, मैं उसके विरोध में नहीं हूं, क्योंकि संसार दोनों से चलता है, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि स्त्री अच्छी है तो पुरुष खराब है, ऐसा नहीं है। देखिए, पावर गेम है ये, पुरुष के हाथ में जब पुरुष सत्ता थी या है तो वो उसका दुरुपयोग भी कर देता था।

0: लेकिन वहीं हम देखते हैं कि बहुत सारे निर्देशक, मैं अपनी कला से संबंधित ही लोगों की बात चर्चा करूंगी, और लेखक इतने संवेदनशील हैं कि उन्होंने कभी अत्याचार नहीं किया स्त्री पे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: मेरी माता का मैंने जो सम्मान देखा है मेरे पिता की नजरों में, उन्होंने तुमने ही बोला माँ, जबकि उनसे बहुत छोटी थी, लेकिन वो कम्मो जी बोलते थे, वो
1: जी
0: कमल नाम था, कमल शबनम उनका तखल्लुस था, तो वो हमेशा कम्मो जी आप ये कर दीजिए आप जनाब। तो हमने तो वो लोग देखे हैं जो स्त्री को इतना सम्मान देते थे।
1: आज एक लंबी बातचीत आपसे हम कर रहे हैं, लेकिन अब एक गीत हो जाए आपकी पसंद का।
0: जी।

0: है, आपकी लेखिकाएं भी स्त्री विमर्श पर लगातार चर्चाएं करती हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो उससे एक अलग दिशा की ओर जा रही हैं। जब हम बात करते हैं स्त्री विमर्श पर, तो वही आपने कहा कि वो पुरुष विरोधी होकर जब लिखा जाता है तो स्त्री विमर्श फिर स्त्री विमर्श नहीं रह जाता।
1: देखिए, आप है ना, संसार में चलाने के लिए ईश्वर ने पुरुष और स्त्री दोनों को बनाया। आप ये कहें कि पुरुष खराब है इसलिए हम शादी नहीं करेंगे, हम अकेले ही रहेंगे, तो हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें दोनों की जरूरत है। जैसे वो बड़ा क्लीशे सा शब्द है ना कि भाई गाड़ी के दोनों पहिए हैं,
0: बिल्कुल,
1: आप उनके बिना नहीं चल सकते। और अब पुरुषों को भी थोड़ा सा अपने आप को बदलने की बहुत जरूरत है कि अब स्त्री को नए परिपेक्ष में देखें, वो एक नए ढंग से देखें उसके सम्मान को, उसके काम के सम्मान को। मुझे जो स्वतंत्रता है ना, वो शब्द स्वच्छंदता नहीं बनना चाहिए
0: जी।
1: स्त्री का या पुरुष की स्वतंत्रता जो है वो अभी थोड़ा सा, मैं इस पे बोलना चाहूंगी कि स्त्री अभी जो स्वतंत्रता के नाम पे उच्छृंखलता जो हो रही है ना, वो स्त्री को और गुलाम कर रही है।
0: जी जी, बिल्कुल सही कहा। और स्वच्छंदता शब्द तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों पर ये सही नहीं बैठता है,
1: दोनों के लिए गलत है। तो स्वतंत्रता के नाम पे आप कहें कि मैं ये खा लूं और मैं वो पी लूं, नशा कर लूं, उसमें स्वतंत्रता है, तो हम तो और गुलाम हो रहे हैं। ये स्वतंत्रता नहीं। स्त्री की स्वतंत्रता आर्थिक होनी चाहिए, वैचारिक होनी चाहिए
0: जी,
1: है ना। ये दो स्वतंत्रता, वो अपना प्रोफेशन खुद चुने, वो आर्थिक रूप से सक्षम हो, और अपना कोई भी चीज चुनने के लिए वो फ्री हो, ये होना
0: चाहिए। उसे स्वतंत्रता
1: जी
0: मिलनी चाहिए
1: जी।
0: अपने निर्णयों को लेना सीखेगी, जिंदगी को किस ओर ले जाना है सही तरीके से। तो आपने इतनी फिल्में देखी हैं, आप फिल्मों की मुरीद हैं, सिनेमा लिखती हैं, सिनेमा को डायरेक्ट करती हैं। आज जो वर्तमान सिनेमा की हम बात कर रहे हैं, महिलाओं को जिस रूप में दर्शाया जा रहा है, आप उसे कहां तक सहमत है? जो स्थिति फिल्मों में स्त्री की दिखाई जा रही है, स्त्री खुद क्या इसकी जिम्मेदार है, या वहां कहीं न कहीं मजबूरी या प्रोफेशन आ रही है?
1: देखिए, समाज में मुझे क्या लगता है कि जब से शराब स्टेटस सिंबल बन गई है, तब से हास होने लगा है
0: जी।
1: अब हर फिल्म में आप दिखा रहे हैं कि स्त्री मद्यपान कर रही है या ये कर रही है वो कर रही है, तो ये कौन सी चीज बोलना चाह रहे हैं आपके? मतलब ये सामान्य होनी चाहिए ये चीज, इसके तो मैं खिलाफ हूं। आप मुझे शायद पुराने समय का, पुराने विचारों का आप वो कर दें, लेकिन कोई भी चीज, औषधि भी अगर आपको मानसिक रूप से गुलाम बना रही है तो भी गलत है, है ना। तो किसी भी तरह का नशा, किसी भी तरह की ये चीजें, उसको ग्लोरीफाई करके, उसको बहुत ज्यादा आप हाईलाइट करके और अपनी हीरोइनों से आप, क्योंकि आम आदमी, एक किस्सा सुनाती हूं मैं। हम लोग दिल्ली गए थे शादी के बाद, मैं और पुरी साहब। तो पुरी साहब तो आर्ट फिल्में और इस तरह की फिल्में थी, हम लोगों के पास कोई इतना पैसा तो था नहीं। तो मेरे एक वहां पर मित्र हैं, उन्होंने कहा कि हम एक एड पूरी साहब से बनवा देते तो तुम लोगों का आना जाना फ्री हो जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा। एड में बहुत पैसा मिलता है, जो पूरी एक फिल्म में जो एक साल तक बनती है उतना एक दिन की शूटिंग में एड में मिल जाता है। तो मैंने कहा हाँ हाँ, बड़ी अच्छी बात है ये, तो पूरी साहब करेंगे? पूरी साहब बोले हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। उनका काय का एड है? बोले सिगरेट का। तो पूरी साहब बोले, उससे पहले ही मैंने कहा नहीं, पूरी साहब सिगरेट का ऐड नहीं करेंगे। पूरी साहब ने मुझसे पूछा कि क्यों नहीं कर

0: मेरे कहने से पीलेंगे क्या लोग? मैंने कहा पुरी साहब, अगर आपके कहने से नहीं पिएंगे, ये आप तर्क दे रहे हैं, तो ये आपको इतना पैसा क्यों दे रहे हैं? आप जिस भी फील्ड में हैं, आप कला फील्ड में हैं, आपको लोग देखते हैं और इनको भी पता है कि आप कहेंगे तो 1000 लोग देखेंगे, 2 लोग तो पिएंगे, है ना? अब हमारे जो बड़े बड़े कलाकार हैं, वो अगर इस तरह के ऐड करते हैं और कहते हैं कि हम कोई समाज सुधारक नहीं हैं, समाज सुधारक आप हो या ना हो, आप सेलिब्रिटी हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो बच्चा जो है 15 साल का से लेके 5 साल का बच्चा भी आपके उस पे डांस करता है और आपको सुनता है, आपको हीरो मानता है वो या हीरोइन मानता है, आप जो करेंगे वो उसका अनुसरण करेंगे। तो आप अगर इस तरह के ऐड करेंगे, विज्ञापन करेंगे, आपको तो करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, लेकिन करोड़ों लोगों की जिंदगियां जो है आपने स्टेक पे लगा दी है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो पुरी साहब ने नहीं किया फिर वो ऐड। तो हम उस तरह के लोग हैं जो सामाजिक रूप से अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि अगर हम कुछ कह रहे हैं और हमारी बात 10 लोग भी सुन रहे हैं तो हमें बहुत सोच समझ के करनी और कहनी चाहिए।
1: जी, आपकी कथनी और करनी में अगर अंतर है तो फिर आपकी सामाजिक जिम्मेदारी कहीं नहीं बनती।
0: जी
1: जी, बहुत बड़ी बात आपने कही कि एक कलाकार क्या कह रहा है, क्या विज्ञापन दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है, उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो समाज में क्या फैला रहा है। सीमा जी, बातचीत का ये सिलसिला तो चलता रहेगा और आपकी पसंद का एक गीत सुन लिया जाए।
0: जी, मेरी पसंद का गीत है
2: जानवालों जरा।

0: सीमा जी, आपसे अगर मैं ये जानना चाहूं कि आपको कौन से कलाकार पसंद हैं इस इंडस्ट्री में, जो आपने बतौर एक्टर या एक गहराई के तौर पर पसंद किए, तो कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जिन्हें आप पसंद करती हैं?
1: दिलीप साहब, मोतीलाल जी, बलराज साहनी, फिर उसके बाद जो बचपन में हमारे हीरो हुआ करते थे वो राजेश खन्ना
0: जी,
1: और देव साहब, धर्म जी, इस तरह के जो कलाकार हैं उन्होंने अलग अलग तरह का सिनेमा किया। अब आप देखिए, धर्म जी बिल्कुल घोर कमर्शियल फिल्मों में थे, लेकिन उन्होंने अनुपमा की, सत्यकाम उन्होंने प्रोड्यूस की, है ना, और कितनी फिल्में हैं जो उन्होंने
0: बहुत सारी जी, जी, जी। ठीक उसी प्रकार जैसे जितेंद्र को जब हम देखते हैं तो गुलजार साहब
1: जंपिंग जैक के नाम से जाने जाते थे,
0: लेकिन गुलजार साहब की फिल्मों में उन्हें एक अलग रूप देखने को मिला। और अगर नायिकाओं की बात करें तो कौन सी नायिकाएं आपको?
1: नायिकाओं में मुझे वो बिचारी अपने सौंदर्य की वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे कोई कभी जिक्र नहीं करता है, जबकि वो कलाकार बहुत अच्छी थी अगर आप उनकी सिनेमा उठाएं, लेकिन उनके साथ एक दुर्भाग्य रहा कि वो बहुत हसीन थी।
0: मधुबाला
1: उनकी सुंदरता पर चर्चा होती है, लेकिन आप जरा मुगले आजम उठा के देखें, आप मिस्टर एंड मिसेस 55 उठा के देखें, आपको वो रेंज मिलेगी, कहाँ कॉमेडी कहाँ सीरियस। वो कलाकार बहुत अच्छी थी, तो मधुबाला मुझे बहुत पसंद थी। नरगिस बहुत अच्छी परफॉर्मर थी, मीना जी बहुत अच्छी परफॉर्मर थी, वो उनका एक स्टाइल था, और शबाना बहुत अच्छी परफॉर्मर है अभी के उसमें, करीना अच्छी परफॉर्मर है। बस ये है कि ये लोग स्क्रिप्ट अच्छी चुन लें तो ज्यादा अच्छा हो।
0: शशि कपूर के लिए भी हम यही पढ़ते थे कि वो इतने हैंडसम थे कि उनकी एक्टिंग पर तो बात होती थी, लेकिन उनकी खूबसूरती के दीवाने ज्यादा थे।
1: जी जी,
0: तो कई बार आपकी अति सुंदरता भी जो है आपके लिए, आपकी कला के लिए,
1: जैसे अभी ऐश्वर्या राय कितनी खूबसूरत है, लेकिन वो परफॉर्मर बहुत अच्छी है। परफॉर्मर अच्छी है, मैंने उनकी कई ऐसी फिल्में देखी है, परफॉर्मर बहुत अच्छी है वो, लेकिन अब जिक्र ही नहीं होता है। आप उनकी सुंदरता में बात करते हैं कि उसमें खूबसूरत लगी ये करी वो सब, जबकि देखिये ना, मीना जी भी कम खूबसूरत थी क्या, उनकी अपनी अलग तरह की खूबसूरती थी, नरगिस जी की अपनी खूबसूरती थी,
0: बहुत सुंदर
1: जी,
0: आंखें बोलती थी उनकी
1: जी,
0: उनके होंठ बोलते थे जिस तरह से उनका।
1: परफॉर्मर मुमताज भी अच्छी थी। कुछ कलाकार डायरेक्टर के एक्टर होते हैं, आपने देखा होगा कुछ एक्टर्स जो हैं कुछ फिल्मों में बहुत खराब काम करते हैं और कुछ फिल्मों में ब्रिलियंट होते हैं। वो निर्देशक के कलाकार होते हैं। निर्देशक अगर आप देखिए ना, आप शक्ति सामंत की फिल्म कर रहे हैं, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म कर रहे हैं, फिर आप किसी और की फिल्म कर रहे हैं, तो उसमें परफॉर्मेंस में बहुत अंतर आ जाता है।
0: जी बिल्कुल, कि आपको निर्देशक ने किस रूप में पर्दे पर उतारा,
1: निर्देशक
0: है?
1: कितना स्ट्रांग है अपने काम में।
0: बतौर निर्देशक अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको कौन सा ऐसा कलाकार पसंद है जिसने आपके निर्देशन में बहुत ही अच्छा काम किया आपकी नजर में?

0: मेरे निर्देशन में तो मेरे परिवार के ही दो लोग तो काम कर ही रहे, अन्नू भाई और रंजीत भाई ने भी मेरी सीरियल में काम किया था एक्टिंग, जबकि वो एक्टर नहीं है। तो पुरी साहब आसान थे उनके साथ काम करना, अन्नू भाई के साथ काम करना थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि कई बार वो बड़े भाई भी बन जाते थे। बाकी तो मैंने अभी तक जितने लोगों के साथ काम किया है, चाहे सुरेश ओबेरॉय हो चाहे दिव्या हो, सब का बहुत अच्छा सहयोग मिला।
1: दिव्या भी एक बहुत अच्छी कलाकार,
0: बहुत अच्छी,
1: बहुत ही संचिता कलाकार है
0: जी। हाँ। और मेहनती बहुत है, अपने काम पे फोकस है उसका और मेहनत करती है, चीजों को बार बार पूछना सवालों को कि ये कैसे है, ये कैरेक्टर क्या है, ये क्या है, क्योंकि हर को गांव का नहीं मालूम होता ना, गांव के क्या है वो आप निर्देशक या राइटर से ही पूछते हैं
1: जी,
0: गांव में तो नहीं रहे हुए होते हैं। तो वो उस तरह से ना उन लोगों का अपना जो होमवर्क है वो करने में पूरा टाइम बार बार फोन करके पूछना कि ये कर लूं क्या, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब एक कैरेक्टर गांव का होता है तो उनके जो मैनरिज्म है ना, उनके हाव भाव, जैसे गांव का कोई कंधे उचका के ना नहीं कहेगा, ये बहुत ही शहरी जेस्चर है। तो वो ख्याल रखना वो निर्देशक का भी जरूरी है, कलाकार अगर उसमें गच्चा खा जाए थोड़ा कमजोर हो जाए तो निर्देशक का वो बनता है। लेकिन ये ऐसे कलाकार हैं जो होमवर्क जिसे बोलते हैं ना, कि फिर गांव का जो कैरेक्टर है वो कैसे उसके हाव भाव होंगे, कैसे हाथ उठा के बात करेगा, कैसे क्या करेगा, ये लोग होमवर्क बहुत करते हैं, इसलिए ये इतने अच्छे
1: कलाकार हैं, अच्छे और परिपक्व कलाकार हैं। जहां किसी भी फिल्म में इन कलाकारों ने कभी आपको बोर नहीं किया, जैसे हम एक सामान्य शब्दों में कहें, जिसे कहते हैं कि निरुत्साह नहीं किया, हमें कभी निराशा नहीं हुई इन्हें देखकर कि ये क्या एक्टिंग कर,
0: कमजोर नहीं पड़े ये अपने अपने किरदार में,
1: क्योंकि अपने काम को इतना मजबूती के साथ इन्होंने किया है। चलिए आपकी पसंद का गीत सुनते हैं और फिर एक सवाल आपसे पूछते हैं।
0: मदन मोहन जी का संगीत में एक गाना मुझे बहुत पसंद था, दुल्हन एक रात की, में लता जी ने गाया, सपनों में अगर मेरे तुम आओ तो मैं सो जाऊं,
1: बहुत सुंदर गाना है। चलिए तो सुनते हैं यही गीत।

0: बहुत सुंदर गीत सीमा जी आपने हमें सुनवाया और इससे पता चलता है कि क्लासिक जो है संगीत आपको पसंद है और जो रूह को सुकून दे रहा है।
1: जी।
0: आपकी 2025 में एक आत्मकथा आई किताब के रूप में, उसके बारे में हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। मैं आप ही से सुनना चाहती हूँ उस किताब के बारे में, उस आत्मकथा के बारे में।
1: हाँ।
0: बहुत ही सुंदर उसका शीर्षक है,
1: यूं गुजरी है अब तलक। जी, तो किताब का ख्याल मुझे ऐसे आया था कई साल पहले। क्या हुआ था कि पुरी साहब से बिछड़ने के बाद आई लॉस्ट माई चाइल्ड।
0: जी।
1: तो उसमें मेरे भाई, मेरी माता जी, वो सब इतने दुखी थे कि मेरे दुखी होने का मुझे समय नहीं मिला, ना अवसर मिल रहा था, क्योंकि सबको रोता देख के अगर मैं भी रो रही होती तो उनको संभालता कौन।
0: जी।
1: तो इसलिए मैंने एक फसाड, एक आवरण सा ओढ़ रखा था कि कोई बात नहीं, ये जीवन है, ये भी समय निकल जाएगा, और ऐसे करके। लेकिन मेरे अंदर ना एक दावानल चलता रहता था। आपको एक कोना चाहिए जहां आप रो सकें, जहां आप कथार्सिस, जिसे हम लोग बोलते हैं, एक रेचन हो जाए, अंदर से जो गुबार है वो निकल जाए। तो मुझे, मैं सबके बीच में घिरी हुई थी, सारे मेरे दुख से दुखी थे, उनको मैं अपना दुख दिखा के दुखी नहीं होना चाहती थी। तो मैंने कहा कि कलम ही एक ऐसा मेरा साथी है जो मैं अकेले में जिसको लिख सकती हूं, और अपने उद्गार पेपर पे ना उसकी स्याही जो है मेरे आंसुओं की तरह उसे निकालूं।
0: जी।
1: तो मैंने अपने बच्चे को एक खत लिखा जो चला गया कि भाई तुम, मेरी कोख इतनी खराब थी कि तुम नहीं रह सके उसमें। तो फिर उससे मैंने कई सवाल पूछे कि तुम क्यों नहीं आना चाहे, मैंने तो तुम्हारे लिए बड़े सपने देखे थे, मैंने तो तुम्हारे लिए सारा कुछ वो करके रखा था कि दुनिया में ऐसे तुम्हें वो करूंगी, ऐसे तुम्हारी तरबियत पालन पोषण करूंगी, कैसे भी अभाव होंगे, कैसे भी कुछ होगा, संघर्ष करूंगी, लेकिन तुम्हें मैं सारे वो सपने जो तुम देखोगे उनको पूरा करने की कोशिश करूंगी। तो वो सब मैंने खत लिखा उसको। फिर भी सवाल जब वो नहीं हुए तो मैंने बच्चे की तरफ से माँ को एक खत लिखा कि मैं क्यों नहीं आया।
0: जी।
1: तो ये जब लिखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये आत्मा को बड़ी, मेरे कथार्सिस हो गया, एक दर्द जो है निकल गया। तो मुझे ऐसा लगा कि इतना जो जिंदगी में झंझावात झेले हैं, जिंदगी में जो अनुभव अच्छे बुरे खट्टे मीठे, थिएटर कंपनी के बाबूजी की, जो लोगों ने जाना नहीं है, लोग ये जानते पारसी थिएटर हुआ करता था, नाटक मंडलियां हुआ करती थी, लेकिन उनकी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, उनकी स्त्रियां क्या थी, वहां पे स्त्रियों की क्या दशा थी, जो स्टेज पे समाज से उपेक्षित थी, स्टेज पे कमाती थी, लेकिन फिर भी वो पुरुष के सत्ता के अधीन थी वो। तो वो सब मैंने उतारने के लिए मन बनाया, और ऐसे मैंने कहा ये सिर्फ सारी चीजें कहानियों में नहीं आ सकती, क्योंकि इतनी सारी कहानियां कहां लिखूंगी मैं, अपनी आत्मकथा ही लिख दूं, उसमें तो सारे वो कैरेक्टर हैं, वही बिब्बी हैं, वही बुग्गी हैं, और वही चंदा हैं, और वही शरीफ भाई हैं, और वो जो नाटक कंपनी के चरित्र हैं सारे हैं, वो उनको उतारा जो थे हमारी नाटक कंपनी में, क्या मेरी माँ थी उनका संघर्ष, क्या मेरे फादर थे उनका संघर्ष, हमारा संघर्ष के इतने अमीर माता पिता के संतान होके आज देखिए जब हमारा थिएटर कंपनी जो हमें इतना पैसा और खाना देती थी, उसके बाद जब सिनेमा आया तो थिएटर कंपनियां बंद

0: हो गई, भुखमरी आ गई
1: जी,
0: है ना, सारी थिएटर कंपनियां बंद हो गई। एक जमाने में जिस फिल्मों ने, सिनेमा ने हमारी रोजी रोटी छीनी, आज वो सिनेमा हमें रोजी रोटी दे रहा है। तो ये पूरा जो ग्राफ है जिंदगी का, ये मैंने उसमें लिया और लोगों को शैली भी बहुत पसंद आई, कहने का स्टाइल पसंद आया।
1: काफी चर्चित रही ये किताब और 2025 की सबसे चर्चित किताबों में से एक किताब रही ये, यूं गुजरी अब तलक। और उसमें मुझे लगता है कि हम
0: साहित्य तक ने तो उसको 2025 की टॉप 10 में बुक में
1: शामिल किया। और काफी लोगों ने आपको उस वक्त जाना पहचाना, आपके दर्द को समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। तो सीमा जी, आगे भी आप यूं लिखती रहे, ये शुभकामनाएं हम आपको देते ही है। चलिए एक और गाना हो जाए आपकी पसंद का।
0: जी।

0: आगे की नए प्रोजेक्ट्स आपके क्या क्या हैं, बस ये जानना चाहते हैं।
1: जी वो फिल्म बना रही हूँ, दो सीरियल का है वो कर रही हूँ, एक दो महिलाओं पे डॉक्यूमेंट्रीज हैं। जी एक जगह है जहाँ पर गांव से महिलाएं जो हैं वो नदी के पार करके जाती है, कुछ भी नमक भी खरीदना हो तो उनको नदी पार करनी पड़ती है, और नदी कैसे पार करनी पड़ती है, टायर ट्यूब होते हैं ना उसमें बैठ के और अपनी चप्पलों को चप्पू बना के वो नदी पार करती है।
0: अरे
1: तो वो मैं बना रही हूँ, अभी पानी थोड़ा सा नदी में कम है तो इस वजह से थोड़ा अब मैं सर्दियों में जाके, तो ये सारी चीजें मैं चाहती हूँ कि मैं जितना भी काम करूं, मेरी जो महिलाएं हैं, मैं चूंकि स्त्री हूं तो मैं स्त्रियों पे ही काम करना चाहती हूँ।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, तो इस लाइन में आने वाली स्त्रियों को आप क्या कहना चाहती हैं, युवा स्त्रियों को जो इस लाइन में आना चाहती हैं बतौर राइटर, बतौर निर्देशक, बतौर एक्टर?
1: देखिए कोई भी विधा, जैसे अभी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, एक कोई पत्रकार हैं वो एक्टिंग में चले गए तो लोग उनको डिफेंड करने लगे कि भाई लोग सीखते सीखते सीखेंगे। मैं इसके खिलाफ हूँ। एक तो जो कलाकार आता है, जो जैसे अभी एनएसडी से ट्रेंड एक एक्टर आ रहा है
0: जी,
1: ठीक है, आपने उसकी रोजी रोटी छीन रहे, पहली बात, जिसने इसी को पढ़ा है जो यही कर रहा है, और फिर जब करोड़ों रुपए एक फिल्म में लगते हैं तो वहां पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई रोटी बनाना है कि धीरे धीरे सीखेंगे।
0: हाँ, नहीं, तो सीखने की प्रक्रिया भी चल रही है।
1: हाँ, ये प्रक्रिया नहीं है, करोड़ों रुपए आप पे लगते हैं तो प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, आपको ट्रेंड होना पड़ेगा। तो मैं युवाओं से ये कहना चाहूंगी कि देखिए दो तरह से आप सिनेमा की तरफ आकर्षित होते, ग्लैमर और पैसा। तो जब ये दो चीजों से आकर्षित होकर आप आते हैं तो सक्सेस मिलने के चांसेस जो हैं आपको 5% होंगे। लेकिन आप कलाकार हैं, आप पढ़ते हैं, आपने सिनेमा पढ़ा होता है, थिएटर पढ़ा होता है, आपने लिटरेचर पढ़ा होता है, म्यूजिक पढ़ा होता है, ये सारी चीजें जब आपने की होती है, थिएटर किया होता है और टेक्निक जानते हैं, मतलब ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। जैसे एक डॉक्टर बिना एमबीबीएस किए डॉक्टर, हम उससे इलाज नहीं करवाएंगे, एक इंजीनियर से बिल्डिंग नहीं बनवाएंगे जब तक कि वो नहीं है, इसी तरह कलाकार को, कला क्षेत्र को आप ऐसे मत सोचिए कि कोई भी आके कर ले, उसके लिए आपको ट्रेंड होना बहुत जरूरी है, पढ़ाई पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप कुछ बनेंगे।
0: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी आपने एक संदेश युवा आने वाली लड़कियों को खासतौर से दिया है जो केवल शारीरिक सौंदर्य के बल पर आना चाहती हैं और दूसरी चीजों को मद्देनजर नहीं रखते हुए काम करना चाहती हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा संदेश है कि किसी भी लाइन में जाने से पहले आपको वहां के लिए पढ़ना और गुनना बहुत जरूरी है खुद को। तो बॉम्बे टॉकीज में आज सीमा जी आपने विविध भारती के लिए अपना अमूल्य वक्त निकाला है, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: नहीं, विविध भारती तो जिंदगी में जब हम बच्चे थे तब से जुड़ा हुआ है हमसे, और जहां से जाएंगे तो विविध भारती सुनते हुए ही जाएंगे, कोई ना कोई गाना चलता ही रहेगा।
0: जी तो चलिए एक और गाना जान लेते हैं इस कार्यक्रम का।
1: जी एक गाना मजरू साहब का है, मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से, एलपी का म्यूजिक है, ना जा अब कहीं ना जा
0: दिल के।

0: बॉम्बे टॉकीज में आज दोस्तों हमारे साथ थी जानी मानी लेखिका, निर्माता और फिल्म निर्देशक सीमा कपूर। और अब बॉम्बे टॉकीज में आज इतना ही। मंदाकिनी जोशी चाहती हैं इजाजत, नमस्कार।
1: ये था जानी मानी लेखिका, निर्देशिका और निर्माता सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहायक किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुष्का।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजे हैं पेश है कार्यक्रम विवरण।

आइए आपको जानकारी दे दें, हमारी आज की सभा में शेष रहे और कल की पहली सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा की।

आज की सभा में शेष रहे कार्यक्रम। आकाशवाणी के मुंबई केन्द्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे आज शाम 5:30 पर और दोबारा रात 9 बजे से। आकाशवाणी के जयपुर केन्द्र से अनुप्रसारित कार्यक्रमों का समय रहेगा शाम 7:30 से। हमारे केंद्र से राजस्थानी लोक संगीत आपको सुनवाएंगे अब से कुछ ही पलों में यानी शाम 5:05 पर, जिसके अंतर्गत आज आप सुनिएगा हुसैन अली सैयद की आवाज में गाए चुनिंदा राजस्थानी गीत।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी प्रस्तुत करेंगे शाम 7 बजे, जिसके अंतर्गत होंगी कामकाज की बातें, बातचीत, लोक भजन, बाजार भाव और मौसम की जानकारी। और हमारे केंद्र से फिल्म संगीत का मजा आप ले पाएंगे रात 10 बजे से।

अब एक नजर हमारी कल की पहली सभा के कार्यक्रमों पर। हमारी प्रातःकालीन सभा की शुरुआत होगी रोजाना की तरह सुबह 5:53 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी, ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे सुबह 9:10 पर। आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर। सुबह 9:30 पर और एक बार फिर से दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित चिंतन सुनिएगा सुबह 6:05 पर। यहीं से 6:10 पर होगी वंदना।

हमारे केंद्र से रामचरितमानस गान का अंग प्रसारित किया जाएगा सुबह 6:30 पर। कार्यक्रम के तीनी बात सुनिएगा 6:45 पर। आदिवासी लोक संगीत का आनंद लीजिएगा 6:50 पर और वातायन का समय रहेगा सुबह 7:20 पर।

इस फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ दिल से लेकर हाजिर होंगे सुबह 8:15 पर। राजस्थानी लोक संगीत प्रसारित करेंगे 8:45 पर। सुगम संगीत आपके लिए पेश करेंगे सुबह 11 बजे और हमारे केंद्र से फिल्म संगीत का मजा आप ले पाएंगे सुबह 11:30 पर।

अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:05 हुए हैं। पेश है राजस्थानी लोक संगीत।

आइए आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनवाते हैं हुसैन अली सैयद की आवाज में गाए चुनिंदा लोकगीत। सुनते हैं पहली पेशकश।

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: राजस्थानी गीत आप सुन रहे हैं हुसैन अली सैयद की आवाज में। आइए सुनते हैं अगली पेशकश।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: राजस्थानी लोक संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से और आज आपको सुनवा रहे हैं हुसैन अली सैयद की आवाज में गाए चुनिंदा लोकगीत। सुनते हैं आखिरी पेशकश।

इस लोकगीत के साथ ही राजस्थानी लोक संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 होने को है। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

डराने नए पुराने कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन। कार्यक्रम की शुरुआत इस गीत के साथ, फिल्म का नाम प्यार तूने क्या किया, आवाजी आशा भोंसले, सुखविंदर सिंह, सोनू निगम और साथियों की। गीतकार हैं नितिन रेखवार और संगीतकार संदीप चौटा।

कार्यक्रम का अगला गीत श्रेया घोषाल और निखिल पॉल जॉर्ज की आवाजों में। फिल्म का नाम है बर्फी। इस गीत को स्वानंद किरकिरे ने लिखा है और धुन बनाई है प्रीतम ने।

0: स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट दे रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम था आराधना। इस गीत को आनंद बख्शी ने लिखा और धुन बनाई थी सचिन देव बर्मन ने।

0: गुलजार साहब की रचना अभी आपने आरती मुखर्जी की आवाज में सुनी। फिल्म का नाम था मासूम और गीतकार थे गुलजार साहब। संगीत दिया था राहुल देव बर्मन ने।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है जी। जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

भूपेंद्र की आवाज में अभी आपने फिल्म आहिस्ता आहिस्ता की गजल सुनी। कलाम निदा फाजली का था और संगीत खयाम साहब का।

0: दोस्तों, तराने नए पुराने कार्यक्रम का शेष भाग हम आपको सुनवाएंगे हिंदी में समाचारों के बाद संध्या 6:05 पर। फिलहाल संध्या के 6 बजने वाले हैं, आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में निजी क्षेत्र के पहले कक्षीय प्रक्षेपण यान विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि यह निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
2: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूप को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: लोकसभा अध्यक्ष

0: ओम बिरला, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस उपलब्धि पर स्काईरूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। यह हादसा रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुआ। सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई बल और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के साथ बचाव अभियान में जुट गई। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संसद का मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के जुमागाछा स्थित सीमा सुरक्षा बल शिविर का दौरा किया और बीएसएफ कर्मियों से बातचीत की। श्री शाह ने पौधा भी लगाया और प्रहरी सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने, जन्म और मृत्यु पंजीकरण तथा कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा पर भी चर्चा हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि यह रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार संजीव श्रीवास्तव को दिया जाएगा। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में शिवपाल सिंह कांग को परात 41 डिग्री चया मगावर के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार मिलेगा। बेस्ट डायरेक्शन का पुरस्कार आनंद एल रॉय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए दिया जाएगा। और खेलों में पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार देर रात 2:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। तराने नए पुराने का शेष भाग आप सुनिए। यावाजी आशा भोसले और मोहम्मद रफी की फिल्म का नाम यादों की बारात। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने।

0: इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरी गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत निर्देशन में SH बिहारी का लिखा हुआ आपके लिए चुना है। युगल स्वर लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की फिल्म का नाम प्यार झुकता नहीं।

0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम। गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
1: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: 25 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश

0: बहती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
4: और आइए अब सुनते हैं आशा भोसले के साथ किशोर कुमार को। फिल्म का नाम है लावारिस। गीतकार अनजान है। संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं उत्तम जगदीश के संगीत निर्देशन में वर्मा मलिक की रचना, युगल स्वर लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की, फिल्म का नाम है वारिस।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 होने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। यहीं से होगी जिले की चिट्ठी और 6:45 पर आपको सुनवाएंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साइबर अपराध की रोकथाम के लिए हेल्पलाइन को प्रभावी और मजबूत बनाने को कहा। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काईरूट एरोस्पेस की सराहना की। राजस्थान और मध्य प्रदेश के वन क्षेत्रों को आपस में जोड़ने की महत्वाकांक्षी चीता कॉरिडोर परियोजना पर दोनों राज्यों की सहमति। और प्रदेश में मॉनसून सुस्त, अब तक सामान्य से कम बरसात हुई। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में पुलिस हेडक्वार्टर में साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट को लेकर बैठक की। मुख्यमंत्री ने साइबर ठगी और संगठित अपराधों के पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने पर जोर दिया। उन्होंने अपराधियों के वित्तीय लेनदेन और सोशल नेटवर्क को तोड़ने की बात कही। बैठक के दौरान साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर R4C की प्रगति की समीक्षा की गई। गौरतलब है कि ये केंद्र राज्य में ऑनलाइन ठगी और डिजिटल अरेस्ट को रोकने के लिए बनाया गया है। इसके तहत 1930 हेल्पलाइन के विस्तार और 24/7 संचालन के लिए काम किया जाएगा। साथ ही राज्य के सभी जिलों में साइबर पुलिस थाने संचालित किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में राज्य में प्रसूताओं की मृत्यु और खराब स्वास्थ्य के मामले पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। मुख्य सचिव ने आज जयपुर के स्वास्थ्य भवन से ये वर्चुअल बैठक की। उन्होंने प्रसूताओं के स्वास्थ्य की सघन निगरानी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान की जानकारी ली। साथ ही गर्भावस्था के अधिक जोखिम वाले मामलों की पहचान करने तथा उनका अलग रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने सभी अस्पतालों में लेबर रूम में पर्याप्त जीवन रक्षक दवाइयां और अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।

0: बैठक में सभी जिला अस्पतालों के अधीक्षक और स्वास्थ्य अधिकारी तथा मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य जुड़े। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से सेफ्टी टैंक की सफाई करवाना जोखिम भरा और गंभीर लापरवाही का मामला है। श्री बेढ़म ने डीग जिले के नीलखेड़ा स्थित मदरसे में सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान हुए हादसे को अत्यंत दुखद बताया है। आज भरतपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में गृह राज्य मंत्री ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया। हालांकि सेफ्टी टैंक में जहरीली गैस से एक छात्रा की मौत हो गई, वहीं एक घायल छात्रा का अलवर के अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है।
1: तो बच्चे हमारे यहाँ अध्ययन के लिए आते हैं और अध्ययन के लिए आने वाले बच्चों को इस तरह के काम कराए जाना, मैं समझ सकता हूँ कि व्यवस्था पर प्रशासन लगाता है। पुलिस ने रात को FIR दर्ज कर ली है, जो भी कानून सम्मत कार्रवाइयाँ होंगी वो निश्चित रूप से करेंगे। हमारी प्राथमिकता है कि बच्चे सुरक्षित रहें, बच्चे शिक्षण ग्रहण करें, उनकी उचित व्यवस्थाएं हों। तो उन सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पहली प्राथमिकता बच्चों की जान बचाना, उनको सुरक्षित रखना, अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन इस तरह का कृत्य कोई करता है तो वो शर्मनाक है और कानून में जो बनेगा निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।
0: सीकर जिले के कटराथल स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में आज शेखावाटी ज्ञान सभा आयोजित की गई। ज्ञान सभा का उद्देश्य शिक्षा जगत, युवाओं और समाज के बीच राष्ट्र निर्माण से जुड़े विचारों पर संवाद स्थापित करना और इसे आगे बढ़ाना है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आर्थिक प्रगति के साथ ही शिक्षा और संस्कारों पर जोर दिया।
2: आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने को हम एक औपचारिक समारोह तक सीमित नहीं करके विश्व भर में विकसित भारत के रूप में अपने आप को स्थापित करने मनाने की दृष्टि पर कार्य कर रहा है। अपना उद्देश्य की 2027 में हमें निश्चित रूप से शिक्षा के और विकसित भारत के दृष्टि से देश के सबसे आगे जाएंगे।
0: विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस अवसर पर कहा कि सभी को भारतीय मूल्यों पर आधारित विकास की दिशा में बढ़ना चाहिए। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने पेंशन संबंधी विवादों का समाधान प्रशासनिक तौर पर किए जाने की बात कही है। वे आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमेबाजी पर राष्ट्रीय कार्यशाला में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे पेंशनधारियों को अदालत जाने के लिए मजबूत नहीं होना पड़ेगा। डॉक्टर सिंह ने कहा कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कई तरह के सुधार किए हैं। प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन प्रणाली के जरिए पेंशन सुविधाएं शुरू की गई हैं। इस अवसर पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने शून्य पेंशन मुकदमेबाजी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समन्वित प्रयासों की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक चलने वाले मुकदमेबाजी के बजाय बेहतर नीति, प्रौद्योगिकी और संस्थागत तंत्रों के जरिए विवादों का समाधान किया जाना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर देश भर में उत्साह है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने इस महत्वपूर्ण सफलता पर स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विक्रम 1 टीम की इस ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि ये कामयाबी देश के युवाओं को नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
3: सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई
4: सर। We are very very privileged to have you.
3: स्काईरूट ने दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। कब से मेरा ध्यान जो गया, आपकी पूरी टीम 25-30 साल की दिखती है। आपका जो कुछ भी मिशन है, मैं इसको एक प्रकार से वंदे मातरम मिशन ही देखता हूँ कि भारत माँ की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना, नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी

0: को लाभ देना और नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी में आने के लिए प्रेरित करना।
1: केंद्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह सफलता अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है, साथ ही वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को देश के अंतरिक्ष इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बताया है। उन्होंने इसे भारतीय वैज्ञानिकों की तकनीकी आत्मनिर्भरता और नवाचार का प्रतीक बताते हुए कहा कि इस पर हर देशवासी को गर्व है। ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। ये भारत का निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद के एरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट ने बनाया है। इस ऐतिहासिक मिशन को आगमन नाम दिया गया है, जो अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र के प्रवेश के नए युग का प्रतीक है। इस सफल प्रक्षेपण के साथ ही भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के वन क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के महत्वाकांक्षी चीता कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर दोनों राज्यों के बीच सैद्धांतिक सहमति बन गई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के विशेषज्ञों के दल ने कोटा और रावत भाटा क्षेत्रों के जंगलों का निरीक्षण करने के बाद पूरे क्षेत्र को चीतों के स्थायी पुनर्वास के लिए अनुकूल माना है। ये कॉरिडोर राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य के बीच प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश के कुमाऊं नेशनल पार्क में चीतों की बढ़ती तादाद को देखते हुए इस विशेष कॉरिडोर की जरूरत महसूस की जा रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देश और दोनों राज्यों की उच्च स्तरीय बैठकों के बाद इस परियोजना की दिशा में प्रयास तेज हो गए हैं। इस कॉरिडोर के विकसित होने से रावत भाटा और आसपास के करीब 400 किलोमीटर के क्षेत्र को चीतों के प्राकृतिक आवास के रूप में काम में लिया जा सकेगा। कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज जयपुर के छात्रों की गूंज अभियान के तहत छात्र संविधान संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुए कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ भी शामिल हुए। इस दौरान श्री पायलट ने बढ़ती बेरोजगारी और पेपर लीक के मुद्दों को लेकर विद्यार्थियों के भविष्य पर चिंता जताई।
2: आप कोचिंग करो, ट्यूशन करो, किराया दो, मेस का किराया दो, खाने का, किताबों का, लाखों रुपए गरीब परिवार में क्रेडिट कार्ड के पूंजी बोर्ड के बच्चे बच्चों को इसमें लगाता है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। आपके पास जिम्मेदारी इस बात की है कि निष्पक्ष पारदर्शी आप परीक्षा कराएं, लेकिन मुद्दा यह है कि जवाबदेही किसकी है। लेकिन ये छात्र घर में एक या दो हो सकते हैं, लेकिन भविष्य पूरे परिवार का है। ऐसा कोई बाप नहीं है, ऐसी कोई मां नहीं है जो नहीं चाहती कि हमारे बच्चे उसे आगे बढ़े।
1: और अब मौसम। राज्य में मॉनसून फिलहाल सुस्त बना हुआ है और अधिकतर स्थानों पर गर्मी और उमस का असर है। जल संसाधन विभाग ने अब तक हुई बारिश के आंकड़े जारी करते हुए बताया है कि इस मॉनसून सीजन के दौरान सामान्य से कम बरसात दर्ज की गई है। किसी भी जिले में अब तक असामान्य वर्षा नहीं हुई है। वहीं बीकानेर, चूरू, डीडवाना, कुचामन और सलुम्बर में अधिक बारिश हुई है। 16 जिलों में सामान्य और 21 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 21 जुलाई से मॉनसून के एक बार फिर से सक्रिय होकर रफ्तार पकड़ने के आसार हैं। इस बीच आज राज्य के 10 जिलों में हल्की बरसात हो सकती है। वहीं बीते 24 घंटों में डूंगरपुर, कोटा और अलवर में हुई बरसात से लोगों को उमस से राहत मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति केवल एक बयान नहीं है, बल्कि ये भारत की दृढ़ कार्यवाही की सूचक है। श्री सिंह आज नई दिल्ली में फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला नहीं करेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें नष्ट करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साइबर अपराध की रोकथाम के लिए हेल्पलाइन को प्रभावी और मजबूत बनाने को कहा। भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काईरूट एरोस्पेस की सराहना की। राजस्थान और मध्य प्रदेश के वन क्षेत्रों को आपस में जोड़ने की महत्वाकांक्षी चीता कॉरिडोर परियोजना पर दोनों राज्यों की सहमति। और प्रदेश में मॉनसून सुस्त, अब तक

0: सामान्य से कम बरसात हुई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से सलूम्बर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख कमलेश कुमार झड़ूला ने तैयार किया है। पिछले एक महीने में सलूम्बर जिले में विकास, जनकल्याण, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और पर्यावरण से जुड़े कई बड़े काम हुए। जिला प्रशासन ने गांव-गांव जाकर ग्रामीण सेवा शिविर लगाए, जहां लोगों की वर्षों पुरानी समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। इस दौरान मौसम में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। जून के आखिर तक भीषण गर्मी और उमस से लोग परेशान थे, लेकिन जुलाई की शुरुआत से ही मॉनसून ने जोर पकड़ लिया। जिले के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई, जिससे खेतों में नमी आई और खरीफ फसलों की बुवाई तेज हो गई। हालांकि एक बार फिर मॉनसून की रफ्तार कम होने से लोगों को बारिश का इंतजार होने लगा है। पिछले एक महीने में जिले की सबसे बड़ी पहल ग्रामीण सेवा शिविर 2026 रही। इन शिविरों के माध्यम से लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिली। गांवों में ही अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर समाधान किया। कई ग्राम पंचायतों में आवासीय पट्टे, आबादी भूमि के पट्टे, नाम शुद्धिकरण, भूमि बंटवारा, सीमांकन, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जन्म प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी कार्ड, जॉब कार्ड और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए। डिंगरी ग्राम पंचायत में 20 परिवारों को आवासीय पट्टे दिए गए। चंद्रूडा में कालबेलिया समाज के परिवारों को आवासीय भूमि उपलब्ध कराई गई। पहाड़ी, टोड़ा और अन्य ग्राम पंचायतों में भी पात्र परिवारों को भूमि के अधिकार मिले। सराड़ा ग्राम पंचायत के परसाद में एक बुजुर्ग महिला की सामाजिक सुरक्षा पेंशन शिविर में ही स्वीकृत की गई। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता मिली। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जैसमंद के देवपुरा में पोर्टेबल डिजिटल एक्सरे मशीन से 80 ग्रामीणों की जांच की गई, जिनमें से 10 लोग टीबी संदिग्ध पाए गए। उन्हें आगे की जांच और इलाज के लिए भेजा गया। ग्रामीणों को टीबी, मानसिक स्वास्थ्य और अन्य बीमारियों के बारे में जानकारी भी दी गई। जिले में 11 से 18 जुलाई तक विश्व जनसंख्या सप्ताह मनाया गया और परिवार नियोजन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस क्षेत्र में बेहतर काम के लिए सलूम्बर जिले को राज्य स्तर पर तीसरा स्थान मिला। जिले के 50 किसानों का दल बांस की आधुनिक खेती का प्रशिक्षण लेने उदयपुर, कोटड़ा और सिरोही गया। कृषि विभाग और टैफे जे फार्म सर्विसेज के बीच हुए समझौते के बाद किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से ट्रैक्टर और कृषि यंत्र किराए पर उपलब्ध कराने की नई व्यवस्था शुरू की गई। वहीं खेलों के मद को बढ़ावा देने के लिए DMFT मद से स्टार्स योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत करीब 50 लाख रुपए खर्च करके खिलाड़ियों को खेल सामग्री, खेल पोशाक, आधुनिक मैदान और प्रशिक्षण की सुविधा दी जाएगी। जिले में मिशन सलूम्बर 100 और मिशन ज्ञान वैन शुरू किए गए हैं। इनके माध्यम से विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर की जानकारी दी जाएगी। वीरपुरा की 58 वर्षीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राधा देवी ने राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से 10वीं पास कर जिले के लिए प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया है। वहीं अगर रोजगार की बात करें तो जिले के 342 युवाओं को विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र और वेलकम किट दिए गए। इससे युवाओं में नई उम्मीद जगी और सरकारी सेवाओं में उनका कदम बढ़ा। खाद्य सुरक्षा विभाग ने अदकालिया की एक फर्म पर कार्रवाई करते हुए करीब 7000 किलो एक्सपायर्ड चाय की पत्ती जब्त की है, जिसकी कीमत 19 लाख रुपए बताई गई है। साथ ही विवाह समारोहों और बड़े आयोजनों में अब केवल FSSAI लाइसेंस वाले केटररों को ही भोजन बनाने और परोसने की अनुमति देने के निर्देश जारी किए गए हैं। बरसात के मौसम को देखते हुए जुलाई महीने को एंटी डेंगू माह घोषित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने घर घर जाकर लार्वा सर्वे किया और चेक, क्लीन एंड कवर अभियान चलाकर लोगों को डेंगू से बचाव के उपाय बताए। इसी के साथ सलूम्बर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
2: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है प्रादेशिक समाचार।

0: खास समाचार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राज्य में साइबर अपराधानी रोकथाम सारू हेल्पलाइन असरदार और मजबूत बनावण बाबत कहो। भारत री अंतरिक्ष हल्का में खास उपलब्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में गैर सरकारी हल्कारो पहलो ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 कामयाबी सागर छोड़न पर अंतरिक्ष कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस री सराहना कीनी। राजस्थान और मध्य प्रदेश रा जंगलात हल्का एक दूजा जोड़वारी चीता कॉरिडोर परियोजना माथे दोनों राज्यों री सहमति। और प्रदेश में चौमासारी बिरखा मंद पड़ी, हाल ताई सामान्य कम बरसात हुई। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर रा पुलिस मुख्यालय में साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट रा मुद्दा माथे विचार सारू अहलकार सागर मीटिंग कीनी। इन दौरान साइबर अपराधानी रोकथाम बाबत राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर R4C रा कामकाज रोई जायजो लियो चियो। ध्यान जोग है कि राज्य में ऑनलाइन ठगी और डिजिटल अरेस्ट री वारदाता रोकण सारू राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाई चियो है। इन अतीत 1930 हेल्पलाइन ने और बधावण और इन 7 दिन 24 घंटा काम करण लायक बनावण सारू जतन करिया जावेला। फिलहाल राज्य रा सगला जिला में साइबर पुलिस थाना काम कर रहा है। मीटिंग पाछे पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा खबर नवीसा सागे बातचीत करता था का जनताओं रकम माए तेजी बढ़ोतरी रो झांसो देवन वाला और ई भांतरा दूजा लोभ देवन वाला बचबारी अरज कीनी। राज्य माए लाडला दिना जपा वाली कुछ लुगाइयां री मौत वेवन और कुछ री तबियत खराब वेवन रे मामला माए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास री सदारत माए आज जयपुर माए वर्चुअल तरीका आला दर्जा री मीटिंग राखी छी। वे जापा वाली लुगाइयां री तबियत री पूरी निगरानी राखण सारू चलाया जा रहा खास अभियान रे बारा माए जानकारी लीनी। मीटिंग माए जापा वाली लुगाइयां री तबियत री पूरी निगरानी राखण और बत्ता जोखिम वाला मामला री पिछाण कर वारो न्यारो रिकॉर्ड राखण रा हुकम दिया चिया। इसागे सगला अस्पताल माए जापारा कमरा माए जरूरी दवाइयां और दूजी व्यवस्थावां तय करण सारू कही चियो। मीटिंग माए सगला जिला अस्पताल रा सुप्रिंटेंडेंट और स्वास्थ्य अधिकारी और मेडिकल कॉलेज रा प्रिंसिपल ही शामिल थिया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम कहो है कि शिक्षण संस्थान माए पढ़वा वाला विद्यार्थियों सेफ्टी टैंक री सफाई कराण जोखिम भरियो और गंभीर लापरवाही रो मामलो है। श्री बेढम डीग जिला रा मीलखेड़ा रा मदरसा माए सेफ्टी टैंक री सफाई रे दौरान हुए हादसा ने घणो दुख देवन वालो बतायो। आज भरतपुर माए खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका गृह राज्य मंत्री कहो के वाकया री जानकारी मिलता ही प्रशासन तुरंत जरूरी जतन कीना पण सेफ्टी टैंक माए जहरीली गैस हो एक टाबरी री मौत वेगी जदके जख्मी हुई दूजी टाबरी रो अलवर रा अस्पताल में इलाज चल रियो है।
1: तो बच्चे हमारे यहाँ अध्ययन के लिए आते हैं और अध्ययन के लिए आने वाले बच्चों को इस तरह के काम कराए जाना मैं समझ सकता हूँ कि व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। पुलिस ने रात को FIR दर्ज कर ली है। जो भी कानून सम्मत कार्रवाइयाँ होंगी वो निश्चित रूप से करेंगे। हमारी प्राथमिकता है कि बच्चे सुरक्षित रहें, बच्चे शिक्षण ग्रहण करें, उनकी उचित व्यवस्थाएं हों। तो उन सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पहली प्राथमिकता बच्चों की जान बचाना, उनको सुरक्षित रखना, अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन इस तरह का कृत्य कोई करता है तो वो शर्मनाक है और कानून में जो बनेगा निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।
0: सीकर जिला में कटराथल रा पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में आज शेखावाटी ज्ञान सभा रखी छी। ज्ञान सभा रो मकसद शिक्षा जगत, नौजवाना और समाज बीच देश बनावन दबारा माए विचारा रो लेन देन करनु हो। ई मौके राज्यपाल हरिभाव बागड़े विकसित भारत बनावन सारू भनाई लिखाई और संस्कारा माथे जोर तीनो। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी कहो के सगला ने देशी मूल्या माथे आधारित विकास री दिशा में आगे बढ़नु चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत

0: पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पेंशन में जुड़िया झगड़ा रो निपटारो प्रशासनिक तौर करण बाबत कहो है। वे आज नई दिल्ली माए पेंशन में जुड़ी मुकदमेबाजी रबारा माए राखी जी राष्ट्रीय कार्यशाला माए बोल रहा हा। डॉक्टर सिंह कहो कि पेंशन में जुड़िया काम माए साफ कोई लावण सागे दक्षता बधावन सारो ऑनलाइन सिस्टम रे जरिए पेंशन रो सुबितो शुरू करी चियो है। ई मौके अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी पेंशन में जुड़ी मुकदमेबाजी खत्म करण सारू मिलर कोशिश करण री जरूरत माथे जोर तीनो। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। देश में किणी गैर सरकारी कंपनी कानियों बनाई जो पहलो ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम वन ने कामयाबी सागे छोड़ी जियो है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेता इन खास कामयाबी सारू गैर सरकारी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने बधाई देनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्रम वन टीम री इन ऐतिहासिक उपलब्धि री सराहना करता थका कहो के आ कामयाबी देश रा नौजवाना ने नुआ काम करण मा योगदान देवन री सीख देवेला।
1: सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई
2: सर। वी आर वेरी वेरी प्रिविलेज टू हियर यू।
1: स्काई रूट ने दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। कब से मेरा ध्यान जो गया आपकी पूरी टीम 25-30 साल की दिखती है। आपका जो कुछ भी मिशन है मैं इसको एक प्रकार के वंदे मातरम मिशन ही देखता हूँ कि भारत माँ की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना, नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी को लाभ देना और नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी में आने के लिए प्रेरित करना।
0: ई मौके केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहो के आ कामयाबी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी माई भारत रा बद्धता बूता रो दर्शाव करे है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ई कामयाबी ने देश रा अंतरिक्ष इतिहास रो सोना रो अध्याय बतायो है। वह इन्होंने भारत रा वैज्ञानिका रे तकनीकी हलका माए खुद रे पाण उबाफेवण और नवाचार री निशानी बताता था का कहो के ई कामयाबी माथे देश रा हर रहवासी ने नाज है। ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम वन ने आज दोपहर पाछे 12:05 पर आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा रा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र छोड़ी चियो। इस आगे भारत ओ बूतो हासिल करने वालो तीजो देश बन गयो है। राजस्थान और मध्य प्रदेश रा जंगलात हलका ने एक दूजे जोड़ बारी खास चीता कॉरिडोर परियोजना रा बारा में दोनों राज्यों में एक राय बन गई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA रा जानकारा री टीम कोटा और रावत भाटा हलका रा जंगलां रो दौरा करया पाछे पूरा हलका ने चीता ने हमेशा सारू बसावण बाबत ठीक मान्यो है। वो कॉरिडोर राजस्थान रा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और मध्य प्रदेश रा गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य बीच बनावण रो प्रस्ताव है। मध्य प्रदेश रा कूनो नेशनल पार्क में चीता री बढ़ती तादाद ने ध्यान रखता थका ई खास कॉरिडोर री जरूरत महसूस करी जा रही ही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रा हुकम और दोनों राज्यों रा आला अहलकारा री मीटिंग पाछे ई परियोजना रा काम में तेजी लावण री कोशिशां बध की है। ओ कॉरिडोर विकसित वेवणु रावत भाटा और आरएसआरए रा करीब 400 किलोमीटर हलका माए चीता ने कुदरती घर माए बसाया जा सकेला। कांग्रेस रा आला नेता और राज्य रा पहली वाला उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट छात्रों की गूंज अभियान रा तहत आज जयपुर माए राखी जिया छात्र संविधान संवाद कार्यक्रम माए शामिल भया। इन माए विधानसभा माए विपक्ष रा नेता टीकाराम जूली और छात्र संगठन NSUI रा राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ी भेड़ा भया। इन दौरान श्री पायलट बढ़ती बेरोजगारी और पेपर लीक रा मुद्दा नो जिक्र करता थका विद्यार्थियों रा भविष्य जुड़ी चिंता जताई।
3: आप कोचिंग करो, ट्यूशन करो, किराया दो, मेस का किराया दो, खाने का, किताबों का, लाखों रुपए गरीब परिवार में अपने कार्यदेश निजी बोर्ड के बच्चे बच्चों को इसलिए लगाता है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। आपके पास जिम्मेदारी इस बात की है कि निष्पक्ष पारदर्शी आप परीक्षा कराएं, लेकिन मुद्दा यह है कि जवाबदेही किसकी है।

0: छात्र घर में एक या दो हो सकते हैं, लेकिन भविष्य पूरे परिवार का है। ऐसा कोई बाप नहीं है, ऐसी कोई मां नहीं है जो नहीं चाहती कि हमारे बच्चे उससे आगे बढ़े।
1: मौसम राज्य में चौमासारी बिरखा फिलहाल सुस्त प्रजावरण रे कारण घर घर थोड़ा गर्मी और उमस रो असर बनियो रो है। जल संसाधन विभाग कानू मिली जानकारी रे मुजब इन चौमासा में फिलहाल सामान्य कम बिरखा भी है। बीकानेर, चूरू, डीडवाना, कुचामन और सलुम्बर में सामान्य बत्तो में वर्षो, जबकि 16 जिला सामान्य और 21 जिला में सामान्य कम बरसात हुई। मौसम विभाग रे मुजब राज्य में 21 जुलाई उजू बिरखा वेवन रा आसार है। ये बीच आज प्रदेश रा 10 जिला में हल्की बरसात री संभावना है। सरकार संसद रा सोमवार न शुरू वेवन वाला पावर सत्र पहली काल सगली सियासी पार्टियां रा नुमाइंदा ने मीटिंग बुलाई है। इनमें सगली सियासी पार्टियां दोनों सदना री कार्रवाई ठीक ढंग चलावन में मदद री अपील करी जावेला। 13 अगस्त तक चलन वाला इन सत्र रे दौरान कई खास मिला माथे चर्चा वेवन अरवाने पास करावन रे संभावना है। आखिर में खास समाचार एक कर फेर सुन ले रहो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य में साइबर अपराधानी रोकथाम सारू हेल्पलाइन ने असरदार और मजबूत बनावन बाबत कहो। भारत री अंतरिक्ष हल्का में खास उपलब्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में गैर सरकारी हलकारो पहलो ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 कामयाबी सागर छोड़न पर अंतरिक्ष कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस री सराहना कीनी। राजस्थान और मध्य प्रदेश रा जंगलात हलका एक दूजा जोड़वारी चीता कॉरिडोर परियोजना मथे दोनों राज्यों री सहमति। और प्रदेश में चौमासा री बिरखा मंद पड़ी, हाल ताई सामान्य कम बरसात हुई। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। नमस्कार।

एफएम 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। इस वक्त शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: किसान वाणी कार्यक्रम हमारा वारो सब भाई ने बहनों ने सोराथी की रीता बहनों राम राम राम राम भाई ने बहनों आज आप सोरा पर बात करो खरीफ की फसल में उर्वरक न प्रयोग ने बारे में ने इन बाद आप बात करना पशुओं में टीकाकरण ने बारे में इन हाथे हाथे आ बरसात नो जो समय है इनमें आप पशुधन राख तो इनकी देखभाल नहीं करी हूँ आहार आलो इन बारे में अपने सोरा पर पायल बहन है जी की गौशाला संचालिका है तेनाथी की बात करूंगा हाथे हाथे अच्छो सु गीत हांभूंगा तो कार्यक्रम में आप शुरुआत करो खरीफ फसलों में उर्वरक में प्रयोग ने बारा में कि आप सब भाई बहन जाना कपड़े अपने खरीफ की फसलें करी थी कि घना भाई बुवाई कर दी थी है ने घनी क्षेत्र में पानी पड़ू नहीं तो भाई बुवाई अभी भी करी रहा थे का है ने हमने आप मक्का सोयाबीन कपास दलहनी फसलें करो तो आ वक्त अपने जी फसले अपने बुवाई करो तैयार थी कि आपने उर्वरक है प्रयोग करव पड़े तो आज एना पर बात करें कि आप खरीफ फसलों में कया कया उर्वरक न प्रयोग करव जो है। एक तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए कि जी आप उर्वरक न प्रयोग करव इन्हें पहले आप सभी अपने खेतर में मिट्टी परीक्षण करव है तो मिट्टी परीक्षण ने आधार पर उर्वरक नो प्रयोग करव जो है जेम के अपने खेतर में कई पोषक तत्व की कमी है या कई पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में है इन सब जानकारी आप राख तो इन आधार पर अपने उर्वरक नो प्रयोग करव जो है। बीजू आना समय में आप एनपीके नो प्रयोग करो तो नाइट्रोजन है इन प्रयोग अपने बुवाई समय

0: કેટલા અંતરાલમાં રાખેગા એ સબ આપણને જાણકારી રહેગા અને આપણે સમય ઉપર પશુઓની ટીકાકરણ કરાવી શકંગા. અને વિષય ઉપર હજી આગળ આપણે વાત કરો પર આ સોરા ઉપર હાજનો સમય હૈ ને સબ ભાઈ બહેન ભી ચાહી રહે કે અચ્છો સો ભજન થઈ જા તો આ સંદેશ હૈ ને આ ભજન હૈ હમણી પછી આપણે આગળની વાત કરો.
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
2: मिलेगा पेंशन का सहारा कृषक ना होगा बेसहारा जुड़ेगा खुशियों से नाता कटेगा सुख से बुढ़ापा सुरक्षित होगा अन्नदाता सुरक्षित होगा अन्नदाता.
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
3: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित.
1: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान.
3: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान.
1: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
3: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं.
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल पेंशन से सुरक्षित उनका घर.
4: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी.

भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत का है। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित।

0: दोस्तों आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अभी किसानवाणी कार्यक्रम प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:30 होने को है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम। रात 8:45 पर सुनिएगा समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और रात 9 बजे का समय रहेगा विविध भारती के कार्यक्रमों का। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इफ्को राजस्थान।
1: किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। ग्वार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीज उपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: खेतीबाड़ी सुनवाला सगड़ा कर्जा बढ़ाने अश्विनी कुमार सेन को घणो घणो राम राम साहब। नरपत भाई थाने भी घणो घणो राम राम।
5: सारा किसान भाई ने नरपत सिंह रो राम राम और साथ ही अश्विनी भाई आपने भी राम राम।
4: बिल्कुल घणो घणो राम राम। देखो नरपत भाई, आप जब भी मौसम बदले थे तो आपने स्वास्थ्य को ध्यान रखता हुआ आपने आहार में बदलाव करा जा।
5: हाँ सर
4: जी, सर्दी आ वाली छे तो सर्दी के हिसाब से आप भोजन लेचा और जटे आप गर्मी आ रही छे गर्मी के हिसाब से जटे आप बरसात की बात करा तो बरसात के हिसाब से आप भोजन लिया जा। जी प्रकार जो आप भोजन लिया जा इस प्रकार ही आपने जो पशु छे बने भी आप के हिसाब से भोजन यानी चारो देना चाहिए जी। यानी पशु को आहार संतुलित और नियंत्रित होना चाहिए जी। बिना दिन में दो बार यानी 8 से 10 घंटा के अंतराल में चारो आपने देना चाहिए जी। इससे पाचन क्रिया ठीक रहे और बीच में जुगाड़ी करवा को समय भी बने मिल जाए।

0: है। पशुओं को आहार सस्तो, साफ, स्वादिष्ट और पाचक होना चाहिए और चारा में 1/3 भाग हरे चारो और 2/3 भाग सूखो चारो होना चाहिए। पशु ने जो आहार दियो जाए बीमें कई प्रकार का चारा दाना मिला होना चाहिए और चारा में सूखो और सख्त डंठल भी नहीं होना चाहिए बल्कि ये बलीबाती काटे हो तो मुलायम होना चाहिए।
1: साथ ही साथ अपन का करना चाहिए जो अपने जो चे चना मटर रेगो मक्का रेगी और वो दली हुई चीजा छे बिना पकार आपा या तो पानी भिगो दिया या बिना भिगा के बाद में जो फूल जाए ने भी बाद में अपन अपने जो जानवर से बंद देना चाहिए और दाना ने अचानक नहीं बदलना चाहिए जो आप कोई खिला रहा था तो जल्दी से नहीं बिना धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर अपन बदलना चाहिए जिसे अपना पशु छे जन आवश्यकता अनुसार ही बन आहार देना चाहिए।
0: बिल्कुल यह बात वास्तव में बढ़िया बताया कि देखो जी आपा बताया ना कि आपा मौसम के हिसाब से आपा अपने भोजन करा जा जे आपको ना पशुओं को ध्यान रखना चाहिए। कई बार आपा देखा साहब जटे हरी कड़वी आगी तो भाई एक साथ चोलियों पर साहब अपना ध्यान में डाल दिया था यह नहीं करना चाहिए। आपने पशु जो पारा था आपा बिना भी मौसम के हिसाब से या बदलाव चारा के हिसाब से बिना थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा देना चाहिए ताकि वो बीमे आराम से खा सके और पशु ने भी की आवश्यकता अनुसार ही आहार देना चाहिए कम या ज्यादा। कई बार आप देखा था साहब बहुत सारा डाल दिया कई बार देखा था आप थोड़ा सा डाल दिया यानी ना एकदम साफ होनी चाहिए यानी जो आप बीमे डाला चाहें तो बाद एक साफ सुथरी होनी चाहिए और नयो चारो डाल से पहले आपने जूटन जो पेड़ पुराना चारो पेड़ हो जाए बिना आपने साफ कर देना चाहिए। अब आप बात करा कि आपने कत्तो चारो गायन डालना चाहिए और कत्तो चारो अपनी बेसन डालना चाहिए तो नरपत भाई गायने 2 से 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ और भैंसाने 3.0 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम वजन भार का आधार मारे आपने अने चारो देना चाहिए यानी आप जो भी पशुपालक भाई से और जो पशुओं को व्यवसाय करे से पशुपालन करे से पर ई बात को ध्यान रखना चाहिए बदलता मौसम के मायने पने जो आप चारो डालना चाहिए वो बदलाव करे लेकिन बदलाव एक साथ नहीं करना चाहिए हरदम धीरे धीरे बदलाव करना चाहिए और बाकी अच्छी तरीके से देखभाल करनी चाहिए।
1: हाँ केवल मतलब कि एग्जाम जब बार अपना हरे चारो जाए तो ज्यादा से ज्यादा हरे चारो भी नहीं खिलाना चाहिए साथ सूखो चारो भी मिला देना चाहिए।
0: आप कई बार देखा था जी जटे हरे चारो हो तो आप सूखो चारो को दे रहा और पूरा डायरेक्ट ही मतलब एक साथ ही जने बाकी मान है जो आप हरे चारो डाल रहे तो बी को अपन ध्यान रखना चाहिए थोड़ा थोड़ा देर थोड़ा थोड़ा देर भी ने बी में डालना चाहिए। और देखो आप करें हरे पर चारा की बात तो आपने किसान भाई की बात करें जाएगा अपन कौन कौन सी बात को ध्यान रखना चाहिए तो क्यों ना किसान भाई ने प्यारो सो गीत भी सुना दिया
1: सुनाओ साहब

0: नरपत भाई, बहुत ही बढ़िया गीत सुनाया मुरलीधर यादव जी बाजूदार बंदरी ज्योति वर्मा को। और देखो नरपत भाई, आपने जो भी किसान भाई से जो मौसम के हिसाब से इस समय की बात करा, तो इस समय आपने किसान भाई जो बरसात आ वाली है, तो बरसात का मायने चाहिए जो पौधशाला को निर्माण करे से सब जगह पौधशाला। तो आज देखो बात भी आपा जो आपने जानकार विशेषज्ञ आए थे, बस आप जानकारी भी आई लाला कि खरीफ मौसम की सब जमा पौधशाला को प्रबंधन काई तरीका से कर सका था। और जानकारी देने के लिए पधारे है डॉक्टर शशि कुमार बेरवा, तो लेवा जानकारी।
1: बिल्कुल दिलाओ जानकारी साहब।
2: श्रोताओं कार्यक्रम में आज आपा जानकारी लेवा खरीफ मौसम री सब्जियां रो पौधशाला में प्रबंधन किया करो जावे है। और विशेष जानकारी के लिए आपने सागे विशेषज्ञ भी स्टूडियो में पधार चुका है, आप ओलखाण वासु करवावा। आज आपने सागे स्टूडियो में विराजा है डॉक्टर शशि कुमार बैरवा, सहायक आचार्य उद्यान विज्ञान राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में आप पदस्थापित है। आप घणो घणो स्वागत है, राम राम सा।
3: किसान भाइयों सभी को राम राम मेरा।
2: तो सा जिया की आज आपनो जो विषय है खरीफ मौसम सब्जियां रो पौधशाला में प्रबंधन किया करना चाहे, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहवाला कि अबार रे टाइम कौन कौन सी सब्जियां री पौध आपा लगा सका हा।
3: किसान भाइयों जैसे सब्जियों की पौध की हम बात करते हैं, तो अभी वर्तमान में आप मिर्च टमाटर बैंगन है पत्ता गोभी फूल गोभी और प्याज की जो फसलें हैं, प्याज की सब्जियां हैं, वो प्रमुख रूप से आप लगा सकते हैं पौधशाला में।
2: जी तो सर पौधशाला के लिए आपने सबसे पहली जगह को चुनाव करना पड़ा है, तो भी जगह रो चुनाव आपा किया करा वो भी बताओ सर।
3: किसान भाइयों पौधशाला का जो चुनाव है वो महत्वपूर्ण बिंदु है जब भी हम बात करते हैं उत्पादन की, तो इसमें हमें ध्यान रखना है किसान भाइयों की पौधशाला ऐसी जगह बनाए जहाँ स्थान खुला हुआ हो और जो पौधशाला की जो मिट्टी है वो कीट मुक्त होनी चाहिए और मिट्टी में किसी भी तरीके की जल भराव की समस्या नहीं रहे। साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पौधशाला है वो हमारे घर के आसपास ही हो, ताकि हमें प्रबंधन करने में या उसमें और भी जैसे खाद देना है दवाइयाँ देनी है तो उसमें हमें सुविधा रहती है।
2: जी तो सर जी हाँ आप बात कर रहे हैं पौधशाला री, तो पौधशाला री जी की क्यारियां हैं बाने भी की माटी ने कीट व्याधियां से आपा किया मुक्त कर सका हाँ वो भी बताओ सर।
3: किसान भाइयों जैसा कि हम बात करते हैं कि पौधशाला में अगर कीट व्याधियों की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी जो पौधशाला है जहाँ पर हम पौध तैयार कर रहे हैं वहाँ पर हम सोइल सोलराइजेशन यानी मृदा का सोलरीकरण करके भी हम कीट व्याधियों से बचा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जिस जगह हमें पौध तैयार करनी है वहाँ की जो मिट्टी है उसे फावड़े की मदद से गहरी गुड़ाई करें और गुड़ाई करने के बाद में हल्की सिंचाई करें और उसके बाद उस जो जमीन है उसको मोटी जो पॉलीथीन जो शीट है लगभग 200 गेज मोटाई की उससे हम ढक दें। और इस तरीके से जब हम देखते हैं जब ढक देते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है और जो उसके अंदर जो कीड़े और जो बीमारी के जो कीटाणु हैं वो मरते हैं। ये तो सबसे सस्ता उपाय है। इसके अलावा हम चाहें तो हम जैसे फॉर्मेलडिहाइड का भी

0: उपचार करके हम कीट और व्याधियों से बचा जा सकता है
1: जी। अब सर अगर आप बात करा बिरखा में आप अगर पौधशाला बनाना चाह रहे हैं तो भी टाइम की प्रकार की क्यारा निर्माण करना चाहे वो भी बताओ सर।
0: किसान भाइयों ज्यादातर जो हम देखते हैं इस मौसम में जो क्यारियां हैं वो ऊंची उठी हुई होनी चाहिए। इसके लिए आप ये जरूर ध्यान रखें कि जो क्यारियों की जो चौड़ाई है वो लगभग 1 मीटर चौड़ी होनी चाहिए और लंबाई आप अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते हैं। और जैसे इस समय क्या होता है कि बरसात का मौसम है जल भराव की समस्या रहती है तो क्यारियां हमेशा जमीन से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची उठी होनी चाहिए ताकि जो जल है अतिरिक्त बरसात होती है तो पानी बहके साइड से निकल जाए और हमारी पौध को पानी से सुरक्षा हो सके। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें किसान भाइयों कि जो पौधशाला की जब क्यारी बनाते हैं तो बीच वाला जो हिस्सा है ऊंचा उठा रहना चाहिए और दोनों वाले जो किनारे वाले हिस्से हैं वो ढलाव हो ताकि तेज बरसात आए तो पानी आसानी से बहकर बाहर जा सके।
1: जी डॉक्टर साहब अब अगर आप बात करें बीज री तो पौधशाला में जिसकी क्यारा है वहां बीज कितनी गहराई पर बोनो चाहिए और काई वे बातें हैं जिकर आपने ध्यान रखना चाहिए वो भी बताओ सर।
0: किसान भाइयों जब भी हम बीज बोते हैं तो क्यारियों में विशेषकर हमें ध्यान रखना चाहिए कि बीज कतार से कतार में हमें बोना चाहिए
1: जी।
0: इसके लिए कतार को सीधी बनाएं और बीज बोने से पहले बीज का उपचार करें और जब बीज का उपचार करते हैं तो साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब बीज बोएं तो बीज को ज्यादा गहरा नहीं बोएं। अक्सर ये माना जाता है कि जो सब्जियों का जो बारीक बीज होते हैं उनमें थोड़ी सी रेत मिलाकर बीज को बोना चाहिए ताकि बीज समान दूरी पे गिरे, एक साथ पास पास ज्यादा बीज गिरेगा नहीं। और उसके अलावा जैसे बीज की गहराई की हम बात करते हैं तो लगभग 1.5 से 2 गुना जो गहराई है इससे ज्यादा गहरा नहीं बोना चाहिए नहीं तो अंकुरण प्रभावित होता है
1: जी। तो सर अब अगर आप बात करा कि रोपाई से पहली पौधशाला में जिकी पौध है बने किया आप मजबूत कर सका हां कि प्रकार बने बना सका हां बीकी भी थोड़ी सी जानकारी सगले श्रोताओं तक।
0: लगभग सभी तरह की जो सब्जियों की जो पौध है वो 25 से 30 दिन के लिए बुआई के बाद में तैयार हो जाती है तो हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी हम पौधशाला में रोपाई करते हैं तो पौध को उखाड़ने से पहले हमें कम से कम 1 सप्ताह के अंदर पानी है रोक देना चाहिए ताकि जो पौधे हैं वो कठोर बन सके, मजबूत बन सके, ओजस्वी बन सके और उसके बाद ही हम पौधों को निकालकर खेत में हमें रोपण करना चाहिए
1: जी। बहुत ही बढ़िया जानकारी डॉक्टर शशि कुमार बैरवा जी आपने बता रहे हैं। तो डॉक्टर साहब अब आप सुने वो भी जानना चावला कि वर्तमान में प्याज री कुण सी किस्म है जिका की आपा पौध लगा सका हाँ वे उपयुक्त किस्म भी थोड़ी सी बताओ सर।
0: हाँ जी किसान भाइयों जैसे प्याज की हमारा जो क्षेत्र है जैसे सीकर वाला बेल्ट है, अलवर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर ज्यादातर प्याज की खेती होती है और खरीफ में भी प्याज की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम पौध बीज से यदि हम पौध तैयार कर रहे हैं तो उस स्थिति में हमें बीमा पर है, एग्रीफोन डार्क रेड है या नासिक 53 जो किस्म है उनका चुनाव करना चाहिए। ये विशेषकर खरीफ के लिए ही है
1: जी। अब अगर आप बात करा फूल गोभी और पत्ता गोभी री अगेती फसलारी तो बी की पौध लगाने के लिए कौन सी किस्म रो चयन आपने करना चाहिए।
0: किसान भाइयों फूल गोभी में अगर हम अगेती पौध लगाते हैं तो हमें अच्छा मुनाफा मिलता है और किसान को फायदा होता है। इसके लिए आप अगेती किस्म लगाएं जैसा कि अरली कुमारी है, हम पूसा दीपावली का भी चुनाव कर सकते हैं, पूसा कार्तिक की जो है किस्म है उनका चुनाव कर सकते हैं और इसके लिए आप देर नहीं करें क्योंकि ये समय अभी वर्तमान जो समय है इसके लिए बिल्कुल तैयार है। आप बीज है जो है उक्त किस्मों का जो बीज है ये खरीदें बाजार से और इनको आप अपने पौधशाला में लगाएं। साथ ही साथ जैसे हम बात करते हैं पत्ता गोभी की बात करते हैं तो पत्ता गोभी में गोल्डन एकर है या पूसा शंकर किस्म एक है, इस तरीके की जो है पत्ता गोभी की जो किस्मों के जो बीज है वो आप पौधशाला में लगा सकते हैं
1: जी। अब सर अगर आप बात करा टमाटर और बैंगन की फसलारी पौधरी तो बी के लिए कौन सी किस्म आपने चयन करना चाहिए वो भी बताओ सर।
0: जी किसान भाइयों यदि हम बात करते हैं बैंगन की तो बैंगन के लिए हम पूसा क्रांति है, पूसा शंकर 2 नंबर की जो किस्म है या फिर पूसा कृष्णा जो किस्म है इसका चुनाव कर सकते हैं। इसी प्रकार से टमाटर में यदि हम बात करते हैं तो अर्का वरदान है, अर्का अनन्या है, इस तरीके की जो किस्म है उनका चुनाव करना चाहिए
1: जी। डॉक्टर साहब थोड़ी सी शंका यह है कि अगर मिर्ची टमाटर या आपा फसल लगा रहे हैं तो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए कितनी क्यारा बनाने की आवश्यकता हुआ है वो भी बताओ सर।
0: किसान भाइयों ज्यादातर तो ये जो निर्भर करता है वो ये रहता है कि हमारी जो पौध है वो कितनी अच्छे तरीके से हमने प्रबंधन किया है तो हम कम बीज पे भी अच्छी पौध तैयार कर सकते हैं। लेकिन 1 हेक्टेयर के लिए अनुमानित लगभग 12 से 15 जो क्यारियां हैं वो हमें पौध की लगानी चाहिए ताकि 1 हेक्टेयर के लिए हमें पर्याप्त पौध तैयार हो सके
1: जी। अब सर अगर आप बात करें शेड नेट और पॉली हाउस के बारे में तो आज का उपाय है बा में अगर आप सब्जियां संकर किस्म बीजा ने अगर पौधा रोपण आप करना चाहवा तो भी मैं आपने कहीं कहीं सावधानियां रखनी है बी पर भी खुलासा करो सर।
0: किसान भाइयों जैसा कि हम बात करते हैं तो संकर जो किस्म होती है उनमें बीज की जो है कीमत है वो ज्यादा महंगी होती है तो अतः हमें इसके लिए विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की जो बीज है उन्हें हम नई जो तकनीकी आ रही है जिसमें कि हम मृदा का भी चुनाव नहीं करते, मृदा विहीन जो विधि है जैसे कोकोपीट परलाइट परमिकुलाइट लेंगे और उसे हम पोट्रे में हम मिक्सर बनाकर तैयार करेंगे और उसमें हम एक बीज एक खाने में लगाएंगे। इससे लगाने से फायदा है कि एक तो इसमें मतलब जो जमीन से जो फैलने वाले जो कीड़े बीमारियां वो नहीं फैलते और जो हमारा जो बीज है वो सुरक्षित रहता है, बीज की अच्छी वृद्धि होती है।
1: जी
0: माध्यम के रूप में कोकोपीट, वर्मिकुलाइट और परलाइट लेते हैं किसान भाइयों प्रोट्रे विधि में, जिसमें कोकोपीट की 3

0: में 3:1:1 में हम माध्यम लेंगे। लगभग 5 किलो का जो मिश्रण है वो तैयार करेंगे और इसको हम पोटरी में भरेंगे और इसके बाद में बीज उपचारित करके हम एक एक खाने में एक एक बीज लगाएंगे।
1: जी, अब सर अगर आप बीज उपचारण की बात कर रहे हैं तो पौध शाला में बीज बुआई सू पहली बीज रो उपचार कौन सी दवाई सू और क्या करे जावे है वो भी बताओ सर।
0: किसान भाइयों, अगर हम रसायन की बात करते हैं तो कार्बेंडेजिन है या कैप्टान है या थायरम जो दवा आती है वो लगभग 1.5 से 2 ग्राम जो दवा है वो प्रति किलो बीज के हिसाब से हमें बीज में मिलाकर उपचारित करनी चाहिए। लेकिन अक्सर जो हम जो देखते हैं कि भाई जैविक विधि से भी हम उपचार करते हैं तो उसके लिए हमें ट्राइकोडर्मा जैविक फफूंदनाशी है वो 5 से 6 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम बीज उपचारित करके बीज लगाना चाहिए।
1: जी, अब सर अगर आप बात करा कि खरीफ के मौसम में प्याज रीज की पौध रोपाई है वह बीज बोने के कितने दिन बाद करनी चाहिए और कद करनी चाहिए तो वो भी बताओ सर।
0: किसान भाइयों, जैसा कि तर जो किसानों ने अभी तक प्याज का जो खरीफ का जो मौसम का जो बीज है वो लगा चुके हैं, अतः इसके लिए लगभग आप 42 दिन बाद में पौध आपकी तैयार हो जाती है और उसके बाद ही आप इसको लगाएं।
1: अब सर अगर आप बात करा कि पौधशाला में पौध ने आपा रस चूषक का कीट हुए है मासू आपा ने बचाना है तो वो काम आपा क्या कर सका है?
0: किसान भाइयों, रस जो कीट है इसके लिए बाजार में आपको पीले रंग के और नीले रंग के जो चिपचिपे ट्रैप आते हैं वो पौधशाला में लगाना चाहिए। ये सबसे सस्ता और कारागर उपाय है। इसके अलावा आपको लगता है कि कीड़ियों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है तो आप नीम आधारित जो है एजाडायरेक्टिन या नीम का तेल है उसके 3 से 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। उसके अलावा भी अगर आपको ऐसा लगता है तो सबसे बढ़िया जो चीज है वो है आप एसीफेट जो दवा है उसका 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप पौधशाला के पौधों पर छिड़के और इस तरीके से आप कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं।
1: वासावा डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया जानकारी आप दूर दराज के क्षेत्र में बैठे हमारे श्रोताओं तक पुगा रहे हो। अब चलता चलता कोई ऐसी विशेष बात जिकी सब ने आप बताना चाहो भीरो भी स्वागत है साहब।
0: किसान भाइयों, पौधशाला में जो ज्यादातर जो किसान है वो हमारे विषाणु रोगों से ज्यादा जूझते हैं तो अतः आपको विशेष कर ध्यान रखना है कि जब भी हम पौधशाला तैयार करते हैं तो पौधशाला संरक्षित जो स्थान है वहां पर तैयार करें या फिर आप जहां पर भी आप खुले स्थानों में पौधशाला तैयार कर रहे हैं वहां पर 40 मेष जो लाइलून की जो जाली आती है उससे उसको ढके ताकि जो कीट रस चूसक कीट है वो उस जाली में नहीं आए। और ये आप विशेषकर ध्यान रखें कि अगर हम स्वस्थ पौध को अगर हम खेत में रोपित करेंगे तो उससे हम अधिक से अधिक मुनाफा लेंगे, इससे आपकी जो आय है वो भी वृद्धि होगी और उत्पादन भी अच्छा मिलेगा।
1: डॉक्टर शशि कुमार बैरवा, सहायक आचार्य उद्यान विज्ञान राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में आप पदस्थापित हो, आपने अमूल्य समय महसूस समय निकाल कर स्टूडियो तक पधारा और अति बढ़िया जानकारी खरीफ मौसम की सब्जियां में पौधशाला प्रबंधन विषय पर सगले श्रोताओं तक पुगाई, इसके लिए आप रो घने मानसु धन्यवाद सा।
2: किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफको नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। ग्वार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीज उपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफको नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: नरपत भाई,
6: हाँ सर,
5: देखो भावना जी ने कितनी बढ़िया जानकारी दिलाया, खरीफ मौसम की सब्जियां में पौधशाला को प्रबंधन आपा इसमें काय तरीका से कर सका जा, और जानकारी दिया डॉक्टर शशि कुमार भैरव जी, तो इतनी बढ़िया जानकारी दिया और आज शनिवार तो क्यों ने एक वीरबली हनुमान जी को एक प्यारो सो भजन सुना दिया।
6: सुनाओ सा।

0: ई गीत की साथ ही खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतोई ई की साथ ही अश्विनी कुमार सेन
1: और नरपत सिंह ने
0: तो इजाजत और करा
1: राम राम सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इफको राजस्थान।
3: किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफको नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। ग्वार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीज उपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफको नैनो डीएपी का वादा खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीबाड़ी। आइए अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का, जिसमें हम आपको सुनाएंगे प्यारे प्यारे गीत।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800420223 पर कॉल करें।

अभी आपने सुना ये गीत तेजा फिल्म से। गायक थे अनुराधा पौडवाल, अमित कुमार। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने। अब सुनते हैं अगला गीत फिल्म शान से। मोहम्मद रफी, आशा भोसले, उषा मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजें हैं। बोल है आनंद बख्शी के। संगीत है आर डी

अगला गीत सुनते हैं फिल्म शराबी से। किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजें हैं, अनजान के बोल हैं, बप्पी लहरी का संगीत है। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

अभी आपने सुना मिस्टर इंडिया फिल्म से ये गीत। इसे गाया था किशोर कुमार, अलीशा चेन्नई ने। गीत लिखा था जावेद अख्तर, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इसी मधुर गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे स्पोर्ट्स गेम, 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज एट 9। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची, खिताबी मुकाबले में कल अकाने यामागुची से सामना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से, अर्जेंटीना और स्पेन कल फाइनल में होंगे आमने सामने। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर पीको का अनावरण किया। चेन्नई शतरंज ग्रैंड मास्टर्स में अलीरेजा फिरोजा ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन समारोह में ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन को भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया। और भारत और इंग्लैंड के बीच कल लॉर्ड्स में तीसरा और निर्णायक एक दिवसीय मुकाबला खेला जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, जहां अनुभवी खिलाड़ी पीवी सिंधु ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल का टिकट पक्का कर लिया है। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। सुनते हैं सरफिरोजी की खास रिपोर्ट।
1: सेमीफाइनल में सिंधु पूरी तरह हावी नजर आई और वो 21-19, 15-10 से आगे चल रही थी। तभी पूर्व ओलंपिक चैंपियन चेन को हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण हटना पड़ा और सिंधु को वॉक ओवर के जरिए फाइनल का टिकट मिल गया। इससे पहले भारतीय खिलाड़ी ने मजबूत शुरुआत की और अपने आक्रामक खेल और तेज मूवमेंट से पहले गेम के बीच 4 अंकों की बढ़त बना ली। चेन ने वापसी करते हुए स्कोर 19-19 से बराबर किया, लेकिन सिंधु ने आखिरी मिनटों में संयम बनाए रखा और अपने पहले गेम प्वाइंट को भुनाते हुए पहला गेम 21-19 से जीत लिया। दूसरे गेम में सिंधु ने शुरुआत से ही रैलियों पर दबदबा बनाए रखा और तेजी से 15-10 की बढ़त बना ली। इसके बाद चेन यू फी चोट से जूझती नजर आई और उन्होंने आखिर में मैच से हटने का फैसला लिया। 31 साल की पीवी सिंधु ने साल की शुरुआत वर्ल्ड नंबर 18 रैंकिंग के साथ की थी, लेकिन लगातार बेहतर प्रदर्शन के दम पर उन्होंने अपनी रैंकिंग में सुधार किया और अब वो दुनिया की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। जापान ओपन का खिताब जीतने के लिए लक्ष्य के साथ सिंधु कल होने वाले फाइनल में जापान की अकाने यामागुची का सामना करेंगी। क्वार्टर फाइनल मैच से ठीक पहले जापान की नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद सिंधु जापान ओपन सुपर 750 के महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंची थी। 2023 में डेनमार्क ओपन के बाद सुपर 750 टूर्नामेंट में सिंधु का ये पहला सेमीफाइनल था। इस सीजन में वो 3 सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, जिनमें मलेशिया ओपन सुपर 1000 और ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 जैसे टूर्नामेंट शामिल हैं। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।

0: अब सीधे चलते हैं फुटबॉल के मैदान की ओर। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मुकाबला देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। सुनते हैं इन मुकाबलों पर एक रिपोर्ट।
1: फाइनल में जगह बनाने से चूकी फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें तीसरे स्थान के लिए आमने सामने होंगी। एक तरफ लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने की फ्रांस की उम्मीदों पर स्पेनिश टीम ने पानी फेरा, वहीं दूसरी ओर मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना के खिलाफ आखिरी समय में गोल खाने के बाद इंग्लैंड को दिल तोड़ने वाली हार का सामना करना पड़ा। हालांकि सम्मान, मोमेंटम और पोडियम फिनिश अभी भी दांव पर है। फ्रांस को विश्व कप का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था, वहीं इंग्लैंड भी 1966 के बाद पहली बार विश्व कप जीतने के करीब पहुंचता दिख रहा था, लेकिन सेमीफाइनल में ही इनके सफर पर विराम लग गया। प्लेऑफ के इस मुकाबले में अब फ्रांस निरंतरता के साथ उतरेगा। टीम एक बार फिर किलियन एम्बापे के शानदार अटैकिंग खेल पर भरोसा कर सकती है, जो लगातार दूसरे वर्ल्ड कप गोल्डन बूट की दौड़ में बने हुए हैं। वहीं हैरी केन और जूड बेलिंगहैम की अगुवाई वाली इंग्लैंड टीम में किसी भी प्रतिद्वंदी को परेशान करने की क्षमता है, लेकिन डेस्चैम्प्स को जीत के साथ विदाई देने से फ्रांस को रोकने के लिए उन्हें और बेहतर ऑलराउंड खेल दिखाना होगा। एम्बापे और अर्जेंटीना के लियोनेल मेस्सी के 8 गोल हैं। मेस्सी ने 4 गोल में सहायता की, जबकि एम्बापे ने 3 में। इंग्लैंड के हैरी केन और जूड बेलिंगहैम के 6-6 गोल हैं। उधर विश्व कप का खिताबी मुकाबला कल अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। अर्जेंटीना इससे पहले 6 फाइनल खेल चुकी है, जिसमें 3 बार उन्होंने खिताब अपने नाम किया। दूसरी ओर स्पेन ने दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई है। इससे पहले 2010 में उन्होंने नीदरलैंड्स को हराकर खिताब अपने नाम किया था। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर पीको का अनावरण किया। ये प्रतियोगिता नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 17 से 23 अगस्त तक खेली जाएगी। श्री मांडविया ने विश्व चैंपियनशिप का गीत भी लॉन्च किया। इस गीत में भारत की पूरी 16 सदस्यीय टीम नजर आएगी, जिसमें 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी शामिल हैं। श्री मांडविया ने इस अवसर पर कहा कि भारत में खेल संस्कृति का विकास हो रहा है और भारत खेलों का देश बनने की ओर अग्रसर है।
2: युवा शक्ति हमारी स्ट्रेंथ है, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है। उसको हार्नेस्ट करना है तो खेल का मैदान उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बनना चाहिए, और इसलिए देश में स्पोर्ट्स आगे बढ़े, स्पोर्ट्स के एक इकोसिस्टम बने, स्पोर्ट्स युवाओं का लाइफस्टाइल का एक कल्चर बने। इसलिए जरूरी है कि स्पोर्ट्स को सामाजिक दृष्टि से भी और सरकारी दृष्टि से भी बढ़ावा दिया जाए, एक पब्लिक मूवमेंट बने। स्पोर्ट्स को एडॉप्ट करके हम देश को स्पोर्टिंग नेशन के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं।
0: श्री मांडविया ने कहा कि भारत 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कर रहा है और 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भी इच्छुक है।
2: हमारा लक्ष्य क्लियर है, हमारा एजेंडा फिक्स है, रोड मैप भी तैयार है। मोदी जी ने कहा है कि 2036 में हमें देश में ओलंपिक्स आयोजित करना है, उसके लिए भारत ने ऑलरेडी बिड कर दिया है और हमने कॉमनवेल्थ के लिए बिड को जीत भी लिया है। 2030 में देश में कॉमनवेल्थ आयोजित होगा।
0: भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच पुलेला गोपीचंद ने दिल्ली में होने वाले इस आयोजन पर खुशी जाहिर की।
3: टू होस्ट द वर्ल्ड चैंपियनशिप अगेन, इट्स अ ग्रेट मोमेंट नॉट ओनली फॉर बैडमिंटन बट फॉर इंडियन स्पोर्ट इन जनरल। देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ पुश इन द लास्ट फ्यू इयर्स इन मेनी स्पोर्ट्स एंड बैडमिंटन एज अ स्पोर्ट हैज ग्रोन ओवर टाइम, सो इट्स ओनली फेयर एंड टाइम दैट वी होस्ट अ प्रेस्टिजियस इवेंट लाइक द वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम दिल्ली इज एबल टू होस्ट दिस प्रेस्टिजियस इवेंट।
0: मुख्य कोच ने एशियन गेम्स से ठीक पहले आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता को भारतीय खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण बताया।
3: I think it's a wonderful event. It's also at a great timing. We have the World Championships followed by the Asian Games. So the next 2 months are going to be very critical for Indian badminton. To have Sindhu reach the finals of Japan, to have Laksh, Ayush, you have Satvik and Chirag, some really good medal contenders.
0: अब चलते हैं सीधे क्रिकेट के मैदान की ओर। भारत और इंग्लैंड

0: बीच कल लॉर्ड्स में तीसरा और निर्णायक एक दिवसीय मुकाबला खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: बर्मिंघम में पहले मुकाबले को 6 विकेट से अपने नाम करने के बाद भारतीय टीम को कार्डिफ में खेले गए दूसरे मुकाबले में 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। अब क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स इस श्रृंखला के निर्णायक विजेता का फैसला करेगा। भारत के लिए कार्डिफ में हार के बावजूद विराट कोहली का लय में लौटना एक बड़ी सकारात्मक बात रही, जो 65 रनों की शानदार पारी के दौरान आत्मविश्वास में नजर आए थे। हालांकि रोहित की फॉर्म एक बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। पूर्व भारतीय कप्तान इस वर्ष 8 वनडे पारियों में सिर्फ एक ही अर्धशतक लगा सके हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल अस्वस्थ रहने के कारण कार्डिफ में नहीं खेल सके थे। अब भारत को निर्णायक मैच में अपने इस खिलाड़ी की वापसी की उम्मीद होगी। साल 2025 की शुरुआत से राहुल भारत के सबसे भरोसेमंद वनडे बल्लेबाजों में से एक रहे हैं और उनका औसत 50 से ऊपर रहा है। हालांकि लॉर्ड्स ने भारत के कई यादगार पल देखे हैं, लेकिन मेहमान टीम साल 2004 के बाद से इस मैदान पर कोई वनडे मैच नहीं जीत सकी है। इस सूखे को खत्म करने से न सिर्फ सीरीज जीती जा सकेगी बल्कि दौरे का समापन भी यादगार होगा। दूसरी तरफ कार्डिफ में जो रूट ने 99 रन की नाबाद पारी खेलकर एक बार फिर से खुद को साबित किया है, इस पारी ने न सिर्फ रूट का बल्कि पूरी इंग्लिश टीम का आत्मविश्वास बढ़ाया है। पूर्व कप्तान के नाम अब लगातार 5 वनडे मुकाबलों में अर्धशतक है। दूसरे वनडे में जसप्रीत बुमराह के सामने रूट का संयम इंग्लैंड का हौसला बढ़ाएगा, लेकिन भारत के मुख्य तेज गेंदबाज लॉर्ड्स में इस मुकाबले को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश करेंगे। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विशेष पहला मुकाबला जहां गेंदबाजों के नाम रहा था, पिच से उनको मदद मिली थी, दूसरे मुकाबले में भी बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो क्या लगता है अगले मुकाबला में पिच किस तरफ रुख करेगी?
2: प्रशांत, अगर लॉर्ड्स की पिच की बात करें तो आमतौर पर ये तेज गेंदबाजों के लिए अच्छी साबित होती है, क्योंकि यहां पर गेंदबाजों को काफी स्विंग देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो यहां पर बल्लेबाजों को जो है सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर पहली पारी के यहां पर औसतन स्कोर की बात करें तो 232 रन का स्कोर बनाती है जो टीम पहले खेलती है, और दूसरी टीम का जो औसतन स्कोर है वो 200 रन के आसपास का है। 89 वनडे मुकाबलों में इस ग्राउंड पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 44 मैच जीते हैं, जबकि 40 मुकाबलों में जीत रनों का पीछा करने वाली टीम के हाथ लगी है।
0: विशेष, हर एक मुकाबले में रोहित शर्मा और विराट कोहली नया कीर्तिमान रचते हैं, कल के मुकाबले में क्या कुछ नया करते नजर आएंगे दोनों खिलाड़ी?
2: जी, भारत के दिल और धड़कन कहे जाने वाले रोहित शर्मा और विराट कोहली कल 400वां इंटरनेशनल मुकाबला साथ में खेलने जा रहे हैं। कोहली और जो रोहित की जोड़ी है इस मुकाम तक पहुंचने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनेगी। यह दोनों इस खास लिस्ट में सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ को पहले ही पीछे छोड़ चुके हैं। सचिन और द्रविड़ ने भारत के लिए 391 मुकाबले साथ में खेले हैं।
0: और उधर क्रिकेट इतिहास के महान ऑलराउंडरों में से एक वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी सर गैरी सोबर्स का कल निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। आईसीसी और बीसीसीआई ने इस दिग्गज खिलाड़ी को श्रद्धांजलि दी है। आईसीसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि खेल को गौरवान्वित करने वाले सबसे महान क्रिकेटरों में से एक सर गारफील्ड सोबर्स का दुखद निधन हो गया है। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और वेस्टइंडीज क्रिकेट के साथ हैं। हम एक आईसीसी हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर को अलविदा कह रहे हैं। बीसीसीआई ने भी सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि उनकी असाधारण उपलब्धियों, कैरेबियाई क्रिकेट पर उनके स्थायी प्रभाव और दुनिया भर के खेल में उनके योगदान ने एक ऐसी यादगार विरासत छोड़ी है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। सर गैरी सोबर्स ने 93 टेस्ट मैचों की 160 पारियों में 26 शतक और 30 अर्धशतक की मदद से 8,032 रन बनाए और 235 विकेट भी अपने नाम किए। और अब बात शतरंज पर। फ्रांस के ग्रैंड मास्टर अलीरेजा फिरोजा ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार दूसरी जीत दर्ज की। चेन्नई में कल खेले गए दूसरे राउंड में उन्होंने भारत के मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश को 69 चालों के बाद मात देकर टूर्नामेंट में 2 अंकों के साथ बढ़त हासिल कर ली है। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन को आगामी ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को ओपनिंग सेरेमनी में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी।

भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मीराबाई लगभग एक दशक से भारत की अग्रणी भारोत्तोलक रही हैं। उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और उसके बाद 2022 के बर्मिंगम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ होर्मुज जलडंब मध्य पर ईरान और अमरीका का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में 3rd स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजे, आईडी की तरफ से भेजे या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजे, इट मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
2: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमीदास और रूपश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकुम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। कल की 2898 एडी को भरपूर मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मारन को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म, लहरी को सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म, मिथ्या को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म, सुनीता को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म और ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी गई है। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13

0: अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा कारखाने में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह कारखाना रामोल गात्राड रोड पर है।
1: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वालों के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने विक्रम 1 से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है।
3: आज देश में पहली बार एक निजी रॉकेट ने सफलतापूर्वक एक सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और इससे युवाओं में आर्थिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना बढ़ती है। वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है।
4: इट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मोमेंट।
0: होर्मुज जलडमरू मध्य पर संघर्ष बढ़ने के कारण अमरीका और ईरान ने आज हमले तेज कर दिए। कुवैत में हमलों से भारी तबाही होने की खबर है। वहां ईरान ने वाटर डिसैलिनेशन संयंत्र और एक तेल सुविधा केंद्र पर हमले किए। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और बिजली उत्पत्ति बाधित हुई है। पिछले 2 दिन में डिसैलिनेशन संयंत्र पर यह दूसरा हमला था। पेयजल के लगभग 90% हिस्से का डिसैलिनेशन के जरिए आने के कारण देश में चिंता बढ़ गई है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी हमलों में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 घायल हुए हैं। रूस के अधिकारियों ने बताया कि रूस के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर के 2 विशाल गोदामों पर यूक्रेन ने रात को ड्रोन हमले किए। एक गोदाम रूस के तांबो ओब्लास्ट क्षेत्र में और दूसरा मॉस्को में है। ओब्लास्ट क्षेत्र के कोटोवस्क में रात्रि पाली में काम करने वाले सात श्रमिकों की

मृत्यु हो गई और 25 घायल हो गए। वहीं मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टल शहर में एक व्यक्ति मारा गया और 36 घायल हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पत्नी चिनम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चिनम्मा अपनी विनम्रता और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जनप्रिय थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं श्री देवेगौड़ा और उनके पूरे परिवार के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चिनम्मा शांत स्वभाव, गरिमा और परिवार के प्रति अटूट समर्पण की प्रतीक थी। वे श्री देवेगौड़ा जी के लंबे सार्वजनिक सेवा काल में एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी रही। श्री देवेगौड़ा एचडी कुमारस्वामी और पूरे शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कामना की कि ईश्वर उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस निर्णय की घोषणा की और कठुआ के लोगों को बधाई देते हुए इस कदम को शहीद के बलिदान और राष्ट्र के प्रति सेवा को श्रद्धांजलि बताया। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन के को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वज वाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी ऊषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मीराबाई चानू लगभग एक दशक से भारत की अग्रणी भारोत्तोलक रही हैं। उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और उसके बाद 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे अमरीका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र अड़ापा विजय अनुष्ठान आज शाम पुरी के श्री गुंडिचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। यह वार्षिक रथ यात्रा के सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समारोहों में से एक है। रथ यात्रा के सफल समापन के बाद कल पवित्र त्रिमूर्ति को वैदिक मंत्रों, भक्ति गीतों और सदियों पुराने मंदिर अनुष्ठानों के बीच पारंपरिक पहंडे जुलूस में उनके संबंधित रथों से श्री गुंडिचा मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जा रहा है।
मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी

0: तेज बारिश की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हॉर्मुज जलडम्ब मध्य पर अमरीका और ईरान का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त रात के 9 बजे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
2: सभी सुनने वालों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है।

फिल्म का नाम था कॉल गर्ल। गीतकार थे नक्श लायलपुरी और संगीत दिया था सपन जगमोहन ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम याराना, स्वर एक बार फिर किशोर कुमार का, गीत रचना अनजान की और धुन राजेश रोशन की है।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में लिया है। फिल्म का नाम है नाखुदा। गीत रचना निदा फाजली की और धुन बनाई है खयाम साहब ने।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म स्वर्ग नर्क से हमने लिया है। इसे आवाज किशोर कुमार ने दी है, धुन राजेश रोशन की और शब्द आनंद बख्शी के हैं।

0: किशोर कुमार और साथियों को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था स्वर्ग नर्क।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिलमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
4: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
4: प्यार का राग सुनो रे,
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
4: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम में आप सुनिए राहुल देव बर्मन का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, आशा भोंसले और किशोर कुमार की आवाज़ी। फिल्म का नाम शरीफ बदमाश।

किशोर कुमार और आशा भोंसले को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था शरीफ बदमाश। और आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज फिल्म ब्लैकमेल के लिए। शब्दकार राजेंद्र कृष्ण और धुन कल्याण जी आनंद जी की।

इस कार्यक्रम के आखिर में सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म यकीन का गीत। गीतकार हसरत जयपुरी हैं और संगीत शंकर जयकिशन का है।

0: आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसी आवाज जिसके बारे में गुलजार साहब ने कहा था, उनकी आवाज ऐसी है जैसे किसी पहाड़ी से टकराने वाली बारिश की बूंदें, वो तन मन को तरोताजा कर देती हैं। उनकी मखमली आवाज आत्मा तक सीधे पहुंचती है।

कम होंगी, बल्कि उनकी गिटार की बातें ज्यादा होंगी जो उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मी गानों में बजाया। यानी ये तय है कि आज के फनकार कार्यक्रम में आज ऐसी प्रतिभा की बातें हो रही हैं जो एक बेहतरीन गायक थे, लेकिन उसके साथ साथ थे एक बेमिसाल गिटार वादक, और उनके गिटार से सजे हैं फिल्मी दुनिया के कुछ बेमिसाल गाने। ये शायद पहली बार हो रहा है कि आज के फनकार कार्यक्रम में हम इस गायक की गायकी की प्रतिभा की बातें कम करें और उनके गिटार की बातें ज्यादा करें। आज के फनकार आज केंद्रित है जाने माने गायक और गिटार वादक भूपिंदर

भूपिंदर सिंह का जन्म 6 फरवरी 1940 को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। उनके पिता एक जाने माने गायक और संगीतकार थे, उनका नाम था नत्था सिंह। उन्होंने भूपिंदर को गाने की और गिटार की तालीम बचपन से ही देनी शुरू कर दी थी। बचपन के इन दिनों में ही भूपिंदर की दिलचस्पी गजल गाने में भी हो गई थी और वो आकाशवाणी दिल्ली से जुड़ गए थे। फिर ये हुआ कि संगीतकार मदन मोहन एक बार दिल्ली आए। जाने माने संगीतकार सतीश भाटिया के घर पर एक पार्टी दी गई और इस पार्टी में मदन मोहन ने भूपिंदर सिंह को सुना। मदन जी ने कहा कि तुम्हें मुंबई आना चाहिए और वहां गायकी में अपनी तकदीर आजमानी चाहिए। इसके कुछ दिन बाद भूपिंदर को चेतन आनंद ने बुलाया।

फिल्म हकीकत के इस गाने को गाने के लिए जरा सोचिए कि एक दुबला पतला नौजवान और उस स्टूडियो में थे कितने सारे लेजेंड, मोहम्मद रफी, मन्ना डे, तलत महमूद और इन सब के बीच भूपिंदर सिंह।

0: भूपिंदर सिंह वैसे तो स्पेनिश गिटार बजाया करते थे, लेकिन मुंबई में गिटार की और ज्यादा बारीकियां उन्होंने सीखी भारतीय फिल्म उद्योग के बेमिसाल गिटार वादक भानु गुप्ता से, जो आर डी बर्मन की टीम का हिस्सा थे। तकरीबन 2 बरस तक भूपिंदर सिंह भानु गुप्ता से सीखते रहे। फिर एक इत्तेफाक हुआ, भूपिंदर सिंह मुंबई में एक 12-स्ट्रिंग गिटार खरीद रहे थे। उनके साथ गए थे फिल्म उद्योग के एक और गिटारिस्ट सुनील कौशिक। इत्तेफाकन भूपिंदर सिंह की मुलाकात आर डी बर्मन से हुई, और उसके बाद आर डी बर्मन से भूपिंदर का जो नाता बना वो आर डी बर्मन के इस दुनिया से जाने यानी 1994 तक कायम रहा। पंचम के लिए भूपिंदर सिंह ने कई गानों में बेमिसाल गिटार बजाया है, उसकी बातें करेंगे बाद में। लेकिन पहले आपको बताएं कि हकीकत आने के बाद फिल्म आखिरी खत आई 1966 में। इस फिल्म में भूपिंदर सिंह ने न केवल एक गाना गाया बल्कि इस गाने को उन्हीं पर फिल्माया भी गया।
1: जवान जवान

सन 1968 में भूपेंद्र सिंह ने पहली बार अपनी गजलों का एक ईपी रिलीज किया। ईपी यानी छोटा वाला रिकॉर्ड। इसमें उन्होंने गालिब और प्रेम जलंधरी को गाया था। इसके बाद भूपेंद्र सिंह का दूसरा एल्बम आया, जिसमें उन्होंने गजलों में स्पेनिश गिटार, बास और ड्रम्स का इस्तेमाल किया। और फिर गुलजार साहब के साथ वो जो शायर था, गजलों के पूरे स्ट्रक्चर को भूपेंद्र सिंह ने पूरी तरह से बदल दिया। बहुत ही आइकॉनिक और बहुत ही प्रयोगवादी एल्बम था वो जो शायर था। पर आज भूपेंद्र की गायकी से ज्यादा बातें होने वाली हैं भूपेंद्र के गिटार की। पंचम के साथ भूपेंद्र के गिटार की तरंगें अब आपको सुनाई देंगी। सबसे पहले 12 स्ट्रिंग गिटार का जादू, फिल्म का नाम हरे रामा हरे कृष्णा।

0: बातें हो रही हैं उन गानों की जिनमें संगीतकार आर डी बर्मन के निर्देशन में भूपिंदर सिंह ने बजाया गिटार। फिल्म का नाम जवानी दीवानी।
1: ए आओ ना, दिल है बेकरार।

वर्मन ने बतौर गिटारिस्ट ही भूपिंदर सिंह का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपनी कई फिल्मों में पंचम से गाने भी गवाए। सन 1972 फिल्म परिचय।

ऐसा नहीं है कि भूपिंदर सिंह ने सिर्फ आरडी बर्मन के लिए ही अपने गिटार के तार छेड़े। भूपिंदर सिंह ने मदन मोहन के लिए कुछ फिल्मों में गिटार बजाया, जैसे

इस गाने में भूपिंदर सिंह ने एकॉस्टिक गिटार बजाया, सुनील कौशिक ने इलेक्ट्रिक गिटार, फ्रेंको वाज ने ड्रम्स बजाए और आज के जमाने के जाने माने संगीतकार ए आर रहमान तब इलैया राजा के साथ कीबोर्ड बजाते थे।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने खास तौर पर भूपेंद्र सिंह को याद किया और फोकस किया उन गानों पर जिनमें है भूपेंद्र सिंह का बजाया गिटार, पर उनकी आवाज के बिना इस कार्यक्रम को कैसे खत्म किया जा सकता है। तो एक झलक उनके कुछ मशहूर गानों की।

0: भूपिंदर सिंह तो चले गए, लेकिन रह गए वो गाने जिनमें उनका गिटार है, रह गई उनकी गजलें और रह गए उनके फिल्मी गाने। भूपिंदर सिंह हमें हमेशा शिद्दत से याद आएंगे। विनम्र नमन। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने गायक और गिटारिस्ट भूपिंदर सिंह पर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान का था। प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 10 बजे हैं, पेश खिदमत है फिल्म संगीत। आगाज किया है लता मंगेशकर, चितलकर और साथियों की मिलीजुली आवाज में गाए फिल्म अलबेला के इस नगमे के साथ। बोल राजेंद्र कृष्ण के हैं और तर्ज बनाई है सी रामचंद्र ने।

0: अभी आपने लता मंगेशकर, चितलकर और साथियों की मिलीजुली आवाज में सुना फिल्म अलबेला का ये गीत। आइए अब सुनते हैं शैलेंद्र का लिखा गीत, सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में, आवाज मोहम्मद रफी की है और फिल्म का नाम है काला बाजार।
1: आएगी ओ खोया खोया चांद खुला आसमान।

अभी आपने शमशाद बेगम को सुना फिल्म बहार में। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत से संवारा था एक बार फिर से सचिन देव बर्मन ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से। अगला गीत किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वरों में, जिसे हमने चुना है फिल्म चलती का नाम गाड़ी से। कलाम मजरू सुल्तानपुरी का है और मौसिकी सचिन देव बर्मन की।

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

फिल्म संगीत की अगली पेशकश, आइए सुनते हैं फिल्म चलते चलते से। मिली जुली आवाजें लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की है। गीत लिखा है अमित खन्ना ने और सुरों से सजाया है पप्पी लहरी ने।

बहू बेगम। जी हाँ श्रोताओं, अभी आपने इस फिल्म में लता मंगेशकर को सुना। बोल साहिल लुधियानवी के थे और तर्ज बनाई थी रोशन ने। फिल्म संगीत की अगली पेशकश, आए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म अब्दुल्ला से। गीत आनंद बख्शी का है और संगीत राहुल देव बर्मन का।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से। अगला गीत मोहम्मद रफी के स्वर में फिल्म तकदीर से। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आइए अब सुनते हैं फिल्म स्वयंवर का ये गीत, जिसे मिली जुली आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। नगमा निगार हैं गुलजार और मौसिकार राजेश रोशन।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से। आखिरी पेशकश आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वरों में फिल्म यादों की बारात से। कलाम मजरू सुल्तानपुरी का है और मौसिकी राहुल देव बर्मन की।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में गाए फिल्म यादों की बारात के इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत अभी ही खत्म होता है। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त रात के 11 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा कर दी गई है। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से

0: भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है, इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में
1: ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नबीदास और रूपाश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर को और वेकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा कांडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यह दुर्घटना रामोल गाताद्र रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई।
2: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी बसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय डीआरआई ने देश में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार सीबीएसई ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पवित्र अड़प्पा बीजे अनुष्ठान आज पुरी के श्री गुंडीचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच देर रात 2:30 बजे से अमरीका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। इस वक्त रात के 11:05 हो चुके हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब यही खत्म होती है। कल सुबह 5:53 पर पहली सभा की पेशकश के साथ हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। शब खैर, जय हिंद।

11:05 हो चुके हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब यही खत्म होती है। कल सुबह 5:53 पर पहली सभा की पेशकश के साथ हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। शब खैर। जय हिंद।